FM इंडेक्स 101.9 हर्ट्ज़ पर हम राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के विविध भारती केंद्र आकाशवाणी उदयपुर से बोल रहे हैं। आज बुधवार है, शक संवत 1948 वैशाख मास की 13वीं तिथि, तदनुसार 13 मई सन 2026 सुबह के 5:57 होने को है। हमारे प्रातःकालीन प्रसारण अब आरंभ होते हैं।

0: FM 102.9 MHz पर हम राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के आकाशवाणी केंद्र उदयपुर से बोल रहे हैं। सुबह के 6 बजने को है। आइए सुनवाते हैं आपको हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, और समाचार के बाद जुड़ेगा विविध भारती मुंबई से और सुनेगा वहां के प्रसारण समाचार बस कुछ ही पलों में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी के पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। मामले की जांच के लिए विशेष सीबीआई टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई हैं। पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस के विशेष दल ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में लिया है। इससे पहले राजस्थान पुलिस ने 7 मई को देहरादून से 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें कथित मुख्य साजिशकर्ता सीकर का करियर काउंसलर राकेश कुमार भी शामिल था। राष्ट्रीय पात्र परीक्षा एजेंसी NTA ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी परीक्षा रद्द कर दी थी। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी

0: विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
1: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
0: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित तमिल वेत्री कड़गम टीवी के सरकार को विधानसभा में आज अपना बहुमत साबित करना है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय विधानसभा में विश्वास मत परीक्षण से पहले समर्थन जुटाने के लिए सहयोगी दलों के नेताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं। विधानसभा में अब टीवीके के पास लगभग 150 विधायकों का समर्थन है। इस बीच कल तमिलनाडु की राजनीतिक स्थिति में नाटकीय मोड़ आया जब अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम सरकार को समर्थन देने को लेकर दो गुटों में बंट गई। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एडापड्डी के पलानी स्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवीके सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले दूसरे गुट ने एसपी वेलुमणि को विधायक दल का नेता चुना है। अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम के इकलौते विधायक एस कामराज को टीवी के सरकार को समर्थन देने की घोषणा के बाद पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने के बाद राज्य की पुलिस ने कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा पर कड़ा रुख अपनाया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और रेलवे पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के सभी मामलों की नए सिरे से जांच करने को कहा गया है। पुलिस ने सीमा पार तस्करी, अवैध पशु बाजारों, बूचड़खानों और अवैध खनन के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। श्री जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल आज से भूटान के दौरे पर रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य भारत भूटान संबंधों को और मजबूत करना है। 51 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में राज्यसभा और लोकसभा के सांसद और विदेश मंत्रालय के अधिकारी शामिल हैं। राजस्थान के सीमावर्ती जिले भीषण लू की चपेट में हैं। कई स्थानों पर तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। कल राज्य में सबसे गर्म स्थान बाड़मेर रहा, जहां अधिकतम तापमान 48.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक ने बताया कि राज्य के पश्चिमी जिलों में अगले 3 से 4 दिनों तक मौसम की यथास्थिति बनी रहेगी। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात ने अपने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 168 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स की टीम 15वें ओवर में 86 रन पर ही सिमट गई। प्रतियोगिता में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला शाम 7:30 बजे कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये है विविध भारती।
3: वंदन वार।

करने की बजाय उसमें सुधार कीजिए। जो कुछ बिगड़ गया हो तो घबराए नहीं, क्योंकि उसका भी उद्धार संभव है। विश्वास बनाए रखें। ये था आज का चिंतन। अब सुनिए भक्ति संगीत।

भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदनवार अब यहीं संपन्न होता है। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं आज के कार्यक्रमों के बारे में जानकारी झरोखा के अंतर्गत। छह बजकर 35 मिनट पर यानी अब से कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस का भाग 187। छह बजकर 45 मिनट पर और शाम को पुनः 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम के अंतर्गत आप

सुनेंगे श्रृंखला ऐसी लागी लगन, कलाकार गायक अनूप जलोटा। इस श्रृंखला का भाग दूसरा प्रसारित होगा। भूले बिसरे गीत, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 7 बजे, 7:30 पर हम ही राही प्यार की। सुबह 8:15 पर और पुनः दिन में 2

दोपहर 2:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सदाबहार नगमे और 3 बजे कार्यक्रम सखी सहेली के अंतर्गत इन विषयों पर बातचीत होगी, खाने के लिए जिए या जीने के लिए खाते हैं, साड़ियाँ, साड़ियों का संसार जिसके अंतर्गत बात होगी पश्मीना साड़ी की, शब्द हमारे विचार आपके इसके अंतर्गत चर्चा की जाएगी आत्मविश्वास की, और व्यंजन में भेलपुरी और दाबेली के बारे में बताया जाएगा। पिटारा जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे आज के मेहमान, शाम 4 बजे शायर और सेवानिवृत्त केंद्र निदेशक राजेश रेड्डी से यूनुस खान की बातचीत आप सुनेंगे। छाया गीत ये कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 5 बजे 5:30 पर कार्यक्रम तराने नए पुराने।

6:35 पर शाम को आप सुनेंगे कार्यक्रम संध्या रंजन। फौजी भाइयों का कार्यक्रम जयमाला प्रस्तुत किया जाएगा शाम 7 बजे। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत सुनिएगा राग अनुराग। 8:15 पर कार्यक्रम चित्रलोक। 8 बजे कार्यक्रम चित्रलोक से पहले 8 बजे रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे हवा महल के अंतर्गत झलकी ना बाबा ना, लेखन संजय श्रीवास्तव का, निर्देशक गोविंद पारिख। और 8:15 पर कार्यक्रम चित्रलोक। 9 बजे कार्यक्रम आपके लिए। रात्रि 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित रहेगा पार्श्व गायक बैनी दयाल पर। रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे छाया गीत आलेख एवं स्वर मंदाकिनी जोशी का। रात 10:30 पर सुनिएगा ढलती जाए रात और 11 बजे रंग तरंग का पुनः प्रसारण। तो श्रोताओं, ये थी आज के प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब प्रस्तुत है श्री राम चरित मानस। इसका आप भाग 187 सुनेंगे।

माता कैकेयी की कठोरता तथा कुटिलता की भर्त्सना करके भी भरत के हृदय में सुलगती आग शांत नहीं हुई। उधर क्रोधाग्नि में जलते शत्रुघ्न के सामने मंथरा जो आई तो उन्होंने एक लात जमाकर उसकी कुबड़ फोड़ डाली और झूठी पकड़कर उसे घसीटने लगे थे कि स्वभाव से दयालु भरत ने छुड़ाकर उसके प्राणों की रक्षा की। भरत और शत्रुघ्न माता कौशल्या के समक्ष उपस्थित हैं। दिवंगत पिता तथा वनवासी राम लक्ष्मण और सीता को देखने के लिए बिलखते भरत को माता कौशल्या धीर गंभीर भाव से सांत्वना दे रही हैं। पिता के वचन की रक्षा के लिए राम ने राजसी वस्त्राभूषण त्याग कर वलकल धारण किया। ऐसा करते उन्हें न तो विषाद हुआ और न ही हर्ष। मन में न आसक्ति थी न क्रोध। सबके संतोष के लिए जब वे वन को चले तो सीता भी उनके पीछे चल पड़ी। अग्रज के वन गमन का समाचार सुनकर लक्ष्मण भी अयोध्या में नहीं रुके।

0: संगीत सरिता में भक्ति भाव पर आधारित श्रृंखला ऐसी लागी लगन। इस श्रृंखला में हमारे अतिथि हैं जाने माने गायक श्री अनूप जलोटा। इनसे बातचीत की है ममता सिंह ने। आज सुनते हैं इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी।
1: दोस्तों नमस्कार, हमारे साथ विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद हैं श्री अनूप जलोटा जी। एक बार फिर हम उनका स्वागत कर रहे हैं। स्वागत है अनूप जी।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आज की इस कड़ी में हम चाहते हैं कि जिनसे आपने तालीम ली और जो आपके लिए बहुत प्रिय हैं, आदरणीय हैं, वो हैं आपके पिताजी श्री पुरुषोत्तम दास जलोटा जी। तो आप उनके बारे में बताएं कि उनके जीवन का कौन सा अनमोल दर्शन आपको प्राप्त

0: हुआ।
1: पिताजी बहुत अच्छे शास्त्रीय गायक रहे, उन्होंने बड़े बड़े कलाकारों के साथ म्यूजिक कॉन्फ्रेंसेस में गाया, बहुत लोगों को संगीत सिखाया जिसमें एक मैं भी हूँ, और वो बड़े ही स्ट्रिक्ट टीचर थे। मुझे याद है कि बचपन में मुझे कमरे में बंद कर देते थे तानपुरा लेके, और कहते थे 3 घंटे बाद मैं कमरा खोलूंगा और बाहर से मैं सुन रहा हूँ और सिर्फ सा गाना है, रे तक नहीं पहुँचना
2: जी।
1: तो 3 घंटे मैं सिर्फ सा गा रहा हूँ। दूसरे दिन फिर बंद कर देते थे कि आज तो रे गाना है, रे गा रहे हैं। तो इस तरह हुआ ये कि वो जो स्वर हैं उन्होंने गले में एक सिंहासन बना के अपने को स्थापित कर लिया, तो वो सुर जो है वो अपनी जगह बैठ गया। इस तरह से उन्होंने खुद भी रियाज किया था और मुझे भी रियाज करवाया। साथ ही साथ मुझे कहते थे कि कम से कम आधा घंटा रोज रियाज जो है वो आईने के सामने करो, कि तुमको ऐसा लगे कि कहीं तुम्हारा मुंह बन रहा है या हाथ पैर ज्यादा उठा रहे हो, वो सब नहीं होना चाहिए, बहुत प्लेजेंट मुद्रा होनी चाहिए। तो उसका ही कारण है कि मुझे मुद्रा दोष का सामना नहीं करना पड़ा, नहीं तो अक्सर गायन में मुद्रा दोष आ जाते हैं। तो इस तरह की चीजें जो उन्होंने सिखाई उसका मुझे बहुत लाभ हुआ है, उनकी कृपा उनका आशीर्वाद तो हमारे साथ है ही हमेशा, और न जाने कितने उनके भजन हैं जो मैं गाता हूँ और उनको और पॉपुलर करने की कोशिश करता हूँ जो उन्होंने किए हैं। तो अधिकतर जो मेरा संगीत है वो मेरे पिताजी का ही है और मैं उसको पॉपुलर कर रहा हूँ।
2: आपने कहा कि पहले दिन उन्होंने सा लगाने को कहा, दूसरे दिन रे, तो हमें बताइए कि 7 सुर कितने दिन में पूरे हुए थे और पहली बार उनके सामने आपने जब परफॉर्म किया तो क्या अनुभव था, कैसी यादें हैं?
1: नहीं, वो 7 सुर जब पूरे हो जाते थे फिर से 7 से शुरू करा देते थे।
2: अच्छा,
1: शुरू हो जाए तो ये सिलसिला चलता रहता था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि अब हाँ सुर जो है इसके टिकने लगे हैं, ठीक होने लगा है, उसके बाद फिर कहते थे कि अब और भी कुछ गाओ साथ साथ, लेकिन शुरू में तो उन्होंने इसी तरह से तालीम दी
2: जी। अगर आपको याद हो तो बंदिश कौन सी सीखी थी पहली?
1: मुझे उन्होंने एक चतुरंग सिखाई थी
2: जी।

0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अब हम जानना चाहते हैं, हमारे श्रोताओं को बताना चाहते हैं कि उनके गायन की शैली क्या थी और किन राग रागिनियों का वो ज्यादातर प्रयोग करते थे।
1: पिताजी तो बहुत विद्वान थे, तो बहुत से रागों को गाते थे। उनका राग बिहाग में लट उलझी सुलझाजा बालम इतना अच्छा सुंदर गाते थे। एक दिन मुझे संगीत मार्तंड पंडित जसराज जी बता रहे थे कि उन्होंने मेरे पिताजी को लट उलझी गाते हुए सुना किसी म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में, और उस दिन से उन्होंने जसराज जी ने राग बिहाग गाना शुरू किया कि इतना सुंदर बिहाग कोई गा सकता है तो मैं भी गाऊँ।

0: होगा, उन्होंने भी गाना शुरू किया। तो पिताजी एक ऐसे गायक थे कि अपने गायन से लोगों को इंस्पायर कर देते थे और लोग गाने लगते थे। तो मैं यही कहूंगा कि बहुत से रागों को उन्होंने प्रस्तुत किया है, जो प्रचलित राग नहीं थे उनको भी प्रचलन में लाए।
1: और अब हम चाहते हैं कि पिता पुत्र के बीच एक रिश्ता होता है और गुरु शिष्य के बीच एक रिश्ता होता है, तो उस रिश्ते के बारे में बताइए।
0: मुझे कई बार मेरा गाना सुन के कहते थे कि थोड़ा और रियाज करो, थोड़ी और मेहनत करो, ये जो नाम हो गया है उस चक्कर में मत फंस जाना। लेकिन मुझे भी थोड़ा ये रिग्रेट है, मुझे अफसोस है कि मैं उनसे कुछ 5 साल और सीखना चाहता था, लेकिन मेरा नाम ज़रा जल्दी हो गया। और एक बार नाम हो जाए फिर हम फंस जाते हैं अपने कार्यक्रमों में, सारी दुनिया घूमने में। तो एक ही रिग्रेट मेरे अंदर है कि मेरा नाम थोड़ा जल्दी हो गया, 5 साल बाद हो जाता तो मैं शायद और अच्छा गाता और सीख पाता।
1: सर, हम सब तो मंत्रमुग्ध होते हैं आपकी गायकी से और पिताजी पुरुषोत्तम दास जी की गायकी सुनकर। अब हम चाहते हैं कि पुरुषोत्तम दास जलोटा जी की कोई भजन आप हमारे श्रोताओं को सुनाएं।
0: हाँ, एक उनका भजन बहुत ही सुंदर है, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। ये भजन बिंदु स्वामी का लिखा हुआ है। मैं चाहूंगा कि पिताजी का गाया हुआ ये भजन पूरा सुनाया जाए।
1: जी।

0: ऐसी लागी लगन। आप सुन रहे हैं जानी मानी गायक अनूप जलूटा से ममता सिंह की बातचीत पर आधारित हमारी ये श्रृंखला। हारमोनियम पर संगत की है अजय जुगलेकर ने, तबले पर संगत आशीष झा की है। कल सुनिए इस श्रृंखला की अगली कड़ी।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम भूले बिसरे गीत लेकर हम बस थोड़ी ही देर में हाजिर होंगे।

श्रोताओं, कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आज आपके साथ पूजा नरानिया। आप सभी विविध भारती सुनने वालों को मेरा नमस्कार। लीजिए, प्रस्तुत है कार्यक्रम का पहला गीत, फूल बने अंगारे। इस फिल्म से आवाज लता मंगेशकर की है, रचना आनंद बख्शी की और धुन बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने।

भूले बिसरे गीत में ये पहला गीत अभी आपने सुना, फूल बने अंगारे फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में आनंद बख्शी की रचना थी, धुन बनाई थी कल्याण जी आनंद जी ने। आइए अगला गीत सुनते हैं। नगमा फिल्म से ये गीत है शमशाद बेगम की आवाज में, नाशाद का संगीत पद किया गीत।

0: शमशाद बेगम की आवाज में ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म नगमा से। आइए अब सुनते हैं एक संदेश।
1: कहिए,
2: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
2: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
3: शुक्रिया, शुक्रिया।
2: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। आइए आपको सुनवाते हैं अगला गीत आह फिल्म से। हसरत जयपुरी की रचना है, संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने और आवाज लता मंगेशकर की।

ये गीत आपने सुना फिल्म आह से लता मंगेशकर का गाया गीत था, हस्टर जयपुरी के बोल और संगीत शंकर जयकिशन का। श्रोताओं, एक छोटे से अंतराल के बाद आपसे हम फिर मिलते हैं।

0: वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
1: भूले बिस्तरे गीत में स्वागत है। आइए अब आपको सुनवाते हैं हुस्न का चोर फिल्म से संध्या मुखर्जी का गाया गीत। राजा मेहंदी अली खां का लिखा गीत है, बुलो सी रानी का संगीत।

0: ओ जाने वाली, ये गीत अभी आप सुन रहे थे हुस्न का चोर फिल्म से संध्या मुखर्जी की आवाज में।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
2: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
2: तुम्हारी याद सताते हैं।
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: अब आपको सुनवाते हैं 2 बीघा जमीन फिल्म से, शैलेंद्र का लिखा, सलील चौधरी के संगीत से सजा गीत, लता मंगेशकर, मन्ना डे और साथियों के स्वरों में।

0: बता दूं।
1: दो बीघा जमीन इस फिल्म से। अभी आप ये गीत सुन रहे थे लता मंगेशकर, मन्ना डे और साथियों की स्वरों में। आइए अब आपको सुनवाते हैं टैक्सी ड्राइवर फिल्म से किशोर कुमार और साथियों का गाया गीत। साहिल लुधियानवी के बोल हैं, संगीत है एसडी बर्मन का।

0: चाहे कोई खुश हो चाहे गालियां हजार दे,
1: अरे मास्टर राम बन के जिंदगी के दिन गुजार दे।
2: पीछे दांत लीक करो तो मुझको जेल भेज दो, तुमने में क्या है ये जवाब थानेदार।

0: की हवा निकल गई।
1: जैक लगाओ, किक किक किक किक, स्टेपनिंग पहिया, अरे पंपिंग।

टैक्सी ड्राइवर फिल्म से ये गीत किशोर कुमार और साथियों के स्वरों में आपने सुना। अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत की ये आखिरी प्रस्तुति शबाब फिल्म से। लता मंगेशकर का गाया गीत, शकील बदायूनी के बोल हैं और संगीत है नौशाद का।

0: लता मंगेशकर की आवाज़ में आप ये गीत सुन रहे थे शबाब फिल्म से। शकील बदायूनी की रचना थी, संगीत था नौशाद का और इसी गीत के साथ भूले बिसरे गीत ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ।
1: भूले बिसरे गीत इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वीको लेबोरेटरीज, वीको प्रोडक्ट, वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
2: वीको टर्मरिक

आकाशवाणी उदयपुर प्रस्तुत करने जा रहा है एक विशेष सूचना आपको दे रहे हैं हम। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर एक लाइव कॉन्सर्ट AIR @90 म्यूजिक कॉन्सर्ट आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कलाकार होंगे सुगम संगीत गजल गायक डॉक्टर देवेंद्र हिरण और डॉक्टर पामिल मोदी। संगीतकार होंगे विजय कुमार धांधड़ा सारंगी पर, हारमोनियम पर मीठालाल वर्मा, संतूर पर भूपेंद्र गंधर्व और तबले पर संगत करेंगे संजय वर्मा। यह कॉन्सर्ट 15 मई 2026 शुक्रवार को शाम 7:30 बजे आयोजित होगा। स्थान बप्पा रावल सभागार, MLSU अतिथिगृह, MLSU विश्वविद्यालय परिसर, उदयपुर। इस लाइव कॉन्सर्ट के आमंत्रण पत्र आप चेतक सर्कल स्थित मोहता पार्क स्थित आकाशवाणी उदयपुर से प्राप्त कर सकते हैं। सूचना यहीं तक।

आप सभी विविध भारती सुनने वालों को मेरा नमस्कार। आज मैं हूं आपके साथ पूजा नारायणिया और कार्यक्रम हम हेरा ही प्यार की में मैं आपका स्वागत करती हूं और आपको सुनवाती हूं ये पहला गीत। विश्वास फिल्म से मनहर उदास और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में गुलशन बावरा के बोल, कल्याण जी आनंद जी की बनाई धुन।

आइए अब आपको सुनवाते हैं अगला गीत गुरबानी फिल्म से। कंचन, मनहर उदास और आनंद की आवाजों में इंदीवर का संगीत है।

0: कुर्बानी फिल्म से ये गीत आप सुन रहे थे, मनहर उदास कंचन और आनंद की आवाजों में।
1: मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो जैसे।
0: लीजिए अब सुनिए ये संदेश।
2: एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
2: सखी सहेली।
3: श्रोताओं, कार्यक्रम हम हेरा ही प्यार के में अब वक्त है एक छोटे से अंतराल का।

0: कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: क्या बात है, बड़े दिनों बाद।
3: हाँ यार। अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
2: अरे वही अपना 60 रुपया।
3: अरे यार अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
2: तो देख दो तरीके हैं, पहला आधी दाढ़ी करा ले
3: और दूसरा
2: अरे डिजिटल पेमेंट कर UPI से।
3: ये लो यार UPI ने तो बचा लिया।
2: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
4: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
5: हर लेन देन अब है आसान।

0: मंजिल मंजिल फिल्म से ये गीत आशा भोसले और शैलेंद्र सिंह की आवाजों में आपने सुना।
1: एक बेमिसाल शायर
2: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
1: एक शानदार शख्सियत
3: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
3: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था। उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से
3: मैंने पढ़ा, जाने कितनी उड़ान बाकी इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आइए आपको सुनवाते हैं नदीम श्रवण का की धुन से सजा गीत। गीतकार है समीर और अनुराधा पौडवाल मनहर उदास की आवाजें हैं। फिल्म का नाम है सड़क।

अनुराधा पोडवाल और मनहर उदास की आवाजों में ये गीत आपने सुना फिल्म सड़क से। आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म लावा से अगला गीत। लता मंगेशकर, किशोर कुमार की आवाजें हैं, गीतकार आनंद बख्शी और संगीतकार आर डी बर्मन हैं।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में लावा फिल्म से ये गीत आप सुन रहे थे और ये गीत बना कार्यक्रम हम हेरा ही प्यार की आखिरी पेशकश। इसी के साथ कार्यक्रम हम हेरा ही प्यार की यहीं संपन्न होता है। ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: FM बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर हम राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के आकाशवाणी केंद्र उदयपुर से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने को हैं, आइए आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र, सुनेगा वहां से पहले हिंदी और फिर अंग्रेजी में समाचार। ठीक 8 बजे समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज़ सुनेगा।
1: से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार का बहुमत परीक्षण आज। राज्य में राजनीतिक गतिविधियां तेज। अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस प्रमुख एन रंगासामी आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली सरकार ने ईंधन बचाने के उपाय शुरू किए। केंद्र ने सोना सहित अन्य कीमती धातुओं के उत्पाद शुल्क में वृद्धि की। समय से पहले दस्तक देगा मानसून। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के सरकार को विधानसभा में आज अपना बहुमत साबित करना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विधानसभा में अब टीवीके के पास लगभग 150 विधायकों का समर्थन है।
2: मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय विधानसभा में विश्वास मत परीक्षण से पहले समर्थन जुटाने के लिए सहयोगी दलों के नेताओं के साथ लगातार संपर्क में हैं। सहयोगियों के समर्थन के साथ साथ टीवी के सरकार को अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम AIADMK से अलग हुए गुट का समर्थन प्राप्त है। इस बीच तमिलनाडु में AIADMK सरकार को समर्थन देने को लेकर दो गुटों में बट गई। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एडपाड़ी के पलनी स्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वरिष्ठ नेता एग्री कृष्णमूर्ति ने चेतावनी दी है कि पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने वाले किसी भी विधायक को पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले दूसरे गुट ने SP वेलुमणि को AIADMK विधायक दल का नेता चुना है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जसपाल कौर।
1: वहीं तमिलनाडु के

0: मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने राज्य सरकार में आईएएस अधिकारियों का तबादला किया है, जिनमें पूर्व मुख्य सचिव एन मुरुगंदम और वित्त सचिव टी उदय चंद्रन शामिल हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय में ज्योतिषी रिकी राधान पंडित को विशेष कार्य अधिकारी नियुक्त किए जाने पर गठबंधन सहयोगी ने कांग्रेस सांसद शशिकांत सेंथिल और ज्योतिमणि ने इस नियुक्ति पर सवाल उठाए, जबकि सीपीआईएम के राज्य सचिव पी शुनगमुगम ने कहा है कि कदम सरकार के वैज्ञानिक दृष्टिकोण के खिलाफ है। अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस के नेता एन रंगासामी आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: पुदुचेरी में आज नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। एन रंगासामी एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 76 वर्षीय एन रंगासामी का मुख्यमंत्री के रूप में यह 5वां कार्यकाल होगा। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भाजपा के चुनाव प्रभारी मनसुख मांडविया, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, भाजपा पुदुचेरी प्रभारी निर्मल कुमार सुराना और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीपी रामलिंगम सहित कई प्रमुख नेताओं के शामिल होने की संभावना है। इससे पहले श्री नितिन नवीन ने पार्टी मुख्यालय में पार्टी पदाधिकारियों और विधायकों के साथ बैठक की। पुदुचेरी से विपिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने के बाद राज्य की पुलिस ने कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा पर कड़ा रुख अपनाया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और रेलवे पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के सभी मामलों की नए सिरे से जांच करने को कहा गया है। पुलिस ने सीमापार तस्करी, अवैध पशु बाजारों, बूचड़खानों और अवैध खनन के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कथित नीट पेपर लीक मामले में शुभम खैरनार को हिरासत में ले लिया है। राजस्थान पुलिस के अनुरोध पर नासिक पुलिस ने कल महाराष्ट्र के नासिक से शुभम को हिरासत में लिया था। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट यूजी परीक्षा कल पेपर लीक के आरोपों के बीच रद्द कर दी गई। नीट यूजी के एक उम्मीदवार के अभिभावक ने लातूर एसपी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है और आरोप लगाया है कि एक निजी कोचिंग संस्थान ने परीक्षा से पहले एक मॉक टेस्ट आयोजित किया था, जिसमें कथित तौर पर 42 प्रश्न नीट परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों से मेल खाते थे। इससे पहले राजस्थान पुलिस के विशेष जांच दल ने संदिग्ध नेटवर्क और धन के लेनदेन की जांच के दौरान 15 लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस ने कल जयपुर से कथित मास्टरमाइंड मनीष को भी गिरफ्तार किया। इसी महीने की 7 तारीख को सीकर के करियर काउंसिलर राकेश कुमार समेत 5 लोगों को देहरादून से गिरफ्तार किया गया था और अगले दिन 4 नीट उम्मीदवारों को गिरफ्तार किया गया। इस बीच राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर राज्य भर के सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मितव्ययिता के आह्वान पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों द्वारा सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने की घोषणा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों और अन्य अधिकारियों के वाहन बेड़े में 50% की कमी का आदेश दिया और साप्ताहिक वाहन मुक्त दिवस को प्रोत्साहित किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नागरिकों से ईंधन की खपत कम करने और सोने की अनावश्यक खरीद से बचने का आग्रह किया। राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री और अन्य लोगों के वाहनों के बेड़े को तत्काल 50% तक कम करने का निर्देश दिया। उन्होंने आधिकारिक काफिलों से अनावश्यक वाहनों को हटाने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने राज्य में घर से काम करने की संस्कृति को प्राथमिकता देने की भी अपील की। उन्होंने सार्वजनिक परिवहन, मेट्रो सेवाओं और उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा संचालित बसों के उपयोग पर विशेष जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों को सप्ताह में कम एक दिन सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना चाहिए। सप्ताह में एक बार वाहन निषेध दिवस यानी नो व्हीकल डे का भी आयोजन किया जाना चाहिए। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।

0: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अगले आदेश तक अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम कर दी है। मुख्यमंत्री के काफिले में अब केवल 8 वाहन होंगे और कोई भी वाहन रैली आयोजित नहीं की जाएगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी कहा है कि मंत्री, विधायक, अधिकारी और सरकारी विभाग सरकारी वाहनों का उपयोग सीमित करेंगे, कार पूलिंग अपनाएंगे और मेट्रो और बस सेवाओं को प्राथमिकता देंगे। सरकार ने सोने और अन्य कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है, जो आज से प्रभावी हो गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि सोने और चांदी पर 5% तथा प्लैटिनम पर 5.4% आयात शुल्क लगेगा। इसके अलावा अनुपालन मानदंडों की पूर्ति के अंतर्गत कीमती धातु के प्रयुक्त उत्प्रेरक पर 4.35% आयात शुल्क निर्धारित किया गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के चलते लोगों से सोने की खरीदारी से बचने की अपील की थी। सरकार द्वारा सकल घरेलू उत्पाद GDP के वार्षिक और चौथी तिमाही के अनुमानों की प्रकाशन तिथि को संशोधित करते हुए प्रत्येक वर्ष मई के अंतिम कार्य दिवस से बदलकर 7 जून कर दिया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि ये संशोधन आंकड़ों की गुणवत्ता को और मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में भारतीय संसद का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज से भूटान की यात्रा पर जाएगा। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत भूटान के संबंधों को और मजबूत करना है। यात्रा के दौरान प्रतिनिधिमंडल भूटान और भारत के बीच संबंधों के विभिन्न पहलुओं तथा दोनों पड़ोसी देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा करेगा। भारत कल से शुरू होने वाली 2 दिन की ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडल भाग लेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज चीन की राजधानी पेइचिंग पहुंचेंगे। वे चीन की 3 दिन की यात्रा पर हैं। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होने की उम्मीद है। राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिया है कि व्यापार इस वार्ता का प्रमुख विषय रहेगा। युगांडा के राष्ट्रपति यूवेरी मुसवेनी ने जनवरी में हुए चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत के बाद अपने 7वें कार्यकाल की शपथ ली। राष्ट्रपति मुसवेनी पिछले 40 साल से राष्ट्रपति पद पर हैं। श्री मुसवेनी ने कल युगांडा की राजधानी कंपाला के कोलोलो इंडिपेंडेंस ग्राउंड्स में आयोजित समारोह में हजारों लोगों के बीच पद की शपथ ली। श्री मुसवेनी ने 71% से अधिक वोट हासिल किए। भारत में इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन इस सप्ताह हो सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन के लिए परिस्थितियां अनुकूल बन रही हैं। इस सप्ताह के अंत तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मानसून आ सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना निम्न दबाव का क्षेत्र कल भी इसी क्षेत्र में था और इससे संबंधित चक्रवाती परिसंचरण समुद्र तल से 4.5 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ था। इस बीच राजस्थान के सीमावर्ती जिले भीषण लू की चपेट में हैं। कई स्थानों पर तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम केंद्र ने सीमावर्ती बाड़मेर, जैसलमेर और फलोदी जिलों के लिए आज भीषण गर्मी और लू का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा 4 पश्चिमी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 6 दक्षिणी पूर्वी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। दिन के साथ रातें भी तप रही हैं और कई स्थानों पर रात का पारा 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मापा जा रहा है। गर्मी की इन परिस्थितियों से जनजीवन पर खासा असर हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2-3 दिन तापमान के यही हालात रहने के आसार हैं। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: महाराष्ट्र के सांगली जिले की जाट तहसील में कल एक धार्मिक सभा के दौरान दीवार गिरने से 6 लोगों की मृत्यु हो गई और लगभग 15 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। जम्मू कश्मीर में सेना के कल पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास कृष्णा घाटी सेक्टर में एक आतंकवादी को मार गिराया गया। हमारे संवाददाता के अनुसार सेना को मिली सूचनाओं के बाद शाम करीब 4 बजे नियंत्रण रेखा के अंदर संदिग्ध गतिविधि देखी गई। इस पर सैनिकों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। खेलों में IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। प्रतियोगिता में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं उज्बेकिस्तान में आयोजित एशियाई अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में लक्ष्य फोगाट फाइनल में पहुंच गए हैं। 75 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में फोगाट ने कोरिया के सेंगुमिन ली को पराजित किया। वहीं 8 भारतीय

0: लड़कियों ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए फाइनल में जगह बनाई और चार ने कांस्य पदक जीते। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद फरहत। नीट यूजी 2026 की परीक्षा निरस्त करने का समाचार आज सभी अखबारों की सुर्खी बनी है। अमर उजाला लिखता है सीबीआई को पेपर लीक की जांच, एक गिरफ्तार, 20 संदिग्ध हिरासत में। दैनिक भास्कर की खबर है 22 लाख अभ्यर्थियों से खिलवाड़, परीक्षा दोबारा होगी, नई तारीखों की घोषणा जल्द। कल से ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की समिट, नवभारत टाइम्स की सुर्खी है। पत्र लिखता है पीएम से भी संयुक्त मुलाकात, खाड़ी संकट के बीच दिल्ली पर दुनिया की निगाहें। तमिलनाडु में अन्नाद्रमुक के 30 विधायकों का टीवीके को समर्थन का ऐलान, विजय आज बहुमत साबित करेंगे, जनसत्ता सहित कई अखबारों की सुर्खी है। अमर उजाला ने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है नया भारत और बदलती सियासी समझ, संपादक का कहना है कि हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे बताते हैं कि देश का मिजाज अब राजनीति में किसी तरह की संकीर्णता को बर्दाश्त नहीं करेगा। कोलकाता से लेकर चेन्नई और तिरुवनंतपुरम तक नए की उम्मीद और पुराने के प्रति गुस्से के चलते मौजूदा व्यवस्था बहती दिखी। दैनिक जागरण ने पेट्रोल और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी के शब्द प्रकाशित किए हैं, पेट्रोल उत्पादों की दिक्कत नहीं लेकिन कंपनियों का घाटा चिंताजनक। शेयर मार्केट में निवेशकों के 9 लाख करोड़ स्वाहा, आखिरी घंटे और बढ़ी गिरावट, सेंसेक्स 1500 पॉइंट टूटने से मचा हाहाकार। लोकसत्य ने कारोबार पन्ने पर यह खबर प्रकाशित की है। जम्मू श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस बनी लोगों की पहली पसंद, 10 दिनों में करीब 45,000 यात्रियों ने किया सफर, देशबंधु की खबर है। नवभारत टाइम्स ने जनगणना 2027 पर खबर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है अब क्यूआर कोड से जनगणना कर्मियों की होगी पहचान, फर्जी मैसेजेस को लेकर किया फैसला, मेहनत के बिना जवाब, चैटबॉट खत्म कर रहा रचनात्मकता। राजस्थान पत्रिका ने डिजिटल एडिक्शन शीर्षक से खबर प्रकाशित की है।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार का बहुमत परीक्षण आज। अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस प्रमुख एन रंगासामी आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली सरकार ने ईंधन बचाने के उपाय शुरू किए। केंद्र ने सोना सहित अन्य कीमती धातुओं के उत्पाद शुल्क में वृद्धि की। मौसम विभाग का अनुमान, समय से पहले दस्तक देगा मानसून। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Political activities in Tamil Nadu turn hectic ahead of C. Joseph Vijay-led TVK government's floor test today. All India NR Congress leader N. Rangasamy to take oath as Chief Minister of Puducherry today. Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Delhi governments implement measures for fuel consumption following Prime Minister Narendra Modi's austerity appeal. Centre increases import duty on gold and other precious metals. IMD predicts early arrival of monsoon this year. And in IPL cricket, Gujarat Titans beat Sunrisers Hyderabad by 82 runs in Ahmedabad. And now the news in detail. In Tamil Nadu, political activities have turned hectic ahead of C. Joseph Vijay-led TVK government's floor test in the assembly today. In a dramatic turn of events, the AIADMK has split into two groups over extending support to the TVK government. Lone AMMK MLA S. Kamaraj has decided to support the TVK government. We have more from our correspondent.
3: The TVK with allies like the Congress, VCK, CPI, CPIM and IUML had enjoyed a majority of 120 to form the government in Tamil Nadu. After the government was sworn in, now it has the support of 30 AIADMK MLAs from the breakaway faction and one AMMK MLA, having a total of 151 MLAs. TVK will now have to prove the strength of the government today. The AIADMK led by General Secretary E. Palaniswamy has already said that those who do not adhere to the rules of the whip will be expelled from the party. The party founded by MGR will be facing a major political crisis presently. Joy, Akashwani reporting from Chennai.
2: Meanwhile, Tamil Nadu Chief Minister Joseph Vijay has

0: सुबह की इस खूबसूरत सी वेला में आपका दिल से स्वागत है। नई किरणों के साथ आई है नई उम्मीदें, नए सपने, नई ऊर्जा। तो चलिए मुस्कुराहट के साथ करते हैं आज के दिन का स्वागत।
1: बिल्कुल स्वागत करते हैं, नमस्कार, सुप्रभात कहते हैं आपसे। और आज है 13 मई 2026 का बुधवार का ये मिडवीक वाइब्स के साथ आप सभी का इस अंक में स्वागत। आज मैं आपके सारा स्वागत करने के लिए आज आपके साथ हैं मैं डॉक्टर सीमा।
0: बिल्कुल नमस्कार उदयपुर लेकर के मैं हूँ आपके साथ रेडियो दोस्त कविता। और आपके लिए हम लेकर बहुत कुछ आए हैं आज सीमा, है ना। बहुत सारी जानकारियाँ हैं, प्रेरणा स्रोत बातें हैं, मधुर संगीत है, ढेर सारी पॉजिटिविटी है आज के।
1: तो बता दें क्या क्या है। स्थानीय खबरें होंगी, IPL अपडेट होगी और हम फखरुद्दीन अली अहमद
0: जी की जयंती,
1: उनकी जयंती पर आपको बात जानकारी देंगे। वही आर के नारायणन जी की पुण्यतिथि है, उन पर भी बात हम करेंगे। इंस्पिरेशनल जोन में हम यूथ आइकन

0: और सफल उद्यमी अनन्या बिरला पर जानकारी आप तक पहुंचाएंगे।
1: बिल्कुल सीमा, और अगर हम आगे बढ़ेंगे, आगे का सेगमेंट की अगर हम बात करें, तो फन फैक्ट्स में विभिन्न प्रकार की फोबियाज, विभिन्न प्रकार के जो डर होते हैं ना, फोबिया जिसे कहते हैं, उसके बारे में हम श्रोताओं को डिटेल में जानकारी देंगे, है ना।
0: ये भी दिलचस्प जानकारी होगी रोचक तथ्यों के अंतर्गत।
1: बिल्कुल, और एक कविता पाठ भी हम आपको सुनवाएंगे शकुंतला सरूपरिया जी का, तो जरूर आप सुनिएगा आज का हमारा ये नमस्कार उदयपुर। पूरे फोल्डर में हमारे साथ बने रहिएगा। भोर भय, चलिए सुबह का स्वागत करते हैं।

0: 13 मई बुधवार का दिन सुबह के 8:36 और अब हम आपको उदयपुर वालों को उदयपुर की स्थानीय खबरें बता दें।
1: बिल्कुल, स्थानीय खबरों में सबसे पहले हम खबर देते हैं कविता आकाशवाणी उदयपुर की कि आकाशवाणी उदयपुर प्रस्तुत करने जा रहा है आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर एक लाइव कॉन्सर्ट AIR@90music concert। कलाकार इसमें होंगे सुगम संगीत के गजल गायक डॉक्टर देवेंद्र हिरण और डॉक्टर पामिल मोदी। इसमें संगीतकार होंगे विजय कुमार धांधड़ा, सारंगी पर हारमोनियम पर मीठालाल वर्मा, संतूर पर भूपेंद्र गंधर्व और तबले पर संगत करेंगे संजय वर्मा। ये कॉन्सर्ट 15 मई 2026 शुक्रवार की शाम 7:30 आयोजित होगा। स्थान रहेगा बप्पा रावल सभागार, MLSU अतिथिगृह, MLSU विश्वविद्यालय परिसर, उदयपुर। इस लाइव कॉन्सर्ट के आमंत्रण पत्र आप चेतक सर्कल मोहता पार्क स्थित आकाशवाणी उदयपुर से प्राप्त कर सकते हैं।
0: तो ये तो हो गई हमारे आकाशवाणी की जानकारी। जरूर श्रोताओं, आपको ये लाइव कॉन्सर्ट देखने जाना चाहिए। और अब हम देखो, अब इन दिनों गर्मी बहुत पड़ रही है और आगे छुट्टियां भी होने वाली, तो ग्रीष्मकालीन

0: अवकाश जब आएगा ना, तो बहुत सारे टूरिस्ट हैं, जो पर्यटक हैं, जो अपने शहर के लोग हैं, वह दूसरे शहर जाना चाहते हैं, घूमने घूमने जाना चाहते हैं, या नानी घर जाना चाहते हैं. तो इसके लिए ना उदयपुर से दिल्ली के रूट पर ट्रेनें चलाई जा रही है एक्स्ट्रा पैसेंजर्स को देखते हुए. तो यह ट्रेन उन यात्रियों के लिए बेहद सुविधाजनक होगी जो वाया अजमेर जयपुर होकर दिल्ली जाना चाहते हैं. तो श्रोताओं, अगर आप सफ़र करना चाहते हैं तो ज़रूर ऑनलाइन रेलवे की से जानकारी ले लीजिए कि कौन सी ट्रेन कब और कहाँ वाया इस रूट पर चलते हुए दिल्ली जाएगी. और एक और खबर है जो कि बहुत ही खुशी की खबर है कि सीनियर तैराकी टीम का चयन हुआ है. ज़िला तैराकी संघ की ओर से ज़िला स्तरीय सीनियर तैराकी दल का चयन 16 व 17 मई को महाराणा प्रताप खेलगांव के तरणताल पर होगा. तो इसके लिए तैयारियां चल रही हैं, और जो भी इसमें चाहना चाहते हैं, तैराकी के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो ज़रूर आप संबंधित एजेंसीज को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं.
1: बिल्कुल. और अब आगे हम आईपीएल अपडेट दें, उससे पहले कुछ सुने.

0: तो श्रोताओं, आईपीएल में तो अभी बहुत रोमांच बढ़ गया है। कल का मैच देखा था आपने?
1: नहीं देखा?
0: जी हाँ, हमने देखा था। अगर नहीं देखा तो आपने बहुत कुछ मिस कर दिया। गुजरात टाइटंस वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद वाले उस मैच में गुजरात ने बड़ी बड़ी बड़ी जीत दर्ज की है। ये तो हम सुबह से सुन ही रहे हैं, लेकिन क्या खास बात थी इस बड़े मैच में गुजरात की बड़ी जीत? गुजरात टाइटंस ने पूरे मैच में है ना सीमा, शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन किया। बल्लेबाजों ने तो तेज रन बनाकर एक बहुत बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया, और फिर उनके बॉलर्स ने, गेंदबाजों ने हैदराबाद की बैटिंग लाइनअप को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया और उन्हें बहुत ही जल्दी प्रेशर में ले आए। और एसआरएच की टीम जो है लगातार विकेट खोती रही, और इसी यही वजह रहे कि लक्ष्य तक पहुंच ही नहीं सकी। और सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट कहा क्या रहा इस मैच का, बीच के ओवरों में ना इनके लगातार विकेट गिर रहे थे, और गुजरात की गेंदबाजी जो है वो बहुत ही कसी हुई, और लाइन और लेंथ उनकी जो थी वो बहुत ही अच्छी थी। यही वजह रहा कि मैच पूरी तरह से एक तरफा बन गया।
1: बिल्कुल, तो यही हम कह सकते हैं कि हैदराबाद जहां सबसे छोटे स्कोर पर ढेर हुआ, वहीं गुजरात लगातार पांचवी जीत से शीर्ष पर अपने बेस्ट रिकॉर्ड की बराबरी बनाए हुए हैं। और आज की बात करें तो आज पिछले दो चैंपियंस बेंगलुरु और कोलकाता रायपुर में भिड़ेंगे। तो ये आज आप में ये रोमांचक मैच आज का देख सकते हैं।
0: बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, और जो पॉइंट्स टेबल है उसमें भी उठा पटक चल रही है।
1: बिल्कुल,
0: तो ये तो हो गई आईपीएल की जानकारी।

0: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
1: श्रोताओं, अब हम दो लेजेंड्स की बात करेंगे। आज की तारीख में हम उन्हें ज़रूर याद करेंगे। आज है 13 मई की तारीख और आज हम याद कर रहे हैं और श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं भारत के पूर्व राष्ट्रपति, महान स्वतंत्रता सेनानी और सम्मानित राजनेता फखरुद्दीन अली अहमद जी को, जिनकी की आज जयंती है। हमें लोकतंत्र और राष्ट्र सेवा की वो प्रेरणा देती हैं। 13 मई 1905 को जन्मे और 24 अगस्त 1974 को राष्ट्रपति पद की उन्होंने शपथ ली थी। राष्ट्र सेवा, सादगी और संविधान के प्रति समर्पण सीमा में बहुत ही सरल स्वभाव और सौम्य व्यक्तित्व के धनी थे। उनके कार्यकाल में 1975 में देश में आपातकाल लागू हुआ था। आप आचार विचार और संस्कार से आदर्शवादी इंसान थे और उनकी स्मृति को शाश्वत रखने के लिए भारत सरकार ने ना डाक टिकट भी जारी किया था। बेशक इंसान सदैव के लिए संसार में नहीं रहता, लेकिन फखरुद्दीन अली अहमद जैसे राष्ट्रभक्त कभी भी विस्मृत नहीं किए जा सकते। राष्ट्र उन्हें व उनके योगदान को सदैव याद रखेगा।
2: बिल्कुल, और उन्हीं के साथ साथ अब हम याद करते हैं साहित्यकार आर के नारायण को।

0: उनकी आज पुण्यतिथि है और उनका नाम आते ही याद आते हैं मालगुड़ी डेज और द गाइड सरीखे साहित्य जो कालजयी हुए, उनके द्वारा लिखे गए और उन पर सीरियल भी बने जो काफ़ी मशहूर हुए और उनकी रचनाओं ने भारतीय अंग्रेजी साहित्य को वैश्विक पहचान दिलाई। प्रमुख कृतियों का जिक्र करें तो दक्षिण भारत के काल्पनिक शहर मालगुड़ी पर आधारित कई कहानियां और उपन्यास उनके द्वारा जो लिखे गए थे काफ़ी मशहूर हुए। वहीं 1935 में स्वार्थ एंड फ्रेंड्स, वहीं 1958 में द गाइड, उनकी सरल शैली और सूक्ष्म चित्रण आज भी पाठकों को प्रेरित करते हैं, जिनकी रचनाओं ने दुनिया भर के पाठकों को मंत्रमुग्ध कर दिया और छोटे शहरों के जीवन का की लय का जीवंत रूप देने की जो उनकी कुशलता है वो वाकई देखते ही बनती है और उसे उस वक्त जितना पसंद किया गया आज की पीढ़ी भी उतना ही पसंद करती है उनकी लेखनी को।
1: बिल्कुल, तो जैसा कि तुमने उल्लेख किया कि वो एक बहुत ही अच्छे सफल राइटर थे, तो उन्हीं के द्वारा लिखित जो नॉवल थी गाइड, उस पर एक फिल्म भी बनी, तो उस
0: उसी को सुनते हैं। बिल्कुल।

0: श्रोताओं नमस्कार। उदयपुर कार्यक्रम चल रहा है और आज है बुधवार का दिन और आज हम बात करते हैं यूथ आइकन की।
1: बिल्कुल इंस्पिरेशनल जोन है ये और उसमें आज यूथ आइकन और सफल उद्यमी अनन्या बिरला के बारे में हम जानकारी दे रहे हैं और ये वो शख्सियत हैं जो एक गायक भी हैं और गीतकार के रूप में भी अपनी पहचान रखती हैं।
0: बिल्कुल, सपनों को हौसलों से उड़ान देती हैं, हर मुश्किल को मुस्कान से मात देती हैं, युवा सोच और मेहनत की पहचान है वो। अनन्या बिरला नई पीढ़ी को नई राह देती है।
1: भारतीय उद्योगपति और भारत के सबसे बड़े समूह आदित्य बिरला समूह के अध्यक्ष कुमार मंगलम बिरला की बेटी होते हुए भी अपनी एक अदद पहचान रखती हैं और वो अपने हुनर के जरिए। 2016 में अनन्या ने यूनिवर्सल म्यूजिक इंडिया के तहत अपना पहला एकल लिव इन द लाइफ जारी किया, वहीं दूसरा एकल मैन टू बी 2017 में जारी किया, जिसे 2017 में IMI द्वारा प्लेटिनम प्रमाणित किया गया था।
0: बिल्कुल, भारत की युवा उद्यमी, सिंगर और सोशल वर्कर, मेहनत और नए विचारों से इसने अपना करियर बनाया है, अपनी सोच को आगे बढ़ाती हैं। एंटरप्रेन्योरशिप, म्यूज़िक, फैशन और मेंटल हेल्थ अवेयरनेस पे उन्होंने बहुत ही सफल योगदान दिया है और जैसे फील्ड में लगातार हर फील्ड में, इन फील्ड्स में ना, वो युवाओं को प्रेरित कर रही हैं। और 17 साल की उम्र में ही इन्होंने स्वतंत्र माइक्रोफिन नामक कंपनी की शुरुआत की थी जो रूरल एरियाज़ में महिलाओं को आर्थिक सहायता देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का काम करती हैं, जिससे हजारों महिलाओं को रोजगार और व्यवसाय के अवसर मिलते हैं। व्यवसाय के साथ साथ अनन्या, जैसा कि तुमने कहा, संगीत की दुनिया में भी अपना एक मुकाम बनाया है और अनन्या के लेटेस्ट और सबसे पॉपुलर कह सकते हैं टॉक ऑफ द टाउन है, बिजनेस कम्युनिटी को इस सब में उसकी बातें हो रही है उनकी, और वो है RCB रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की कहते हैं ना फ्रेंचाइजी है, ओनरशिप ली है। IPL के इतिहास में सबसे बड़ी डील्स वाली फ्रेंचाइजी, 16,600 करोड़ में इसको खरीदा गया है। और हालांकि टीम के चेयरमैन जो है ना, उनके भाई आर्यमन विक्रम बिरला हैं, लेकिन अनन्या लगातार RCB से जुड़ी रहती हैं और मैचेस, सोशल मीडिया, ब्रांड प्रमोशंस में एक्टिव रहती हैं। डेफिनेटली RCB से जुड़ाव का उनको अब तक का सबसे हाई प्रोफाइल बिजनेस वेंचर के रूप में देखा जा रहा है, जहाँ स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट एंड ब्रांडिंग तीनों है।
1: बिल्कुल, और एक अच्छा सा गाना।
0: बिल्कुल, तो अनन्या बिरला की हमने बात की श्रोताओं, और यंग श्रोता, यंगस्टर्स जो भी हमें सुन रहे हैं, इस तरह की युवा शख्सियत से जरूर प्रेरणा लेंगे।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं नमस्कार उदयपुर कार्यक्रम। और नमस्कार उदयपुर कार्यक्रम में हम अभी एक छोटा सा 10 मिनट का ब्रेक लेंगे, क्योंकि हमें सुनना है प्रादेशिक समाचार हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से। और 9:10 पर हम और आप फिर साथ साथ होंगे। और साथ ही 9:10 पर आप जरूर सुनिए कविता पाठ आकाशवाणी के 90 साल के उपलक्ष में शकुंतला सरूपुरिया जी से। अभी हम जुड़ेंगे हमारे जयपुर केंद्र से समाचार के लिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। बाड़मेर, जैसलमेर और फलौदी के लिए आज प्रचंड गर्मी और लू का रेड अलर्ट। बाड़मेर में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी, अधिकतम तापमान 48 डिग्री के पार। नीट यूजी 2026 परीक्षा के कथित पेपर लीक के बारे में सीबीआई ने मामला दर्ज किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पेट्रोल डीजल की बचत पर जोर दिया, अनावश्यक वाहनों का उपयोग बंद करने की अपील की। और कोटा में न्यू मेडिकल कॉलेज और जेके लोन अस्पताल में प्रसूताओं की मौत के मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में 4 स्वास्थ्य कर्मी निलंबित। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में झुलसाने वाली गर्मी का असर है। प्रचंड गर्मी और लू के थपेड़ों से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बाड़मेर में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है और अधिकतम तापमान कल 48 डिग्री सेल्सियस के पार मापा गया। वहीं फलौदी, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़ और बीकानेर में दिन का पारा 45 डिग्री के पार रहा। प्रदेश में दिन के तापमान में 6 डिग्री और रात के पारे में 5 डिग्री तक की बढ़ोतरी हुई है। फलौदी, जोधपुर, बीकानेर, नागौर और जालौर में रात का पारा 30 डिग्री के पार रहा। राजधानी जयपुर में भी गर्मी का प्रकोप तेज हो गया है। दिन के पारे में 3 डिग्री और रात के तापमान में करीब 1 डिग्री का उछाल रहा। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में पश्चिमी राजस्थान में पारे में और बढ़ोतरी के आसार हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि जोधपुर और बीकानेर संभाग के कुछ भागों में हीट वेव के साथ साथ रातें भी काफी गर्म रहने की संभावना है।
2: मौसम केंद्र ने सीमावर्ती बाड़मेर, जैसलमेर और फलौदी जिलों के लिए आज भीषण गर्मी और लू का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा 4 पश्चिमी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 6 दक्षिणी पूर्वी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। कई स्थानों पर रात का पारा भी 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर मापा जा रहा है। गर्मी की इन परिस्थितियों से जनजीवन पर खासा असर पड़ा है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2-3 दिन गर्मी के यही हालात रहने के आसार हैं। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
1: राज्य में कल कहीं कहीं हल्की बरसात भी हुई। अलवर के कोटकासिम में 1.5 सेंटीमीटर पानी बरसा। भरतपुर जिले में आंधी के साथ

0: जोरदार बरसात हुई, वहीं कई गांवों में ओले भी गिरे। आज बीकानेर, जयपुर, भरतपुर संभाग और शेखावटी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में धूल भरी हवाएं चलने के आसार हैं। नीट यूजी 2026 परीक्षा के कथित पेपर लीक के संबंध में सीबीआई ने मामला दर्ज किया है। इसमें देशभर से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसी ने उच्च शिक्षा विभाग की लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया। नीट यूजी परीक्षा के संचालन में कथित गड़बड़ियों और पेपर लीक के बारे में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, चोरी और साक्ष्य नष्ट करने तथा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। देश में नासिक सहित अन्य स्थानों से भी पेपर लीक करने में शामिल साजिशकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। इस बीच सीबीआई टीम जांच के लिए कल जयपुर पहुंची। इन्होंने राजस्थान एसओजी की ओर से हिरासत में लिए गए करीब 20 लोगों से पूछताछ की। इससे पहले सीकर के करियर काउंसलर राकेश कुमार को भी देहरादून से पकड़ा गया था। एसओजी के आईजी अजयपाल लांबा ने बताया कि मामले की गहन जांच के लिए एसओजी सीबीआई का पूरा सहयोग कर रही है।
1: सीबीआई ने इस केस को टेक ओवर किया है। सीबीआई की टीम एसओजी से संपर्क में है। उनकी टीम के जो भी सदस्य हैं, उनको अब तक की पुलिस ने जो पूछताछ करी है उस पूछताछ से उनको अवगत करा दिया गया है और पूछताछ से जो चीजें सामने आई उसमें कई लोगों से पूछताछ के पश्चात कुछ संदिग्ध ऐसे हैं जो इस परीक्षा पेपर के गिरोह के रूप में शामिल होने की संभावना है। उन तमाम संदिग्ध व्यक्ति जो है उन व्यक्तियों से भी सीबीआई की टीम ने पूछताछ शुरू करी है। पूछताछ के पश्चात इन व्यक्तियों का जो जो इन्वॉल्वमेंट सामने आएगा उस पर आगे की कार्रवाई सीबीआई के द्वारा ही की जाएगी।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर दी है। एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
2: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
0: नीट परीक्षा कथित पेपर लीक के विरोध में आज प्रदेश कांग्रेस की ओर से जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। कोटा स्थित कृषि विश्वविद्यालय का नवा दीक्षांत समारोह आज आयोजित किया जाएगा। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े समारोह में शामिल होंगे। कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा भी समारोह में मौजूद रहेंगे। विश्वविद्यालय की कुलगुरु डॉ. विमला डोकवाल ने बताया कि इस साल कृषि, उद्यानिकी और वानिकी संकायों के कुल 358 अभ्यर्थियों को डिग्रियां प्रदान की जाएंगी। इनमें स्नातक के 318, स्नातकोत्तर के 34 और पीएचडी के 6 शोधार्थी शामिल हैं। विशेष उपलब्धि हासिल करने वाले 11 प्रतिभावान छात्र छात्राओं को स्वर्ण पदक से नवाजा जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पेट्रोल डीजल की बचत पर जोर दिया है। उन्होंने अनावश्यक वाहनों का उपयोग बंद करने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने अपने काफिले में वाहनों की संख्या भी कम करने का निर्णय किया है। साथ ही मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को भी कम वाहनों के इस्तेमाल में किफायत बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पेट्रोल डीजल की गैर जरूरी खपत कम करने की बात कही है। सभी विभागों को सरकारी कार्यक्रमों, दौरों और वीआईपी मूवमेंट तथा प्रोटोकॉल के नाम पर अतिरिक्त गाड़ियों की संस्कृति खत्म करने को कहा गया है। गौरतलब है कि पश्चिम एशिया संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल डीजल बचत की देशव्यापी अपील की थी। ज्ञान भारतम मिशन के तहत राजस्थान में अब तक 16.5 लाख से अधिक पांडुलिपियों का सर्वेक्षण किया गया है, जो देश में सबसे ज्यादा है। कल जयपुर में मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने बताया कि कला संस्कृति विभाग और राज्य के विशेषज्ञों की सहभागिता से पांडुलिपि सर्वेक्षण का काम व्यापक स्तर पर किया गया। उन्होंने बताया कि विभिन्न पुराणों, वेदों और अन्य ग्रंथों से संबंधित महत्वपूर्ण पांडुलिपियों का दस्तावेज

0: जिक्रण किया गया। उन्होंने बताया कि इन दस्तावेज की श्रेणीबद्ध सूची तैयार की जा रही है। कोटा के न्यू मेडिकल अस्पताल में प्रसूताओं की मौत के मामले में चिकित्सा विभाग ने लापरवाही बरतने के आरोप में 4 स्वास्थ्य कर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इनमें कॉलेज के स्त्री और प्रसूति रोग विभाग के आचार्य डॉ. बद्रीलाल और सह आचार्य डॉ. खुशबू मीणा शामिल है। वहीं कॉलेज की नर्सिंग अधिकारी मीनाक्षी मीणा और जेके लोन अस्पताल की नर्सिंग अधिकारी पिंकी खींची को भी निलंबित किया गया है। जेके लोन अस्पताल के अधीक्षक डॉ. निर्मला शर्मा और न्यू मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक डॉक्टर आशुतोष शर्मा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। राज्य पक्षी गोडावण के संरक्षण अभियान में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। जैसलमेर के ब्रीडिंग सेंटर में 2 और नन्ही गोडावण का आगमन हुआ है। इसके साथ ही कृत्रिम प्रजनन केंद्रों में गोडावणों का कुल आंकड़ा 86 पर पहुंच गया है। 10 मई को रामदेवरा ब्रीडिंग सेंटर में और 11 मई को सम सेंटर में AI तकनीक के माध्यम से 2 चूजों ने जन्म लिया। अब तक इस तकनीक की मदद से 26 गोडावण जन्म ले चुके हैं। राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के सूरतगढ़ तापीय विद्युत गृह की कुल 1320 मेगावाट क्षमता की 2 सुपर क्रिटिकल इकाइयों ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। ये बेहतरीन प्रदर्शन वित्तीय वर्ष 2025-2026 की अंतिम तिमाही में किया गया। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने बताया कि दोनों सुपर क्रिटिकल इकाइयों से 95% से अधिक बिजली उत्पादन उपलब्धता हासिल हुई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बाड़मेर, जैसलमेर और फलौदी के लिए आज प्रचंड गर्मी और लू का रेड अलर्ट। बाड़मेर में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी, अधिकतम तापमान 48 डिग्री के पार। नीट यूजी 2026 परीक्षा के कथित पेपर लीक के बारे में CBI ने मामला दर्ज किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पेट्रोल डीजल की बचत पर जोर दिया, अनावश्यक वाहनों का उपयोग बंद करने की अपील की। और कोटा में न्यू मेडिकल कॉलेज और जेके लोन अस्पताल में प्रसूताओं की मौत के मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में 4 स्वास्थ्य कर्मी निलंबित। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज और FM बैंड 101.9 मेगा हर्ट्ज पर आप आकाशवाणी उदयपुर के संग हैं। सुबह के 9:10 हुए हैं। नमस्कार, उदयपुर कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम इस सफ़र के राही हैं और आप भी हमारे संग इस सफ़र में साथ दे रहे हैं, है ना?
2: बिल्कुल, फिर से शुरुआत कर रहे हैं हम दोनों, मैं डॉक्टर सीमा और कविता, और गाना तो साथ है ही।

0: आप सुन रहे हैं वेडनेसडे मिड वीक वाइब्स का एक खास सेगमेंट फन फैक्ट्स, जहां हम बातें कर रहे हैं, हम और सीमा आपके साथ साझा कर रहे हैं कि ऐसा टॉपिक जो सुनने में साधारण लगता है सीमा, लेकिन कई लोगों की जिंदगी को गहराई से प्रभावित करता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और तो ये रोचक तथ्य आज का जो हमने विषय लिया है वो है विभिन्न प्रकार के फोबिया।
0: बिल्कुल।
1: फोबिया का सीधे तौर पर अर्थ देखें तो हम कहीं ना कहीं समझते हैं या तो

0: खुद ही अपने आस पड़ोस में कहीं भी कोई ना कोई ऐसा नजर आ जाता है जो इस चीज से ग्रसित है।
1: सरल शब्द क्या हुआ?
0: सरल शब्द ये कहें कि किसी हाँ डर, बिल्कुल सरल एक एक वर्ड में कहा जाए तो डर। और ये किसी स्थान, स्थिति, वस्तु या गतिविधि के प्रति अतार्किक अत्यधिक और निरंतर भय उत्पन्न होना, और ऐसा भय जो हमारी रोजमर्रा के जीवन को प्रभावित कर दे, वही फोबिया है।
1: बिल्कुल, हम दूसरे की क्या बात करें, हमारे खुद में भी बहुत सारे के फोबियाज होते हैं। हम बहुत चीज़ों से घबरा जाते हैं और खतरनाक जैसे कुछ होता है ना, जैसे एकदम डरना, अचानक से डर जाना, जैसे
0: डर का एक्सट्रीम लेवल
1: बहुत अलग अलग तरह के फोबियाज होते हैं, उसकी जानकारी श्रोताओं को दे दें। एक होता है एक्रोफोबिया, यह होता है ऊंचाई से डर को कहा जाता है। कुछ लोग है ना जो ऊंची बिल्डिंग्स में, पहाड़ में, इनफैक्ट हाई राइज बिल्डिंग्स के बालकनी में खड़े होने से भी डरते हैं, पैनिक हो जाते हैं, और पैनिक जैसे सिचुएशन में वो एकदम घबरा जाते हैं, पसीने पसीने हो जाते हैं जब वो ऊपर पहाड़ पर होते हैं, उन्हें डर लगता है
0: ऊंचाई वाली जगह से। बिल्कुल, नीचे देखने से भी वो डरते हैं। ऐसा ही एक फोबिया है एगोराफोबिया। इसमें इंसान भीड़भाड़ वाली जगह पर जाना पसंद नहीं करता, उससे दूरी बनाए रखना उसे अच्छा लगता है। वो उसमें जाते ही खुद को बहुत असहज महसूस करता है, उसे लगता है पता नहीं क्या हो जाएगा।
1: एक फोबिया होता है ऑफिडिफोबिया, है ना, या रेप्टाइल्स जैसे सांप, छिपकली वगैरह से डर आता है। इसमें तो भाई हम भी बहुत डरते हैं, छिपकली दिख गई तो भाई उस रूम में भी नहीं घुसेंगे,
0: नहीं जाएंगे।
1: छोटी सी मकड़ी, कॉकरोच भी बहुत बड़ा तनाव पैदा कर देती है।
0: सही है।
1: एक होता है एक्वाफोबिया, पानी से डर, जैसे गहरे पानी में जाने से या तैरने से डर लगता है। ये भी बहुत कॉमन है, हमें देखने को मिलता है कि तैरने, स्विमिंग करने से लोग बाग डरते हैं।
0: बिल्कुल सही। और वही एक होता है सोशल फोबिया, जो कि सामाजिक मेल जोल या लोगों के सामने बोलने से डरना, स्टेज फोबिया भी इसमें कहीं ना कहीं शामिल कर सकते हैं हम, तो ये भी एक तरह का फोबिया
1: है। एक होता है क्लास्ट्रोफोबिया, छोटे या बंद कमरे में डर लगना, लिफ्ट में, बंद जगह में लोग बहुत ही बेचैनी महसूस करते हैं और बहुत असहज हो जाते हैं।
0: वही जैसे ऊंचाई की बात करी, वैसे ही एक हवाई यात्रा या उड़ने का जो फोबिया होता है, उसका जो डर होता है वो है एरोफोबिया।
1: बिल्कुल। एक होता है निक्टोफोबिया, अंधेरे से डर लगना, रात या अंधेरे कमरे में अकेले रहना, ये इससे भी जो है ना लोग बाग बहुत घबराते हैं। दोस्तों, फोबिया कोई कमजोरी नहीं है, यह एक मनोवैज्ञानिक स्थिति है, स्टेट ऑफ माइंड है ना। अगर आपने अपने दिमाग पर काबू कर लिया तो आप इस तरह के डर से उभर पाएंगे, जिसका इलाज किस तरह से संभव है सीमा, थेरेपी से, काउंसलिंग से और सही गाइडेंस से। अगर आपके आसपास कोई ऐसा है जो ऐसे डर से गुजर रहा है तो आप उसका मजाक ना उड़ाएं बल्कि उसका साथ दें।
0: बिल्कुल साथ दें। और ये CBT जो थेरेपी कहा जाता है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, और दवाओं का एक संयोजन किया जाता है, उसके थ्रू उनका इलाज किया जाता है।
1: तो हम डर से आगे बढ़ते हैं, एक पॉजिटिव नोट के साथ इस बात को यहीं विराम देंगे कि डर को मन में जगह न दें, हिम्मत से हर राह चुनें, धीरे धीरे सामना करें, अपने विश्वास को मजबूत करें, सही सलाह और साथ लेकर मन की घबराहट दूर करें, फोबिया को हरा कर जीवन को फिर से खुलकर जिए, और फिर ऐसा ना कहें कि बच्चे की जान लोगे क्या।

0: नमस्कार, उदयपुर कार्यक्रम चल रहा है। श्रोताओं और आप आकाशवाणी के संग जुड़े रहते हैं, आकाशवाणी के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, तो ये भी जान जाइए कि आकाशवाणी अपने 90वें साल में चल रही है। 90 साल उसे पूरे कर लिए हैं। बहुत ही हेल्दी मनोरंजन है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के ध्येय पर हम चलते हैं। तो इस दिनों अब इसका सेलिब्रेशन चल रहा है,
1: बिल्कुल
0: है? तो आकाशवाणी उदयपुर में भी हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ प्लान कर रहे हैं और इस ये आगे आपको सुनने को आप मिल को मिलेगा ही कि हम क्या कुछ करेंगे। अभी आप सुनाएंगे एक कविता पाठ आकाशवाणी उदयपुर के 90 वर्ष के उपलक्ष में शकुंतला सरूपरिया जी के।
1: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में मैंने ये रचना लिखी है। आकाशवाणी जो राष्ट्र की एकता और अखंडता का सुंदर मठ है, देश की मूल्य संस्कृति और संस्कारों का पनघट है, आकाशवाणी को समर्पित है मेरी ये पहली नज्म। जो सबके

आवाज झरे जहां कुछ नहीं स्वर और साज परे मैं पंख लगा कर चेतना के आकाशवाणी में आई रे जन जन के मन में भरने में नव उजियारा ले आई रे राष्ट्र एकता और अखंडता का ये मठ है प्यारा मूल्य संस्कृति और संस्कारों का ये पनघट न्यारा जो लोकतंत्र सिर ताज धरे आशा सपनों को बाज करे मैं पंख लगा कर सरगम के आकाशवाणी में आई रे मैं मन की मधुर तरंगों को भी स्वर में भर के लाई रे और ये हर एक के हित में कार्य करती है आकाशवाणी। नर नारी आबाल वृद्ध और वंचित के हित साधे मनोरंजन सग शिक्षा ज्ञान और सूचना स्वर में बांधे कल्याण प्रगति के काज करे जो शांति सत्य से समाज भरे मैं पंख लगा कर

जन जन और सत्ता नीति निर्धारक के मध्य कसे तू, श्रेष्ठ विचारों की है प्रसारक, पुण्य की वर्षा है तू। आध्यात्म भक्ति में राज करे जन जन को जो हम राज करे, मैं पंख लगा कर आशा के आकाशवाणी में आई रे। मैं हृदय हृदय को गीतों से आलोकित करने आई रे। और आखिरी बंद है इस नज्म का,

0: कर प्रेरणा के, मैं पंख लगा कर प्रेरणा के आकाशवाणी में आई। मैं लोक धुनों की पायल भी छन छनती छन छन बजती ले आई रे, जो सबके दिलों पे राज करे, जिस पर भारत भी नाज करे। मैं पंख लगा कर वाणी के आकाशवाणी में आई रे, मैं पंख लगा के बधाइयों के आकाशवाणी में आई रे, आकाशवाणी में आई रे।
1: मेरी दूसरी रचना है आकाशवाणी को फिर से समर्पित, ये गीत रचना है। आकाशवाणी जो भारत की धड़कन है, ये सूरज है जिससे उजाला मिलता है, ये जन जन की आशा का अभिलाषा का कुल है, जहाँ स्वर ही स्वर का प्रसार मिलता है। सुनिएगा।

है जिससे उजारा मिला। और अलग अलग तरह के बहुत ही सुंदर कार्यक्रम आकाशवाणी के द्वारा हमेशा प्रसारित होते रहते हैं, उन्हीं के बारे में मैंने ये बंद कहा है। हनित भोर होते ही भक्ति सुधा से भजन

जहाँ सत्य सत का फुआरा मिला, जहाँ सत्य सत का फुआरा मिला। ये

रानी है भारत की धड़कन, ये सूरज जिससे उजारा मिला। और आकाशवाणी को समर्पित है अंतिम बंद इस गीत का। ये प्रौद्योगिकी युग में धरोहर पुरानी है नभ से।

0: जहाँ स्वर ही स्वर का पसारा मिला, जहाँ स्वर ही स्वर का पसारा मिला।
1: अंतस की वाणी आकाशवाणी, अभी कविता पाठ आपने सुना शकुंतला सरूप्रिया जी से। तो श्रोताओं, अब हो गया है नमस्कार उदयपुर कार्यक्रम का वक्त यहीं संपन्न। नमस्कार उदयपुर से आप कहते हैं अलविदा, यादों में बसेंगे इसके हर मीठे अंदाज आपके, साथ बिताए पल रहेंगे दिल के करीब हमेशा आपके, फिर मिलेंगे नई शुरुआत में, यही है विश्वास हमारा।
2: बिल्कुल, और इसी के साथ अब लेते हैं इजाज़त। नमस्कार उदयपुर से, मैं डॉक्टर सीमा
1: और मैं कविता
2: कहते हैं आपसे नमस्कार उदयपुर।
1: नमस्कार।

0: नमस्कार उदयपुर, अभी आपने सुना एफएम बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर हम राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के विविध भारती केंद्र उदयपुर से बोल रहे हैं। सुबह के 9:30 का वक्त और अब पहुंचता है आप तक गुड मॉर्निंग लेक सिटी।
1: दुनिया के किसी भी कोने में अगर आप हैं और आप सुनना चाहते हैं हमारे प्रसारण यानी कि वरॉन पे 9 FM के प्रसारण, तो मोबाइल ऐप के जरिए आप कहीं भी कभी भी हमारे प्रसारण सुन सकते हैं। कैसे? अपने मोबाइल पर न्यूज ऑन AIR ये मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए, फिर लाइव रेडियो पर जाइए, बहुत सारे चैनल्स रेडियो के, उसमें से आप सेलेक्ट कीजिए AIR उदयपुर FM लेक सिटी और हमारे प्रसारण को कभी भी कहीं भी मस्ती से सुनिए।
2: 101.9 FM रेडियो लेक सिटी।

Lake City. Non-stop music, non-stop fun. It's coolest one.

गुड मॉर्निंग, नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत. नमस्कार उदयपुर के बाद गुड मॉर्निंग लेक सिटी में आपके साथ एक बार फिर से आपकी अपनी आरजे डॉक्टर सीमा वही जो अपने लिसनर्स की है सबसे बड़ी वाली. दोस्तों, जो मनुष्य हर कर्म अच्छे या बुरे फल का जिम्मेदार खुद को समझता है उसे जिंदगी में

लेक सिटी में इन दिनों भीषण गर्मी ने जनजीवन थोड़ा अस्त व्यस्त कर दिया है। लू के असर से दोपहर में सड़कों का सन्नाटा पसरा हुआ है और इस सीजन का कल का जो दिन था वो सबसे गर्म दिन के रूप में दर्ज किया गया है। पारा 43.1 डिग्री तक जा पहुंचा और सोमवार के मुकाबले दिन के तापमान में 0.8 डिग्री का उछाल आया और रात का पारा 25.6 डिग्री रहा। और ये सब हो रहा है उसका वजह बताई जा रही है, हॉट ड्रिंक से तप रहा है ये मेवाड़। और मौसम विशेषज्ञों के अनुसार मेवाड़ की भीषण गर्मी का मुख्य कारण हॉट ड्रिंक बताया गया है और राजस्थान पर कर्क रेखा के आसपास हॉट ड्रिंक इस वक्त सक्रिय है जो तापमान में वृद्धि कर रहा है और अगले 2 से 3 दिनों तक हीट वेव की स्थिति यथावत रह सकती है। तो आप सभी को क्या करना है, हम रोज़ाना बताते हैं, वही अपना और अपनों का ख्याल रखना है। तरीके आपको पता है और हम भी बताते रहते हैं, बस वही करने हैं।

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: अपने से ऊपर का जो स्टूडेंट है, हमसे ज्यादा होशियार है, उसको कहो 5-10 मिनट मेरे साथ बैठो, मुझे बताओ मैं ये सोच रहा हूँ ठीक है क्या, तुम करेक्ट करो।
0: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
2: GST काउंसिल ने कमर्शियल बिजनेस में टैक्स को और भी सरल बना दिया है। बसों, ट्रकों और एम्बुलेंसों पर अब एक समान 18% टैक्स कर दिया गया है, जो पहले 28% था। HS कोड क्लासिफिकेशन की परवाह किए बिना ऑटो पार्ट्स पर अब एक ही 18% टैक्स कर दिया गया है। इस कदम से मैन्युफैक्चरर्स और पार्ट सप्लायर्स की उलझन कम होने तथा सप्लाई चेन आसान होने की संभावना है। दिलचस्प बात यह है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं आया है। सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर और इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर 5% की रियायती GST दर का लाभ उठाते रहेंगे, जिससे वे सबसे कम टैक्स वाले व्हीकल ऑप्शन बने रहेंगे।

अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

दिए। आईईसी टीम 13 से 15 मई तक उदयपुर जिले के दौरे पर रहेगी और टीम प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत गत वित्तीय वर्षों में बने मकानों का स्थल निरीक्षण करेंगे, साथ ही योजना के लाभार्थियों से सीधे संवाद कर जमीनी स्तर पर हुए कार्यों और नवाचारों की जानकारी जुटाएंगे। दौरे के दौरान टीम आवास योजना के तहत मिले लाभ, जीवन स्तर में आए बदलाव और योजना के क्रियान्वयन की स्थिति का फीडबैक भी लिया जाएगा और ये केंद्र की आईईसी टीम इसका निरीक्षण करने जा रही है। चलिए सुनते हैं पेपॉन और श्रेया घोषाल की आवाज़ में शिकारा फिल्म का ये गाना।

गुड मॉर्निंग लेक सिटी सुन रहे हैं आप और इसका आखिरी गाना आप तक पहुँचा है। उससे पहले एक सूचना आप तक पहुँचा देते हैं कि आकाशवाणी उदयपुर प्रस्तुत करने जा रहा है आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर एक लाइव कॉन्सर्ट AIR@90MusicConcert। कलाकार होंगे सुगम संगीत गज़ल गायक डॉक्टर देवेंद्र हिरण और डॉक्टर पामिल मोदी, संगीतकार रहेंगे। सारंगी पर विजय कुमार धांधड़ा, हारमोनियम पर मिठालाल वर्मा, संतूर पर भूपेंद्र गंधर्व और तबले पर संगत करेंगे संजय वर्मा। ये कॉन्सर्ट 15 मई 2026 शुक्रवार को शाम 7:30 बजे आयोजित होगा बप्पा रावल सभागार, MLSU अतिथिगृह, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय परिसर, उदयपुर पर। इस लाइव कॉन्सर्ट के आप भी हिस्सा बन सकते हैं। और इसी के साथ गुड मॉर्निंग लेक सिटी से चाहती है इजाज़त। आपके अपने आज

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह है।

0: घटना स्वयं ही घट पड़े। भारतीय सेना।
1: यदि आप अब कोई नई कार या बाइक लेने की तैयारी कर रहे हैं तो वो आपको काफी किफायती दामों पर उपलब्ध होगी। जीएसटी परिषद ने छोटी कारों 350 सीसी तक की बाइक और तिपहिया वाहनों पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया है। 22 सितंबर 2025 से लागू होने वाला ये त्योहारी तोहफा एंट्री लेवल गाड़ियों को और भी किफायती बना देगा, जबकि लग्जरी कारें और बड़ी बाइक 40% के नए स्लैब में आ गई हैं, लेकिन फिर भी उन पर कम टैक्स लगेगा।

आकाशवाणी के 90 वर्ष आपने सुने हैं, देखे भी हैं और सुने भी हैं, ये भी कह दूं, और उन्हीं में से एक साल रहा 1980 का भी। तो आज हम ये जो प्रोग्राम हर बुधवार पहुंचता है सुबह 10 बजे आप तक, वो नाम होता है भूली हुई यादें। और इस प्रोग्राम में आज हम 1980 की फिल्में, हिट फिल्मों के गाने आप तक पहुंचा रहे हैं, और ये प्रोग्राम आप तक पहुंचा रही है आपकी अपनी आरजे डॉक्टर सीमा, वही जो अपने लिसनर्स की है सबसे बड़ी वाली फैन।

1980 की हिट फिल्मों का अगर जिक्र करें तो ये नाम आते हैं, सिलसिला, कुदरत, लव स्टोरी, उमराव जान, हीरो, साथ साथ, अपने पर आए, कर्ज, कुदरत और भी बहुत सारे। और इन सब के गाने भी बहुत सारे हिट हुए हैं, उन्हीं में से कुछ चुनकर लाए हैं आपके लिए। और सबसे पहला पहल जो हम आप तक पहुंचाने वाले हैं वो है फिल्म कुदरत से। लीजिए सुनिए।

कुदरत ये फिल्म 1980 की जो हिट फिल्में रही थी उनमें से एक है और हिंदी भाषा की एक नाट्य फिल्म है जिसका ये कहें कि लेखन और निर्देशन चेतन आनंद ने किया था। इसमें मुख्य भूमिकाओं में थी राजेश खन्ना, हेमा मालिनी, जबकि राजकुमार, प्रिया, राजवंश और विनोद खन्ना भी सहायक भूमिकाओं में थे। और ये कहें कि इस फिल्म में जो निर्माता थे वो B.S. खन्ना थे और इसकी कहानी एक रोमांटिक फिल्म के में से कह सकते हैं। और इस फिल्म के गाने कुल 7 गाने थे, हमें तुमसे प्यार कितना, तूने और रंगीले जादू कैसा कैसा जादू किया, छोड़ो सनम काहे का, हमें तुमसे प्यार कितना, सजती है यूं ही महफिल, दुख सुख की हर माला, सावन नहीं भादो नहीं, और सारे लगभग इसके सभी गाने हिट हुए थे। गीतकार थे मजरू सुल्तानपुरी के लिखे गाने थे और एक गाना सुख दुख की हर माला।

उसे कतिल शिफाई ने लिखा था। आवाज़ें किशोर कुमार की, लता मंगेशकर की, एनेट पिंटो की और आशा भोसले भी थी, चंद्रशेखर गाडगिल और सुरेश वाडकर की। अब मिली जुली सब अलग अलग गीतों में आवाज़ें थी। और चलिए इन्हीं से एक गाना और सुनते हैं, और ये गाना है हमें तुमसे प्यार कितना, किशोर कुमार की आवाज़ के साथ पहुँच रहा है आप तक।

हमें तुमसे प्यार कितना हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। कितनी खूबसूरत रोमांटिक लाइन्स गीतकार ने जो लिखी है, मजरूह सुल्तानपुर की लिखी है गीत लाइनें हैं। और वाकई रोमांटिक गीतों में जब इस तरह की लाइनें आती हैं तो वाकई एक अलग ही रोमांच भरती हैं। और इस वक्त ये कहें कि कुदरत फिल्म जिसे नामांकन

मिला था सर्वश्रेष्ठ गायक के रूप में, गायिका के रूप में, कथा सर्वश्रेष्ठ कथा के रूप में, सर्वश्रेष्ठ छायाकार के रूप में, और इनमें से तीन उन्होंने जीते थे। और जो अभी भी गाना सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज़ में, हमें तुमसे प्यार कितना, इससे भी नामांकन मिला था। और इसी का एक फीमेल वर्जन जो परवीन सुल्ताना में गाया था, उसे सर्वश्रेष्ठ गायिका का पुरस्कार मिला था, तो उसे भी हम सुनते हैं। और जो सर्वश्रेष्ठ कथा के लिए चेतन आनंद को, और सर्वश्रेष्ठ छायाकार के लिए जाल मिश्री को, मिस्त्री को जीत हासिल हुई थी, ये अवार्ड मिला था उन्हें। तो चलिए हम उस गाने को सुनते हैं जिसका फीमेल वर्जन है।

सिलसिला यश चोपड़ा के डायरेक्शन में बनी है फिल्म जिसमें संगीत शिव हरी यानी कि शिव कुमार प्रसाद और हरी प्रसाद चौरसिया का था। पटकथा यश चोपड़ा ने लिखी थी, सागर सरहदी और रोमेश शर्मा का सहयोग था। और इसमें स्टार कास्ट कहें तो अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, शशि कपूर, रेखा और संजीव कुमार की थी। चलिए इसी फिल्म का एक और गाना सुनते हैं। और ये जो गाना आप तक पहुँच रहा है इसे भी मेल और फीमेल दोनों वर्जन में गाया गया है। इस वक्त हम आपको सुना रहे हैं फीमेल वर्जन लता मंगेशकर की आवाज़ का गाया।

0: चलिए इस फिल्म के गीतकार की बात करें जो गीत लिखे गए हैं जावेद अख्तर के हैं अधिकतर। एक गीत है लड़की है अशोला, उसे राजेंद्र कृष्ण ने लिखा है। हरिवंश राय बच्चन का लिखा गीत भी इसमें शामिल है, वो है रंगबर से भीगे चुनर वाली। और हसन कमाल ने लिखा है सर से सर के गाना, और जो तुम तोड़ो पिया मैं ना ही तोड़ू रही ये मेरा बाई का लिखा है। और निदा फाजली का लिखा एक गीत है खुद से जो वादा किया था, ये गाने हैं। तकरीबन आप मानेंगे पूरे संगीत से मतलब लबरेज़ ये फिल्म है, और बहुत बड़ी भूमिका है इसके हिट होने में, इसके संगीत की भी। तो तकरीबन 16 गाने हैं, कुछ गाने दो वर्जन में गाए हैं, कुछ का मतलब ज़्यादा बार इस्तेमाल हुआ है। जैसे कि सिलसिला थीम जो है वो अपने वाद्य यंत्र के साथ है, तीन गाने तो वही हो जाते हैं इसमें। नीला आसमां मेल और फीमेल दोनों वर्जन में है, जबकि देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए संवाद के साथ है, डायलॉग्स इसमें आते हैं। वहीं एक और गाना है ये कहाँ आ गए हम, ये भी डायलॉग्स के साथ संवाद के साथ है। और बस ऐसे गाने हैं इसके जो बहुत पसंद आते हैं। इसमें गायक गायिकाएँ जो हैं वो शिव कुमार शर्मा की तो हरिप्रसाद चौरसिया की बनाई धुन है, वहीं गायक और गायिकाओं के रूप में नाम जिक्र करें तो इसमें अमिताभ बच्चन ने जो डायलॉग्स के रूप में साथ दिया है वो भी है, किशोर कुमार है, लता मंगेशकर है, और पामेला चोपड़ा भी हैं। एक गाना खुद से जो वादा किया था उसमें आवाज़ इनकी है, और एक में आवाज़ रागी हरबंस सिंह जगाधरी वाले की भी है। तो चलिए इस तरह से ये फिल्म बनी है, और बड़ी बेहद खूबसूरत फिल्म थी, और अलग तरह की कहानी थी इसकी उस वक्त में। और एक गाना ये वाला भी सुनते हैं डायलॉग्स के साथ।
1: मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है उधर भी।

0: indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
2: अपने से ऊपर का जो स्टूडेंट है, हमसे ज्यादा होशियार है, उसको कहो 5-10 मिनट मेरे साथ बैठो, मुझे बताओ मैं ये सोच रहा हूँ ठीक है क्या, तुम करेक्ट करो।

0: indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
2: अपने से ऊपर का जो स्टूडेंट है, हमसे ज्यादा होशियार है, उसको कहो 5-10 मिनट मेरे साथ बैठो, मुझे बताओ मैं ये सोच रहा हूँ ठीक है क्या, तुम करेक्ट करो।
1: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
3: और अब चलिए 1980 की एक और हिट फिल्म की बात करते हैं, जो 20 जून 1980 को रिलीज़ हुई थी। 160 मिनट की यह फिल्म, जिसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर फिरोज़ खान थे, और जब इसे लिखा गया तो इसे फिरोज़ खान और के शुक्ला ने साथ में लिखा। और इसमें स्टार की बात करें तो फिरोज़ खान, विनोद खन्ना, जीनत अमान, अरुणा ईरानी, अमजद खान, अमरीश पुरी, शक्ति कपूर मुख्य भूमिकाओं में थे। तो चलिए इस गाने से शुरुआत करते हैं और फिर और बात करते हैं।

ये फिल्म कुर्बानी जिसके गीत लिखे इंदिवर ने, अधिकतर गीत लिखे जैसे कि ये वाला आप जैसा कोई, इसके बाद लेला हो लेला, क्या देखते हो, हम तुम्हें चाहते हैं, ये इंदिवर के लिखे गीत हैं। वहीं कुर्बानी वाला गाना फारूक केसर का लिखा है। इस फिल्म में कुल 5 गाने हैं और इसमें संगीत कल्याण जी आनंद जी का है मोस्ट प्रोबेबली, और एक गाना आप जैसा कोई जो भी अभी आप सुन रहे थे उसमें बिद्दू का संगीत है। गायक गायिका की बात करें तो किशोर कुमार, अनवर, अजीज़ नाजान, नाजिया हसन और अमित कुमार, चंद कुछ साथी हैं, मोहम्मद रफ़ी की भी आवाज़ है और आशा भोसले की भी आवाज़ है, मनहर उदास की भी आवाज़ है और आनंद कुमार और कंचन की भी आवाज़ें हैं, मिली जुली आवाज़ें हैं अलग अलग गानों में, और जो जिस गाने पर फिट बैठती है उसके अनुसार गायकों को लिया गया था। चलिए अब कंचन और मनहर की आवाज़ों में ये गाना सुनते हैं, हम तुम्हें चाहते हैं। इसे

0: क्या बात है, बड़े दिनों बाद।
1: हाय यार। अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
0: अरे वही अपना 60 रुपया।
1: अरे यार अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
0: तो देख, दो तरीके हैं। पहला, आधी दाढ़ी करा ले।
1: और दूसरा?
0: अरे डिजिटल पेमेंट कर UPI से।
1: ये लो यार, UPI ने तो बचा लिया।
0: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।

तो चलिए, ये गाना भी बड़ा अच्छा सा है, ओम शांति ओम वाला, थोड़ा लंबा भी है, लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि ये जो फिल्म है इसमें कुल 7 गाने हैं। इसमें दर्दे झील दर्दे जिगर, ओम शांति ओम, एक हसीना थी एक दीवाना था, मैं 16 बरस की तू 17 बरस का, ये पैसा कमाल है कमाल है, और कर्ज की थीम जो जहाँ ज़रूरत थी इस फिल्म में उसके अनुसार वो घड़ी गई है। इसके गायकों का जिक्र करें तो मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, आशा भोसले, लता मंगेशकर, मन्ना डे, अनुराधा पौडवाल, इन सब गानों में उनकी आवाज़ें हैं। चलिए सुनते हैं इस गाने को।

0: तुम पे आ जाए प्यार में तो ये गीत गाना सिंग हो
1: शांति हो। तो 1980 के हिट फिल्मों के गाने आप सुन रहे थे भूली हुई यादें में, और वो उन यादों को ताज़ा करने का ये अच्छा सेगमेंट है जहां आप उन गानों को सुना करते हैं जिन्हें हम पुराना कहते हैं, ओल्ड इज गोल्ड कहते हैं, सदाबहार नगमे कहते हैं। तो चलिए, उन गानों की एक श्रृंखला है जो पिछली बार के बाद 1979 की थी और इस बार 1980 की फिल्में थी जो आप तक पहुंच रही थी। तो इसी गाने के साथ आज का ये प्रोग्राम यहीं तक। इस प्रोग्राम से इजाज़त चाहती है आपकी अपनी आरजे डॉक्टर सीमा, और फिर अगले प्रोग्राम के साथ फिर लौट कर आती है। बस यूँ गए और यूँ आए, कीजिए थोड़ा सा इंतज़ार।

0: KIR at 90.
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: आप भी अपने उत्पाद का विज्ञापन आकाशवाणी पर कीजिए और अपने व्यापार को आकाश की ऊंचाई तक पहुंचाइए। अधिक जानकारी के लिए नजदीक के आकाशवाणी केंद्र से संपर्क करें या हमें मेल कीजिए salesairjc@gmail.com यानी salesairjc@gmail.com पर। हमारे चैनल हमेशा तत्पर, हमेशा सुरीले सफर पर।
3: दुनिया के किसी भी कोने में अगर आप हैं और आप सुनना चाहते हैं हमारे प्रसारण यानी कि वरॉन पे 9 FM के प्रसारण, तो मोबाइल ऐप के जरिए आप कहीं भी कभी भी हमारे प्रसारण सुन सकते हैं। कैसे? अपने मोबाइल पर न्यूज ऑन AIR ये मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए, फिर लाइव रेडियो पर जाइए। बहुत सारे चैनल्स रेडियो के, उसमें से आप सेलेक्ट कीजिए AIR उदयपुर FM लेक सिटी और हमारे प्रसारण को कभी भी कहीं भी मस्ती से सुनिए।

अब चलिए आपका स्वागत करते हैं हम उस प्रोग्राम में जिसका नाम है कुछ बातें कुछ गीत। इस प्रोग्राम का आप तक पहुंचा रही है आपके अपने आरजे डॉक्टर सीमा वहीज, अपने लिसनर्स की है सबसे बड़ी वाली फैन। दोस्तों आज कुछ बातें कुछ गीत में हम बात करने वाले हैं बचत की राह ऊर्जा की चाह पर। वैसे बचत किसी भी चीज़ की हो, चाहे वो पानी की हो, बिजली की हो, गैस की हो, पेट्रोल की हो, डीजल की हो, हर मायने में, चाहे समय ही की क्यों ना हो, हर मायने में बेहद ज़रूरी है। और पैसे की बचत तो हम करते ही हैं, हमारी आदतों में शामिल है। तो ये बचत सब जो समय वर्ड है, जो बचत जो शब्द है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जिसने इसकी अहमियत को समझ लिया उसका प्रेजेंट के साथ साथ फ्यूचर भी सुरक्षित हो जाता है। इसी पर हम बात करने वाले हैं कि इन दिनों काफ़ी जिक्र हो रहा है पेट्रोल डीजल का, गैस का, कि इनकी हम बचत कैसे कर सकते हैं, इन्हीं पर बातचीत हम करने वाले हैं। चलिए इस गाने से शुरुआत करते हैं।

मिले, क्या मिले भाई क्या मिले, खुद को समझ बैठे खुदा, वो खुदा ही जाने अब होगा

तो चलो, ये पैसा तो अपना पे करूँ से दूर करे। बहुत सारी बातें इसमें कह दी है कि पैसा होने का क्या और ना होने का क्या, बहुत सारी बातें हैं। सबके अपने अपने तर्क हैं, अपने अपने विचार हैं, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं बचत की। अब ये ऐसा विषय है जो हर परिवार, हर रसोई, हर सफ़र से जुड़ा है, हर जिंदगी

ज़िंदगी से जुड़ा है, चाहे बात पेट्रोल की हो, डीजल की हो, गैस की हो, पैसे की हो, चाहे जिसकी हो। अब इनकी बढ़ती खपत हो रही है और उनसे बचने के आसान उपाय क्या हैं, उन्हीं पर आज हम बात करने वाले हैं। जहां ईंधन की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, हर घर का बजट प्रभावित हो रहा है, ऐसे में थोड़ी सी समझदारी और आदतों में बदलाव से हम बड़ी बचत कर सकते हैं। तो बस हमारे साथ रहिए। सबसे पहले आसान उपाय की बात करें तो वाहन की हम जो पेट्रोल और डीजल की कम खपत की बात करते हैं, तो वाहन हमारे जो भी वाहन हम इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो या और कुछ है, तो इन सभी का इंजन सही रहे, ईंधन कम खर्च हो, इसके लिए ज़रूरी है कि वाहन की नियमित हम समय समय पर सर्विस कराते रहें, टायरों में हवा सही रखें, कम हवा होने पर पेट्रोल की खपत ज़्यादा होती है, इस बात का ख्याल रखें, और अनावश्यक एक्सीलरेशन से बचें, तेज़ रफ्तार और बार बार ब्रेक लगाने से भी ईंधन की खपत ज़्यादा होती है, और आसपास के काम हो, जैसे कि थोड़ी ही दूर जाना है, सब्ज़ी लानी है, मंदिर जाना है, या आस पड़ोस में किसी से कुछ काम है, या मार्केट का पड़ोस के मार्केट से कुछ काम है, तो थोड़ा सा पैदल चल लीजिए, उससे आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और बचत भी हो जाएगी। और कार पुलिंग को अपनाएं, चाहे वो आप बाइक पुलिंग, कार पुलिंग दोनों कर सकते हैं, एक ही दिशा में जाने वाले लोग साथ सफ़र करें, बेजे प्रदूषण भी ना करें और बचत भी करें, या अगर दो लोग एक जगह साथ में जाते हैं रोज़ाना, तो एक दिन आप ले लें, एक दिन वो ले लें, तो दोनों ही की बचत और दोनों ही का काम हो जाएगा। तो इस तरीके से एक तरीका और ये भी है, एक दिन सप्ताह में ऐसा अपनाएं जिस दिन हम गाड़ी परिवार को रेस्ट दें, कोई एक चीज़ चुन लें और उस दिन आप अपने काम या तो पुलिंग के द्वारा करेंगे या फिर आप उस दिन पैदल चल कर कहीं जाएंगे, तो आनंद भी उठाएं और बचत भी करें। ऐसी चीज़ों से हम अपनी जो कहते हैं बचत भी इनकम होती है, तो ऐसी चीज़ों को ज़रूर अपनाएं।

चलो, बिजली की रानी घर आपको बनना है तो बिजली के बहुत सारे बचत के उपाय आप कर सकते हैं, जैसे सोलर पैनल आप अपने घरों पर लगवा सकते हैं। तो कहते हैं ना कि वो प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करें, और ऐसे संसाधन जो कभी खत्म नहीं होने वाले, जैसे सूरज की रोशनी कभी खत्म नहीं होने वाली, हवाएं जो अनवरत चलते रहने वाली हैं, इन सब का इस्तेमाल करके जब हम बिजली बनाते हैं या फिर कुछ भी ऊर्जा का संरक्षण करते हैं, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। जो बिजली के उत्पादन में सरकार का हम सहयोग करते हैं, अपने परिवार में भी हम बचत करते हैं। माना कि हर परिवार एक दिन में एक लीटर पेट्रोल बचाता है, तो मान लीजिए कि पूरे महीने में 30 लीटर की बचत हो जाती है। अमूमन आज हर घर के पास एक से ज़्यादा गाड़ियां हैं, चाहे वो 4 व्हीलर हो चाहे 2 व्हीलर्स हो, तो उनमें कहीं ना कहीं ये खपत होती है, और उनमें अगर हम मिलजुल कर जो बताए थे अभी अभी उपाय, उन सब का इस्तेमाल करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप इस तरीके से बचत कर सकते हैं, और इतनी बचत आपको महीने भर में कितनी बड़ी बचत दिला सकता है। तो चलिए इसी के साथ साथ हम थोड़ी सी बात कर लें घरेलू गैस की बचत, उसे कैसे करते हैं। हर घर की रसोई में एक LPG सिलेंडर बहुत ज़रूरत है, और लेकिन थोड़ी सावधानी से इसका इस्तेमाल थोड़ा और लंबे समय तक बढ़ाया जा सकता है। जैसे खाना बनाने से पहले सारी सामग्री आसपास तैयार रख लें, ऐसा नहीं कि गैस ऑन किया फिर आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप बेवजह उसे सिम पर करके और अपना काम और तैयारी करेंगे तो बेवजह वो गैस तो जा ही रही है। तो इससे अच्छा है कि सारी प्रिपरेशन आसपास पहले कर लें, फिर गैस ऑन करें और अपनी कुकिंग शुरू करें। इसी तरह प्रेशर कुकर का उपयोग करें, ये आप जानते ही हैं, और हाँ, स्टील के प्रेशर कुकर का उपयोग करना ज़्यादा सेहतमंद है। वहीं कोई भी खाना आप जब बना रहे हैं तो बर्तन ढककर पकाएं, तो खाना जल्दी पकेगा, और छोटे बर्नर का इस्तेमाल ज़्यादा करें। वहीं जब आपको बर्तन छोटा है और बर्नर की जो गैस लो है वो उससे बाहर निकल रही है, तो वो व्यर्थ होती है और बर्तन भी आपका जल सा जाता है, तो आप ऐसा करें कि जितना बर्तन है उसके अंदर अंदर ही उस गैस की लो रहे, ताकि आपकी गैस भी कम जले और गैस का सही यूज़ हो, और खाना उतनी ही रफ्तार से बनेगा जितना आपकी बर्तन का नीचे का तला पकड़ उस तक लो जा रही है, वहीं तक। उससे एक्स्ट्रा अगर निकल रही है तो वो वेस्ट ही हो रही है, मानिएगा। इसी तरह गैस की लो है वो नीली होनी चाहिए, पीली हो तो सर्विस कराएं, क्योंकि पीली निकलने पर वो स्वस्थ लो नहीं कह सकते, और ये खपत ज़्यादा करती है। गैस खत्म होने पर तुरंत रेगुलेटर बंद कर दें, और कोई भी चीज़ चाहे चाय हो चाहे कोई खाना हो, उसे तुरंत बनाकर तुरंत सब लोग खाएं, ताकि बार बार गर्म करने से आप बचेंगे। इससे होंगे दो फायदे, एक तो होगी गैस की बचत, दूसरा आप रहेंगे सेहतमंद, क्योंकि किसी भी खाने को या किसी भी चाय को या किसी भी चीज़ को जब बार बार गर्म किया जाता है तो उसके पोषक तत्व खत्म होते हैं, उसका न्यूट्रिशन वैल्यू कम होती है, और साथ ही साथ हमें वो सब कहते हैं ना कि वो स्वाद में भी फ़र्क आ जाता है। तो बस हम ख्याल रखें इन बातों का, इन चीज़ों का, और खुद के लिए, खुद के परिवार के लिए बचत कीजिए और हंसते मुस्कराते रहिए।

चलिए और बात करते हैं, ये बचतें जो होती हैं वो न सिर्फ हमारे लिए पैसे की बचत, ईंधन की बचत करती हैं, बल्कि पर्यावरण की रक्षा भी करती है। तो अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं, पर्यावरण का हित चाहते हैं, देश का हित चाहते हैं, अपना, अपने परिवार का, अपनी आने वाली पीढ़ियों का हित चाहते हैं, तो बस क्या कर सकते हैं, जब हम कम पेट्रोल डीजल चलाते हैं तो वायु प्रदूषण कम होता है, उससे कार्बन का उत्सर्जन घटता है, प्राकृतिक संसाधन सुरक्षित रहते हैं। और आज पूरी दुनिया ऊर्जा संरक्षण की बात कर रही है, अगर हम छोटी शुरुआत करें तो बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं जनाब।

एक्सपर्ट्स की राय है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्थिर गति सबसे किफ़ायती होती है और गाड़ी स्टार्ट करके लंबे समय तक खड़े ना रखें। जब लगे कि थोड़ी देर है तो उसे बंद कर दें, बेवजह ईंधन जलने से बचेगा। वहीं इलेक्ट्रिक उपकरणों का समझदारी से उपयोग करें। सोलर कुकर और सौर ऊर्जा जैसे विकल्पों को आप अपनाएं। और श्रोताओं, बचत केवल पैसे जोड़ना नहीं होता, यह जिम्मेदारी निभाना भी होता है। जो संसाधन हम आज बचाएंगे वही हमारी आने वाली पीढ़ियों के काम आएगा। ये बात हमें हर वक्त याद रखनी पड़ती है, क्योंकि याद रखिए कि बूंद बूंद से घड़ा भरना है और छोटी छोटी बचत से बड़ा बदलाव आता है और इस बदलाव का एक छोटा ही सही हिस्सा हम हो सकते हैं और कई बार हमारा छोटा हिस्सा बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है, तो इस बात को ज़रूर ख्याल में रखें। तो आज का ये प्रोग्राम बचत की राह, ऊर्जा की चाह आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो आज प्रोग्राम के आखिर में आपसे यही संकल्प चाहेंगे कि जब ज़रूरत हो तभी वाहन निकालें, कोशिश करें जहाँ पैदल जा सकते हैं ज़रूर जाएं, रसोई में गैस सोच समझ कर उपयोग करें और ऊर्जा बचाएं, पर्यावरण बचाएं। इसी के साथ आज कुछ बातें कुछ गीत से लेते हैं इजाज़त। आपकी अपनी आज डॉक्टर सीमा, बाय बाय, टेक केयर।

0: से बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
3: GST काउंसिल ने कमर्शियल बिजनेस में टैक्स को और भी सरल बना दिया है। अभी तक होटल के कमरों पर GST की 4 दरें लगती हैं। 1,000 रुपए से कम कीमत वाले होटल रूम पर 0 GST है, जबकि 1,000 से 2,499 रुपए तक के होटल के कमरे पर 12% GST लगता था। 2,500 से लेकर 7,499 रुपए तक के होटल कमरे पर 18% टैक्स लगता है। इससे ज्यादा कीमत का होटल रूम है तो उस पर 28% GST लगता है। लेकिन अब होटल के कमरों पर सिर्फ 2 ही रेट लगाए जाएंगे। 7,500 से कम कीमत वाला कमरा है तो 5% और ज्यादा है तो 12% GST देना होगा।
4: राम राम सर, खमागणी सा, भुणो सा, राजस्थानी लोक गीतारू प्रोग्राम गोखड़ा।
5: अरे मेरे राम तेरे
4: यो मरु रंग आप हुनवा वाला हो सब हूँ पहला और आज गोखड़ा प्रोग्राम आप तक पहुँचा रही है आपकी सखी आपनी दोस्तानी डॉक्टर सीमा। चलो हुना सा ये प्रोग्राम शुरू करा अणि मरु रंग रे ला रहे अणि मरु रंग में सब तरह का लोकगीत जो है वनडो समावेश करने एक आजकल मेशअप रो जमानो है ना वो बनियो तो को है न गणा हाउ लागे हुनवा में। चलो आप ही मलिने हुना सा।

डामर पिघलातिया गर्मी बढ़ती आग न तपतो तावड़ो या भी के वान सड़का पे कर्फ्यू लाग जावे अणी गर्मी रो यूं लागे है अणी अतरी हारी गर्मी में लू लागती गर्मी में गरम गरम हवा

अणि गर्मी में अणि लू लागती गर्मी में जदि हम पानी रे कणी स्रोता में तेरे पासे व्या तो खूब हाउ लागे है जो अपनी झीला में और वठे जो ठंडो ठंडो वायरो चाले अत्रो बढ़िया लागे कि अठेज बैठा रहा कठे नहीं जावा अठे हूँ बस लो आओ हणा सा तालरिया मगरिया रे।

राजस्थानी लोकगीत आरोह कार्यक्रम आप सुन रहे हो और उसी बीच एक सूचना है जो आपको देनी है। आकाशवाणी उदयपुर प्रस्तुत करने जा रहा है आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर एक लाइव कॉन्सर्ट AIR@90music concert। इसमें कलाकार होंगे सुगम संगीत गजल गायक डॉक्टर देवेंद्र हिरण और डॉक्टर पामेल मोदी। संगीतकार होंगे सारंगी पर विजय कुमार धांधरा, हारमोनियम पर मिठालाल वर्मा, संतूर पर भूपेंद्र गंधर्व और तबले पर संगत करेंगे संजय वर्मा। यह कॉन्सर्ट 15 मई 2026 शुक्रवार को शाम 7:30 बजे आयोजित होगा। स्थान बप्पा रावल सभागार, MLSU अतिथि गृह, मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी परिसर, उदयपुर। इस लाइव कॉन्सर्ट के आमंत्रण

0: FM 101.9 MHz हम राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के आकाशवाणी केंद्र उदयपुर से बोल रहे हैं और दिन के 12 बजे हैं। अब हम आपको लिए चलते हैं विविध भारती मुंबई केंद्र, अब सुनेगा वहां के प्रसारण। वहां से पहले आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुनिए हिंदी में समाचार।
1: विधायकों ने पक्ष में मतदान किया है। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस नेता एन रंगासामी ने आज रिकॉर्ड 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस मंत्री पद की शपथ ली। इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीपी रामलिंगम, अधिकारी और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह SPG प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी गई हैं। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री के काफिले में वाहनों की संख्या में कमी गुजरात और असम की उनके हाल ही यात्राओं के दौरान लागू की गई। ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती में योगदान के लिए प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले का आकार घटाकर आधे से भी कम कर दिया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने भी मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों से सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने को कहा है। सरकार ने सोने और अन्य कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है, जो आज से प्रभावी हो गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि सोने और चांदी पर 5% तथा प्लैटिनम पर 5.4% आयात शुल्क लगेगा। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के बीच लोगों से सोने की खरीदारी से बचने की अपील की थी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज सुबह चिली के विदेश मंत्री फ्रांसिसो पेरेस मैकेना से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने बाजारों और स्रोतों में विविधता लाने, प्राथमिकता वाली वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने और सेवा अर्थव्यवस्था को सुगम बनाने के लिए द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। श्री फ्रांसिसको ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की कल से शुरू होने वाली 2 दिवसीय बैठक में भाग लेने के लिए भारत आए हैं। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर करेंगे। श्री फ्रांसिस्को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुग्यानो ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए आज नई दिल्ली पहुंचे। वे प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। नीट यूजी परीक्षा के कथित रूप से प्रश्न पत्र लीक होने की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI का दल जयपुर पहुंचा। दल ने राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान समूह SOG द्वारा हिरासत में लिए गए लगभग कई लोगों से पूछताछ की। जांच के अंतर्गत SOG ने सीकर और आसपास के इलाकों में लोगों से पूछताछ की। पंजाब सरकार ने रक्षा बलों में कार्यकाल पूरा करने के बाद अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण नीति बनाने का निर्णय लिया है। प्रक्रिया रूपरेखा को अंतिम रूप देने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अग्निवीरों को आरक्षण का लाभ देने के लिए सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति दे दी है। सरकार का कहना है कि पंजाब पुलिस, वन रक्षक, अग्निशमन सेवा, जेल, होमगार्ड और अन्य कई विभागों में उनकी सेवाओं को प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1998 में आज के दिन भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों का स्मरण किया। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इन परमाणु परीक्षणों ने देश के अडिग संकल्प को प्रदर्शित किया है। IPL क्रिकेट में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे

0: शुरू होगा। गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन यादों की महफिल कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज पार्श्व गायक मनहर उदास के जन्मदिन पर उनकी ही आवाज से सजे कुछ गीत आज के इस कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं।

हीरो फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मनहर उदास की आवाजों में, आनंद बख्शी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। मनहर उदास के जन्मदिन के मौके पर आज उनकी आवाज से सजे गीत आपको सुनवा रहे हैं यादों की महफिल कार्यक्रम में।

0: रामलखन फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। मनोहर दास, अनुराधा पौडवाल और साथियों की आवाजें, आनंद बख्शी की बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।
1: एक बेमिसाल शायर
2: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
1: एक शानदार शख्सियत,
3: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
3: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, स्टीम का जवाब नहीं, जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से,
3: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, और इस कार्यक्रम में आज हम याद कर रहे हैं पार्श्व गायक मनहर उदास को। उनके जन्मदिन के मौके पर सुन रहे हैं उन्हीं की आवाज में सजे कुछ गीतों को। कार्यक्रम में गीत अब आपको सुनवा रहे हैं खलनायक फिल्म से। मनहर उदास के साथ अलका याग्निक और साथियों की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

मनर उदास, अलका याग्निक और साथियों की आवाजों में खलनायक फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज। कार्यक्रम यादों की महफिल में आज सुन रहे हैं मनहर उदास के आवाज से सजे गीत। आइए सुनते हैं त्रिदेव फिल्म के इस गीत में मनहर उदास और अलका याग्निक को आनंद बख्शी के बोल हैं।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। आपको याद दिला दें कि रोजाना शाम 7:45 से इंद्रधनुष के अंतर्गत आप सुनते हैं अलग अलग कार्यक्रम और आज आप सुन सकते हैं शास्त्रीय गीतों पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम राग अनुराग और हवा महल में सुनिए झलकी ना बाबा ना

जांबाज फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। कल्याण जानन जी का संगीत, मनहर उदास और साधना सरगम की आवाजें, इंदिवर के बोल। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं यादों की महफिल विविध भारती पर।

मनहर दास और मोहम्मद अजीज की आवाज में नाम फिल्म का गीत आपने सुना। आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का संगीत। यादों की महफिल कार्यक्रम विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

0: मानन उदास कंचन और आनंद की आवाज में आप सुन रहे हैं कुर्बानी फिल्म का ये गीत इंदिवर के संगीत।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
1: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। और इस प्रोमो से ठीक पहले आपने कुर्बानी फिल्म का गीत सुना। कंचन, मनन उदास और आनंद की आवाज है। इंदिवर के बोल कल्याण जी आनंद जी का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल में आज पार्श्व गायक मनन उदास के जन्मदिन पर उनकी आवाज से सजे गीतों को हम सुनवा रहे हैं। और अब सुनते हैं मनन उदास, कविता कृष्णमूर्ति और सुखविंदर सिंह की आवाजों में सौदागर फिल्म का ये गीत। आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सुरीला सफर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। और कार्यक्रम में स्वागत के साथ साथ ही आज के कार्यक्रम के शुरुआत में आपने तो ढेरों बातें हम तक पहुंचा ही दी हैं, लेकिन हर रोज हम एक इबारत या टेक्स्ट फेसबुक पर पोस्ट करते हैं जैसा कि आप सभी जानते हैं। और इस एक पैराग्राफ में बहुत सारे शब्दों में से कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनसे संबंधित गीत, जिन पर आधारित गीत इस कार्यक्रम में शामिल किए जाते हैं। तो आपके लिए इबारत तो पोस्ट कर दी ही जाती है और आपको ये पता लगाना होता है उसे पढ़कर कि कौन कौन से शब्दों पर गाने शामिल हो सकते हैं। और कार्यक्रम का मजा भी इसी बात में है कि गानों की जो लिस्ट है, आपकी जो लिस्ट है, हमारी जो लिस्ट है, हमने जो सोच कर वो इबारत लिखी है, वो सोच आपकी सोच से मिल जाए और वो गाने मैच कर जाए। और कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि गाने ना मैच करें, फिर भी आप फेसबुक कमेंट्स के जरिए पोस्ट पर ये बता सकते हैं कि क्या कि कौन से गाने आपको लगता है कि शामिल होंगे, हो सकता है वो गाने शामिल हो जाएं। तो चलिए आज का ये कार्यक्रम तो नेहा शर्मा के साथ आप सुनने वाले हैं। और इस कार्यक्रम में आज की इबारत या टेक्स्ट हमने जो लिखी है वो क्या है आपको बता देते हैं। जिंदगी की पहेली कोई समझ कहाँ पाया है, कभी तो जिंदगी एक ऐसा सवाल जिसका जवाब मुश्किल, और कभी ऐसा ख्याल जो महका दे मन। जिंदगी एक ऐसी नदी जिसकी धारा बिना उलझनों के बहती है, कभी गाती झूमती और रचती है सौ अफसाने, और कभी इसकी हकीकत कोई जाने तो कैसे जाने। ये जीवन जैसे सपनों की कहानी, थोड़ी अनजानी तो थोड़ी जानी पहचानी। इसलिए तो कहते हैं जीना तो उसी का जीना है जो दे बेसहारों का सहारा, जिसके होते न कोई जीता न कोई हारा। तो ये है आज की इबारत या टेक्स्ट जिसमें छुपी हैं वो शब्द जिनसे आज के इस कार्यक्रम में गाने मतलब शामिल हो सकते हैं। और आपने बहुत सारे गीत हमें लिख भेजे हैं, अलग अलग शब्दों को आपने छांट लिया और कहा है कि इन शब्दों पर गीत तो होने ही चाहिए। देखिए ये आपके कमेंट्स देखकर हमें ये अंदाज़ा हो गया है कि आपकी लिस्ट और हमारी लिस्ट काफ़ी हद तक तो मिल रही है। अब ये देखना है कि किन के जो गीत हैं वो आज के इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं, जिन्हें ऐसा लगा कि ये गीत शामिल होने वाले हैं। लेकिन हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि जिंदगी की पहेली है, सवाल है, जवाब है, वो जो भी है, लेकिन जब मुश्किल वक्त आता है तो आप किस तरह से सुलझाते हैं वो पहेली? क्या आप भी परेशान हो जाते हैं या आप रखते हैं संयम और अपने आप को संभालते हुए अपनी जिंदगी को एक सही ढर्रे पर, सही रास्ते पर ले आते हैं? और क्या है अफसाना आपकी जिंदगी का, हमसे बांटिए। तब तक हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का पहला गीत और हमें ये भी बताइए कि इसमें आवाज किसकी है।

0: कभी तो हंसाए, कभी ये रुला।
1: मन अड्डे की आवाज़ में आनंद फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे और हमारे बहुत से साथियों ने इस गीत के बारे में सोचा था कि ये गीत तो ज़रूर शामिल होगा। तो बिल्कुल सही बात तो है, क्योंकि एक टेक्स्ट का जो पहला अक्षर इस तरह से आए तो लगता है कि ये तो होना ही। लेकिन एक पहेली जो हमारे साथियों के मन में बनी हुई है, ये हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मुझे तो कार्यक्रम को समझ में नहीं आ रहा, लगता है कि पोस्ट कब आती है पता नहीं चलता, तो लगता है कि कार्यक्रम के प्रसारण में कुछ परेशानी हो रही है या समझौता हो रहा है। तो हम इन्हें कहना चाहते हैं कि क्योंकि शुरुआती दौर में एक घंटे का जो अंतराल रहा करता था कार्यक्रम की पोस्ट और कार्यक्रम में, तो उस वक्त हमारे कई श्रोताओं ने कहा कि इतनी जल्दी टेक्स्ट में से शब्द खोजना या गीत सोचना थोड़ा मुश्किल होता है। तो बस इस असुविधा की सुविधा के लिए, असुविधा को सुविधा बनाने के लिए ही कार्यक्रम का टेक्स्ट जो है वो रात में आ जाता है, ताकि आपको एक लंबा समय मिले ये सोचने के लिए कि कौन कौन से शब्द शामिल हो सकते हैं, और आप अपनी पसंद के गीतों की लिस्ट भी हम तक पहुँचा सकते हैं पोस्ट पर कमेंट के जरिए। और जिस तरह से इन्होंने ये बात लिखी, हमारे दूसरे श्रोताओं ने तो ये भी कहा है कि भाई ये बहुत अच्छा लग रहा है उन्हें कि रात में ही पोस्ट आ जाती है। वो कह रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि आप रात्रि को ही कार्यक्रम की पोस्ट डाल देते हो, और उन्होंने जो साथ में इमोजीज डाली हैं उससे समझ में आ रहा है कि उन्हें इस बात से खुशी है। वहीं हमारे एक और साथी ने भी कहा कि पिछले जो रात में पोस्ट आती है उससे उन्हें काफ़ी सुविधा हो जाती है, ताकि वो अपने जो भी बातें लिखनी है करनी है उसके लिए उन्हें एक पर्याप्त समय मिल जाता है। तो बस इस तरह से अलग अलग बातें होती हैं, अलग अलग बातें के साथ साथ अलग अलग विचार भी होते हैं। हमारी कौर साथी कह रहे कि इतनी जल्दी इबारत को हम श्रोतागण को शेयर करना कुछ कुछ सरल सा दिखता है, धन्यवाद विविध भारती परिवार। तो एक ही चीज़ों के दो अलग अलग पहलू देखने मिलते हैं हमें जीवन में भी। तो आप किस तरह का पहलू देखते हैं अपने जीवन में, और हमने पूछा था कि जीवन में अगर कोई मुश्किलें आ जाए तो आप उन्हें कैसे सुलझाते हैं, क्या आप उस मुश्किल को लेकर थोड़ी और मुश्किल में पड़ जाते हैं, या गाते झूमते नाचते अपने उस मुश्किल से पार हो जाते हैं अपने विचारों के जरिए, हमें बताइए। और तब तक हम आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का अगला गीत। उम्मीद है कि ये गीत

महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाजों में आंचल फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं सुरीला सफर विविध भारती पर, और हमारे टेक्स्ट और इबारत को देखकर हमारे कुछ साथियों ने शब्द चुने हैं कि कौन से शब्द हो सकते हैं जिनके गीत आज इस कार्यक्रम में हो। हमारे एक साथी ने लिखा सवाल पाया, हालांकि उनके साथ गाने भी लिखे हैं लेकिन हम सिर्फ शब्द पढ़ रहे हैं। सवाल पाया कहाँ जवाब महका गाता झूमती सपना रचना जाने कहानी सहारा बेसहारा जीता हारा, ये शब्द हो सकते हैं आज के इस कार्यक्रम में जिनसे संबंधित गीत हम सुनवाने वाले हैं, ऐसा इनका अनुमान है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि कुछ शब्द हैं जिंदगी पहेली कोई समझ सवाल जवाब ख्याल जीना सहारा अनजानी बहती झूमती गाती जैसे संज्ञा सर्वनाम क्रिया और विशेषण परक शब्दों की ही भरमार नहीं अपितु संबोधन परक शब्द भी हैं और इनसे बनने वाले गीत भी इस क्रम में शामिल हो सकते हैं। हमारे एक और साथी ने कहा कि भाई आज गाने नहीं लिख रहे हैं क्योंकि बहुत सी कॉमन गाने बचते हैं जो लगभग सबने लिखे हुए होते हैं, मैं थोड़े अलग यानी रेयर गाने पोस्ट करती हूँ जिसका लिस्ट में होना असंभव ही है तो इसलिए वो गाने पर कमेंट नहीं करी। भाई ये तो क्या बात हुई, हो सकता है कि आपके वो रेयर गीत ही हम चलाना चाह रहे हों, ऐसा थोड़ा हो नहीं सकता भाई। इस तरह से आप अगर कहें कि हम तो इसमें भाग नहीं ले रहे तो ये तो जरा अच्छी बात नहीं। हमारे कौर साथी कह रहे हैं कि आज के शब्दों की सूची कुछ इस तरह से हो सकती है जिंदगी पहेली सवाल जवाब मुश्किल ख्याल महका मन नदी धारा उलझन गाती झूमती रचना या रचती अफसाने हकीकत सपना कहानी अनजान।

यानी जानी पहचानी सहारा बेसहारा जीत हार। तो एक तरह से इन्होंने इबारत में से सारे शब्द उछा लिए हैं, तो इनकी बात तो सच होने वाली है क्योंकि बहुत सारे शब्द इन्होंने चुन लिए हैं एक साथ। तो हमारे एक और साथी हैं, उन्होंने बहुत सारे गीत भी लिख भेजे हैं और जिंदगी से संबंधित अपने विचार भी हमारे साथी हम तक पहुँचा रहे हैं। लेकिन आज की इबारत में जैसे कहा गया कि ये जीवन जैसे सपनों की कहानी, तो हमें ये बताइए कि आपको आपके सपने याद रहते हैं? क्योंकि कई बार सपनों में एक अलग सी कहानी चलती रहती है, हम अलग जगह यात्रा करते रहते हैं, कई बार तो कोई सस्पेंस थ्रिलर फिल्म भी चल रही होती है ऐसा लगता है। तो क्या आपने कभी अपने सपनों में कुछ ऐसी कहानी देखी है जो आपके जीवन में कभी नहीं हो सकती, जिंदगी से बिल्कुल अलग एक ऐसी जिंदगी आपने सपनों में जी हो? तो बताइए उसके बारे में, कोई ऐसा सपना जो आपने देखा हो और आपको अब तक याद हो बहुत दिन बीतने के बाद भी। और क्योंकि हमने ये सवाल कर लिया है, तो एक सवाल से संबंधित गीत आपको सुनवा रहे हैं, फिल्म का नाम आपको बताना है।

0: साइलेंस।
1: वो तो है स्कूल का टीचर हरदम जो चिल्लाए।
0: क्यों बच्चों, ठीक है ना?
2: नो सर, नो सर, रॉन्ग आंसर, रॉन्ग आंसर।
0: क्या कहा?

0: देखो तो एक रंगीन फिल्म है जिसकी हुई है जुगली, करेक्ट?
1: नो सर, नो सर, रॉन्ग आंसर, रॉन्ग आंसर।
0: अच्छा, ये भी गलत?
2: जी हाँ।

0: तुम सब जानो इस दुनिया का हाल, अब ना करो सवाल बच्चों, अब ना करो सवाल।
1: नर्तकी फिल्म का ये गीत आपने सुना और ये सवाल हमारा था आपसे, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। हमारे साथी इस बात को लेकर काफ़ी सोच विचार में है कि कब आती है पोस्ट। किसी का कहना है कि कहा जाए उसमें एक वीडियो पोस्ट किया जाए, पर हमें तो लगता है कि इबारत पढ़ना और उसमें से शब्द चुनना ज़्यादा आसान है, क्योंकि वीडियो सुन सुनकर आपको लगातार वीडियो सुनना पड़ेगा हर शब्द को पहचानने के लिए। खैर, ये पहेली तो हम आप पर ही छोड़ते हैं कि किस तरह से क्या होना चाहिए, लेकिन हमने सवाल आपसे पूछा था कि भाई कोई सपना ऐसा आपको आया है जो अब तक आपको याद

हो, कितने दिन बीत गए हों और फिर भी वो सपना याद हो, उस सपने में कोई ऐसी कहानी हो जो आपने जिंदगी में कभी सोची ही ना हो। हो सकता है कोई फिल्म देखकर आप सोए हों और वो सपना आया हो। हमारे एक और साथी कहती हैं कि भाई जिंदगी पर अनगिनत गीत हैं जो मन को सिर्फ छूते नहीं बल्कि बहुत कुछ सिखा जाते हैं, और हर लाइन उसमें ऐसी होती है कि कुछ ना कुछ सीख देती है। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि जिंदगी एक समंदर है जिसमें सुख दुख की लहरें तो आती जाती रहेंगी। और हमारे साथी हैं, वो बहुत सी बातें कह रहे हैं। हमारे एक साथी का कहना है कि भाई शब्द नहीं गीत लिखकर पोस्ट कीजिए। तो मेरा ये सोचना है कि शायद उन्होंने श्रोताओं के कमेंट पर ही ये कमेंट किया है। हमारे एक और साथी कहते हैं कि जिंदगी की पहेली है, नदियों की धार जैसी बहती रहती है, मुश्किलों को पार करती हुई निरंतर बढ़ती जाती है। आगे उन्होंने ढेर सारे गीत लिखे हैं जो उनकी लिस्ट और हमारी लिस्ट मैच होती है या नहीं वो ये देखेंगे खुद से। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि हर मुसीबत एक सबक लेकर आती है, मुसीबत में अनुभव से जीवन में सीखने को मिलता है, मुश्किल समय में धन का अभाव स्थिति को और कठिन बना देता है, इसलिए बचत और योजनाबद्ध तरीके से खर्च करना जरूरी है। ये बात उन्होंने लिखी है जब हमने पूछा था कि भाई अगर मुश्किल वक्त आता है तो किस तरह से आप उससे बाहर निकलते हैं। हमारे एक और साथी कहते हैं कि फिल्म के बारे में वो लिख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कभी कभी परेशान जब होती हूँ तो कुछ भी जिंदगी में थोड़े वक्त ठीक नहीं होते तो गाना सुनकर मन को शांति और कुछ रास्ता भी मिल जाता है। वहीं हमारे एक और साथी का कहना है कि जिंदगी की मुश्किल पहेली सुलझानी हो तो संयम के साथ निरीक्षण करना चाहिए, फिर सोच समझ कर आचरण करना चाहिए। वैसे तो जन्म बुद्धिमत्ता और भाग्य ईश्वर की देन है, फिर भी कठिन स्थिति में मेहनत के साथ प्रयत्न करना हमारे हाथ में होता है। और एक और साथी कहते हैं, जब मैं मुसीबत में होता हूँ तब शब्द कम पड़ जाते हैं तो मैं पुराने दौर के संगीत में अपनी सांत्वना ढूंढता हूँ। कुंदन लाल सहगल की आवाज या शंकर जयकिशन की धुनों में एक ऐसा ठहराव है जो मेरे घावों पर मरहम जैसा काम करता है। तो भाई जब संगीत इतना अच्छा काम करता है तो क्यों ना सवाल जवाब बन कर आपसे पूछते नहीं है कुछ भी, पूछते हैं एक सवाल कि किस फिल्म का है ये गीत जो आपको सुनवा रहे हैं।

भाई तो हमारा सवाल तो ये था कि किस फिल्म का है ये गीत, ससुराल फिल्म का ये गीत है। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया और आपके भी कुछ सवाल हम तक पहुंच गए हैं। वैसे हमारे एक साथी ने कहा कि इस गाने के मामले में तो हमारी पसंद आपसे जा मिली और बहुत से साथियों की पसंद इस गाने के जरिए हम तक पहुंच गई और हमारी और उनकी लिस्ट भी मिल गई। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मेरे सारे स्वप्ने दिवा स्वप्न की तरह निकलते हैं, अतः चर्चा अव्यर्थ प्रतीत होती है। हमारे एक और साथी ने बताया कि जीवन में एक बार उन्हें सपना आया था जब वो स्टेज पे गीत गा रहे हैं फिल्म पड़ोसन का, कहना है कहना है, और ये गीत उन्होंने पूरा का पूरा स्टेज पर गा दिया। ये सपना आज तक नहीं भूले, शायद ये मेरे संगीत के प्रति दीवानगी, क्योंकि गाने का मुझे बहुत ज़्यादा शौक है। ये इन्होंने कहा। हमारे गौर साथी कह रहे हैं कि आपकी पोस्ट अभी बढ़िया डल रही है, जो बदलाव किया है अच्छा है। और हमारे और साथी हैं वो कह रहे हैं पोस्ट ही करना उचित है वीडियो की जगह। हमारे एक और साथी कह रहे हैं जिंदगी को लेकर बहुत सी बातें हमारे साथी कहने लगे हैं। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि जिंदगी एक पहेली, जिंदगी एक सवाल, जवाब मुश्किल, ख्याल महका, जिंदगी नदी धारा बहती गाती झूमती अफसाने हकीकत। इस तरह से इन्होंने इबारत में से काफ़ी सारे शब्द चुन लिए हैं और हमें तो पूरा भरोसा है कि इनके शब्द तो कहीं ना कहीं जाकर हमारे लिस्ट से मिल जाएंगे। हमारे बहुत से साथियों ने गीत भी लिख भेजे हैं और उनके गीत जब हमारे लिस्ट के गीतों से मिलते हैं तो जो खुशी उन्हें होती है उतनी ही खुशी हमें भी होती है। तो चलिए अब कार्यक्रम में आगे अगर हम चलें और दूसरा गीत सुनें तो हमारे साथी कौन से गीतों की फरमाइश कर सकते हैं और कौन से गीत उन्हें लगते हैं कि आ सकते हैं। वहीं हमारे एक साथी ने ये भी कहा कि मेरा सपना तो मैं बहुत देखती हूँ, अलग अलग तरह के होते हैं। कभी मैं किसी को बचा रही हूँ, डाकू से बचा रही हूँ। मैंने एक सपना देखा कि एक लड़के को जब वो शादी में गया था वहाँ उसे देखा। सपने पूरे भी होते हैं कभी कभी, ऐसा इनका कहना है। भाई हमें तो ये अच्छा लग रहा है कि वो एक हीरो का किरदार निभा रही हैं अपने सपनों में। किसी डाकू का किरदार भी कई बार हम निभाते हैं अपने सपनों में। तो ऐसा कोई खतरनाक सपना आपको कभी आया है तो हमें बताइए अपने सपनों की कहानी। तब तक हम आपको ले चलते हैं एक ऐसे सफर में जहां आपको नदियां और धारा की ये बात सुनने मिलेगी। और हमें बताइए कि किसने इस गीत को लिखा है और आवाज किसकी है।

सफर फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे मन्ना डे की आवाज और साथ ही भी उनके साथ साथ में इंदिवर के बोल। ये हमारे सवाल का सही जवाब है। हमारे एक साथी पूछ रहे हैं कि भाई ओरिजिनल पेज कौन सा है और वो ये पूछ रहे हैं ओरिजिनल पेज के पोस्ट के कमेंट में, तो हम उन्हें बता दें जो भी और भी व्यक्ति जो जानना चाहते हैं, विविध भारती राष्ट्रीय सेवा हिंदी में लिखा हुआ है देवनागरी में और साथ ही उसमें एक ब्लू टिक भी बना हुआ है। और अगर आपको और ज्यादा जानना हो तो आप देख सकते हैं फॉलोवर 100K लिखे हैं, यानी 1,00,000 फॉलोवर हैं, 1,00,000 हमारे श्रोता हैं जो इसमें हमारे साथ शामिल हैं। तो इस पेज को जब आप देखेंगे तो इसमें जो भी पोस्ट आती हैं वो विविध भारती की तरफ से आधिकारिक रूप से पोस्ट आती हैं। तो बस ये देखिए कि विविध भारती राष्ट्रीय सेवा हिंदी में लिखा हो, साथ ही उसमें एक ब्लू टिक साइड में बना रहता है, वो बना होगा फेसबुक पर www.facebook.com/vbsmumbai। इस पते पर जाकर आपको ये पेज मिल जाएगा। और हमारे साथी कह रहे हैं बेसहारा और सहारा शब्द पर मेरी पसंद का गाना, उन्होंने बता दिया है गाना है तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो। सपने के बारे में हमारे एक साथी ने बताया कि एक रात अचानक 3 बजे नींद खुली, उसका कारण ऐसा सपना था कि फाइनल ईयर के एग्जाम में इंग्लिश का पेपर है, रिविजन करें। थोड़ी देर बाद जब नॉर्मल हुए तो पता चला सारे एग्जाम पास करके रिटायर हो गए, तब जाकर नींद में चले गए। तो साथियों बुढ़ापे में भी जवानी के सपने याद आते हैं, ऐसा इन्होंने लिखा। हमारे साथियों ने बहुत सी बातें लिखी। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि 25-30 साल पहले एक सपना उन्होंने देखा था जो आज भी याद आता है तो रूह कांप जाती है। अलग कमरे में मैं सो रही थी और माँ अलग कमरे में, मैंने सपने में देखा कि मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई बहुत दूर, नींद में ही रोने लगी और सपना टूट गया। दौड़कर जब माँ के रूम में गई तो माँ से लिपट कर बहुत रोई। हमारे एक और साथी ने बताया 1987 का सपना, कि सपने में रात में उन्होंने देखा कि एक मानव आकृति आसमान में विचरण कर रही है। अगले सारे दिन उस सपने के बारे में सोचता रहा और रात को हमें एक दुखद समाचार मिला कि पिताजी नहीं रहे। हमारे एक और साथी हैं, बहुत सी बातें हमारे साथी लिख रहे हैं। नदियां चले चले रे धारा, कितना गहरी फिलॉसफी इसमें छुपी है। ये गीत भी मेरे कयास से सही निकला, एक नाव वाला गा रहा है, पर्दे पर राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर नदी के किनारे बैठकर भूंजा खा रहे हैं, मन्ना डे की आवाज है। हमारे साथियों ने बहुत सी बातें लिख भेजी हैं अपने जीवन के बारे में, अपने सपनों के बारे में और भी बहुत सी बातें। हमें ये बताइए कि कभी ऐसा हुआ कि आप अपने शहर से दूर आ गए हों और आपको लग रहा हो कि कितना मुश्किल है जीवन यहाँ। कुछ ऐसा गीत भी आने वाला है, वो गीत भी आप सोच सकते हैं कि कौन सा गीत होगा जो दूसरे शहर की, किसी शहर की मुश्किलों के बारे में बताता है। तब तक हम आपको अनुराधा फिल्म से ये गीत सुनवा रहे हैं, हमें बताइए किसने इसे लिखा।

लता मंगेशकर की आवाज में अनुराधा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, शैलेंद्र के बोल, रविशंकर का संगीत। तो गीतकार का नाम आपने बिल्कुल सही पहचाना। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मुझे तो दांत टूटने का सपना बहुत बार आता है। अभी 2 दिन पहले भी आया था, नींद खुलने पर सबसे पहले दांतों की तरफ ही ध्यान जाता है। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मुझे सपने तो रोज आते हैं लेकिन सुबह उठने के बाद कुछ याद नहीं रहता, ऐसा लगता है कि सुबह पड़े हुए सपने अक्सर सच होते हैं। हमारी और साथी कहती हैं कि पहले तो मुझे सपने बहुत आते थे और नींद खुलने के बाद फिर से आकर लेटती थी तो फिर वो सपने वापस में कंटिन्यू होते थे। इंस्टॉलमेंट के सपने उन दिनों बड़ा मजा आता था देखने में। भाई इस जगह आपकी और हमारी लिस्ट मिलती है। हम कह सकते हैं कि इंस्टॉलमेंट में जब सपना देखते हैं ना, कि जब बीच में नींद खुल जाए तो ऐसा लगता है इतना अच्छा सपना चला था, चलो वापस सोकर इसे फिर से देखा जाए और पूरा किया जाए। तो कहीं ना कहीं वहाँ हमारा दिमाग भी लग जाता है और किसी तरह से बड़ा आनंद तो आता है उस सपने को पूरा करने में। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि अपने शहर से दूर जीवन एक नई किताब जैसा होता है, जहां यादों की खुशबू साथ रहती है पर अपनों की कमी अक्सर खलती है। नई जगहें, नए लोग, नई जिम्मेदारियां इंसान को मजबूत तो बनाती हैं लेकिन अपने शहर की गलियां, दोस्त और अपनापन दिल में हमेशा बसे रहते हैं। हमने ये पूछा था कि किसी दूसरे शहर में जाकर कुछ मुश्किलें आपके सामने आई क्या, कि इस शहर में रहना कितना मुश्किल है। और ऐसा ही गीत हमने आपको पहचानने के लिए कहा था क्योंकि मुश्किल शब्द हमारी आज की इबारत में है। तो आपने बिल्कुल सही पहचाना, CID फिल्म का वो गीत ही हम आपको सुनवाने वाले हैं। हमें बताइए किन की आवाजें हैं इस गीत में।

0: ले मेरी जान।
1: सीआईडी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और गीता दत्त की आवाजें, आपने बिल्कुल सही पहचाना। हमारे एक साथी कहने कि सपना तो हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा के दिनों में आया था, जिसे याद करके आज भी हंसी आती है। पहले दिन सपने में देखा कि परीक्षा भवन में बैठा हूँ पर पेपर बटे नहीं है, और दूसरे दिन सपना आया कि पेपर देकर बाहर निकल रहा हूँ, पेपर में सवाल क्या थे वो दिखाई ही नहीं दिए। भाई हम तो ये कहेंगे कि ये सवाल और जो ये बीच का समय होता है ना, वही काटना तो मुश्किल होता है। अब सपने में भी अगर हम ये सब देखेंगे तो भाई वो तो हकीकत में भी नहीं देखना चाहते, ऐसा लगता है बस किसी तरह से अंदर जाएं और परीक्षा भवन में बैठे और बस बाहर आए, बीच का जो समय है किसी तरह से यूं ही कट जाए। और आपने बिल्कुल सही तरह से सपना देखा है। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि आपने पूछा है तो बता रहा हूं, 1995 में हाई स्कूल पास करके पारिवारिक कारणों से बंबई से दिल्ली आ गया। 4-5 साल तक कुछ भी अच्छा नहीं लगता था यहाँ, बल्कि 2 बार भागकर वापस बंबई गया। रिश्तेदारों का व्यवहार, वक्त और हालात ने ऐसा सबक सिखाया कि 30 सालों से दिल्ली में हूं लेकिन बंबई की तरफ पैर करके भी नहीं सोता। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे कि गंगटोक भ्रमण के दौरान नाथुला जो चीन की सीमा पर है, वहां ऑक्सीजन कम होने के कारण डर लगा था क्योंकि सांस लेने में तकलीफ होने लगी थी। तो इस तरह से जो मुश्किल वक्त के बारे में हमने पूछा वो हमारे साथियों ने बताया। हमारे एक और साथी कहती हैं कि जब मुसीबत में हो तब कैसे निकले, तो मैं थोड़ा चुप रहना चाहती हूँ, बहुत कम लोगों से बात करना चाहती हूँ और जो मेरे मन को अच्छा लगता है प्रभु का नाम, बस उन्हें याद करती हूँ। बीच रात में मुझे नींद नहीं आ रही थी, कोई बात परेशान कर रही थी तो रात में बैठकर मंत्र उच्चारण करती हूँ, कोई गिनती नहीं करती हूँ। बहुत बार मन को सुकून के साथ साथ उस समस्या का समाधान भी निकल जाता है। वहीं हमारे बहुत से

रही हैं जो ये बता रहे हैं कि उनकी जो लिस्ट है वो हमारी लिस्ट से काफ़ी हद तक मिल गई है। बहुत सारे गीत जो उन्होंने सोचे थे और लिखे थे कमेंट में, वो आज के इस कार्यक्रम में शामिल हो गए हैं। तो यकीन मानिए, हमें तो बहुत ही आनंद आ रहा है कि आपकी और हमारी लिस्ट मिल गई है। तो अब एक ऐसा गीत जिसके जो तो लिस्ट में बहुत देर से हम देख रहे हैं कि बहुत से साथियों की लिस्ट में शामिल है, और ये हमारे गीत हमारे लिस्ट में भी काफ़ी देर से शामिल था। तो चलिए ये गीत सुन लेते हैं और आपको बताना है फिल्म का नाम।

अनुरोध फिल्म का ये गीत आपने सुना, मन्ना डे और साथियों की आवाज़ें, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। हमारे बहुत से साथियों ने इस फिल्म का नाम बिल्कुल सही बताया, क्योंकि हमारा यही सवाल था। हमारे एक साथी ने कहा कि आमतौर पर सपनों में वही आता है जो हमारे दिमाग में रहता है, और हम सोचते हैं कुछ ऐसी जगह जहाँ हम जाना चाहते हैं। कभी कभार ही ऐसा होता है कि जो नहीं सोचा जाता वो सपनों में आ जाए, लेकिन ये कभी कभार ही होता है। और हमारे बहुत से साथी हैं जिन्होंने अपने सपनों के बारे में बताया कि क्या क्या देखते हैं। तो आधे से ज़्यादा साथी तो स्कूल के दिनों को ही देखते हैं, खास तौर से परीक्षा का समय, और वो भी

सा कि अगर वो परीक्षा दे रहे हैं तो टीचर ने कॉपी छीन ली या कुछ लिख नहीं पाए या फिर सब चीज़ें ठीक नहीं हुई। भाई ये जो एक भय है मन में वो सालों साल बसा हुआ है ऐसा लगता है, क्योंकि वो जो भी हमारे साथी लिख रहे हैं कि जो देखते हैं ये वाला सपना, वो कब से अपने स्कूली जीवन को पार कर चुके हैं और वो पढ़ चुके हैं, पढ़ाई वढ़ाई सब हो चुकी है, कई तो रिटायर भी हो गए अपना काम करके, लेकिन ये जो सपने का जो है ना कि भाई नहीं परीक्षा दे रहे थे परीक्षा नहीं हुई, वो अब भी जारी है। हमारे बहुत से साथी बहुत खुश हैं और हम भी उनसे ज़्यादा खुश हैं कि उनके गाने आज के लिस्ट में शामिल हो गए। तो एक और गाना चलिए जांच लेते हैं, क्या आपके लिस्ट में ये गाना था? फिल्म का नाम अगर बताएं तो बहुत अच्छा होगा।

सम्राट चंद्रगुप्त फिल्म से ये गीत आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम ही हमने आपसे पूछा था और आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। जब बात हो रही है जिंदगी की मुश्किलों की और सपनों की, तो एक गीत हमें बिल्कुल अच्छा लगता है, क्योंकि वो गीत हमें किसी तरह से ये समझाता है कि जीवन को जीना ही है और जीवन को किस तरह से जीना चाहिए। ये गीत आपको सुनवा रहे हैं और आप हमें ये बताइए कि किस फिल्म का ये गीत है, आवाज़ किसकी है।

मेरा नाम जोकर फिल्म का ये गीत मुकेश की आवाज़ में आपने सुना, यही हमारे सवाल का सही जवाब था। और इसके साथ ही आज का सुरीला सफ़र कार्यक्रम यही समाप्त होता है। विविध भारती का सुरीला सफ़र जारी रहेगा।

साथियों, इन दिनों हमारे देश के अधिकांश भागों में गर्मी अपने रौद्र रूप में है। सूरज निकलते ही शोले उगलना शुरू कर देता है। गर्मी से लोग बेहाल हैं। लोग दिन को बड़ी मुश्किल से काट रहे हैं। उन्हें शाम

0: और रात का बेसब्री से इंतजार रहता है। गर्मी से बचाव का हर उपाय बेकार जान पड़ता है, लेकिन जिंदगी रुकती कहाँ है। इस भीषण गर्मी में भी लोग सफर कर रहे हैं और मजदूर चट्टाने तोड़ रहे हैं। मौसम की ये दुश्वारियां हजारों वर्षों से मनुष्य और जीव जंतुओं के साथ चल रही है। कोई भी परेशानी स्थायी नहीं होती। इसी गर्मी से एक दिन समंदरों का पानी बादल बनकर बरसेगा, बीज उगेंगे, उत्सव मनेंगे और इसी सूरज की तपन से फल मीठे होंगे।
1: सूरज जरा आ पास आ, आज सपनों की रोटी पकाएंगे हम। है आसमां तू बड़ा मेहरबान, आज

जिंदगी में परेशानियों और चीजों को देखने का नजरिया हर इंसान का कितना अलग अलग हो सकता है, यह हम आसानी से अनुमान नहीं लगा सकते। जिस तपते हुए लू के महीने से लोग इतने बेहाल रहते हैं, उसी महीने को एक शायर कितनी खूबसूरत मिसाल देता है, यह बेहद ठंडक देने वाली बात है। क्या रूपक है, सुनिए जरा।

ये तपन मनुष्य और प्राणी जगत की परीक्षा लेती है। ये हमें विकट परिस्थितियों से जूझने के लिए तैयार करती है। तभी तो इस सर्वाधिक कठिन मौसम में पेड़ों में नई कोमल पत्तियां निकलती हैं, गुलमोहर सजता है, मोगरा महकता है। और गर्मियों में ये जो हमारे शरीर से पसीना बहता है ना, ये मनुष्य की मेहनत और स्वाभिमान से जीने का प्रतीक है। इसीलिए तो ईमानदारी और मेहनत से कमाए धन को खून पसीने की कमाई कहा जाता है।

0: गई दौलत सारी, सेठ भी अंदर माल भी अंदर दोनों ना बच पाएंगे, जैसे सेठ मरा है वैसे सारे मारे जाएंगे,
1: सारे मारे जाएंगे, सारे मारे जाएंगे।
0: अरे इसीलिए तो कहता हूँ प्यारो के खून पसीने की जो मिलेगी तो खाएंगे।

0: अंदर जोश भी अंदर होश ठिकाने आएंगे, जैसे मारा गया वो जालिम सारे मारे जाएंगे,
1: सारे मारे जाएंगे, सारे मारे जाएंगे।
0: अरे इसीलिए तो कहता हूँ प्यारो के खून पसीने की जो मिलेगी तो खाएंगे, नहीं तो यारो हम भूखे ही सो जाएंगे।
2: तो साथियों, अब आज का त्रिवेणी कार्यक्रम समाप्त होता है।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया। श्री एन रंगासामी ने रिकॉर्ड पांचवी बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज किए। सीबीएसई ने अखिल भारतीय सीनियर सेकेंडरी कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए। सरकार द्वारा आयात शुल्क को लगभग 15% किए जाने के बाद सोने और चांदी की कीमतों में 6% से अधिक की वृद्धि।

0: मौसम विभाग ने कहा इस साल मॉनसून जल्दी आने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से। अब समाचार विस्तार से। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवगठित सरकार ने 144 विधायकों का बहुमत साबित कर विश्वास मत हासिल कर लिया है। एडप्पाडी पलनीसामी के नेतृत्व में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के 22 विधायकों ने विश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। एक रिपोर्ट।
1: लोक निवास में आयोजित एक सादे समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने मुख्यमंत्री और आज शपथ लेने वाले दो मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इससे पहले मुख्य सचिव शरद चौहान ने केंद्र सरकार की उस अधिसूचना को पढ़कर सुनाया जिसमें मुख्यमंत्री और दो मंत्रियों की नियुक्ति की गई थी। समारोह के बाद श्री रंगासामी पुदुचेरी विधानसभा भवन स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय गए और अपना कार्यभार संभाला। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार पुदुचेरी को सिंगापुर की तर्ज पर विकसित करने की दिशा में काम करेगी। रंगासामी के नेतृत्व में लगातार दूसरी बार प्रदेश में एनडीए की सरकार बनी है। अन्य मंत्रियों, विभागों और विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सरकारी सचेतक की नियुक्ति को लेकर एनडीए में विचार विमर्श जारी है। बिबिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
0: ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस नेता एन रंगासामी ने आज रिकॉर्ड 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। पश्चिम बंगाल में कोलकाता में 18वीं विधानसभा के नव निर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर सीट से विधायक के रूप में शपथ ली जबकि नंदीग्राम सीट रिक्त रखी गई है। इसके बाद मंत्रिमंडल के 5 अन्य सदस्यों ने भी शपथ ग्रहण की। वहीं नौदा सीट से विजयी आम जनता उन्नयन पार्टी के विधायक हुमायूं कबीर ने भी शपथ ली। कबीर ने रजीनगर सीट से भी जीत हासिल की है। कार्यवाहक अध्यक्ष तापस राय ने सभी विधायकों को शपथ दिलाई। राज्य में फालता विधानसभा क्षेत्र में 21 मई को पुनर्मतदान होना है। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज कर दिए हैं। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह SPG प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी गई हैं। एक रिपोर्ट।
2: ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती में योगदान के लिए प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। सूत्रों के अनुसार काफिले का आकार कम करने के बावजूद प्रधानमंत्री की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी महत्वपूर्ण सुरक्षा व्यवस्थाएं यथावत बनी रहेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जहां भी संभव हो बिना कोई नई खरीद किए उनके काफिले में इलेक्ट्रिक वाहन शामिल किया जाए। अंकित की रिपोर्ट के साथ अमीषा।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले का आकार घटाकर आधे से भी कम कर दिया है। ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करके और पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों को अपनाकर आर्थिक स्थिरता में योगदान देने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नागरिकों से की गई 7 अपीलों के अनुरूप है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने भी मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों से सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने को कहा है। एक रिपोर्ट।
3: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों, अन्य अधिकारियों के वाहन बेड़े में 50% की कमी का आदेश दिया है और सरकारी काफिले से अनावश्यक वाहनों को हटाने का निर्देश दिया है। उन्होंने नागरिकों से ईंधन की खपत कम करने, अनावश्यक सोने की खरीद से बचने और घर से काम करने को बढ़ावा देने की अपील भी की। राज्य सरकार ने मेट्रो सेवाओं और सार्वजनिक परिवहन के अधिक उपयोग पर बल दिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अगले आदेश तक अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम कर दी है। श्री यादव ने मंत्री परिषद के सदस्यों से राष्ट्रीय हित में पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि मंत्री, विधायक, अधिकारी और सरकारी विभाग सरकारी वाहनों का उपयोग सीमित करेंगे, कार पूलिंग अपनाएंगे और मेट्रो तथा बस सेवाओं को प्राथमिकता देंगे। समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी राज्य में पेट्रोल और डीजल की बचत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने जनता से वाहनों का अनावश्यक उपयोग न करने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम करने का निर्णय लिया है और मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को वाहनों के उपयोग में संयम बरतने के निर्देश दिए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। छात्र रोल नंबर डालकर आधिकारिक वेबसाइट डिजी लॉकर और उमंग ऐप पर अपना परिणाम देख सकते हैं। इस वर्ष CBSE की कक्षा 12वीं की विज्ञान, वाणिज्य और मानविकी विषयों की परीक्षाएं 17 फरवरी से 10 अप्रैल तक आयोजित की गई थी। CBSE ने एक बयान में बताया कि 17,68,000 से अधिक विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। इनमें से 15,07,000 से अधिक उत्तीर्ण हुए। इस वर्ष का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 85.20% है। छात्राओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 88.86% है, जबकि छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत 82.13% है। भारत कल से शुरू होने वाली 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। विदेश मंत्री ने आज सुबह चिली के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेस मैककेना से मुलाकात की। एक रिपोर्ट।
1: श्री फ्रांसिस्को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की कल से शुरू होने वाली 2 दिवसीय बैठक में भाग लेने के लिए भारत आए हैं। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडल प्रमुख भाग लेंगे। श्री फ्रांसिस्को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए आज नई दिल्ली पहुंचे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान भी करेंगे। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
0: डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने बाजारों और स्रोतों में विविधता लाने, प्राथमिकता वाली वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने और सेवा अर्थव्यवस्था को सुगम बनाने के लिए द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के लेख को साझा किया है, जिसमें बताया गया है कि पंजाब में आधुनिक रेलवे स्टेशन और बेहतर रेलवे नेटवर्क से प्रगति के नए द्वार खुल रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये परिवर्तन क्षेत्र के लोगों के लिए अनेक अवसर लेकर आ रहा है। उन्होंने कहा कि ये लेख दर्शाता है कि पंजाब में किस प्रकार बदलाव आ रहा है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में 16वीं पेंशन अदालत का शुभारंभ किया। देश भर के पेंशन भोगियों ने इसमें हाइब्रिड मोड के माध्यम से भाग लिया। इन अदालतों का उद्देश्य पेंशन संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए मौके पर भी निर्णायक समाधान प्रदान करना है, जिसमें पेंशन भोगियों को अदालतों का सहारा लेने की आवश्यकता न पड़े, उनका समय और धन दोनों की बचत हो और उन्हें एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र प्राप्त हो। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने वांछित भगोड़े प्रदीप सिंह को अजरबैजान से सफलतापूर्वक भारत प्रत्यर्पित करा लिया है। CBI ने विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस के समन्वय से यह कार्य किया। CBI ने बताया कि नई दिल्ली के विशेष प्रकोष्ठ पुलिस स्टेशन में मादक औषधि और मनोरोगी पदार्थ NDPS अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दर्ज एक मामले में प्रदीप वांछित था। इस मामले में बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद किए गए और कई सह आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। नीट UG परीक्षा के कथित रूप से प्रश्न पत्र लीक होने की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI का दल जयपुर पहुंचा। दल ने राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान समूह SOG द्वारा हिरासत में लिए गए कई लोगों से पूछताछ की। जांच के अंतर्गत SOG ने सीकर और आसपास के इलाकों में लोगों से पूछताछ की। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी रामा सुब्रमण्यम ने केवल नीति निर्माण के बजाय अंतर्राज्यीय समन्वय, सुगम सामाजिक सुरक्षा और श्रम कानूनों के सुदृढ़ कार्यान्वयन जैसे प्रणालीगत सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया। वे प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा, सरकार और निजी क्षेत्र की साझा जिम्मेदारी विषय पर आयोजित आयोग की बैठक को संबोधित कर रहे थे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के सहयोग से विकसित वाइब्रेंट ग्राम प्रोग्राम 2026 के लिए माय भारत प्लेटफॉर्म पर राष्ट्रीय स्तर की प्रश्नोत्तरी का शुभारंभ किया है। मंत्रालय ने बताया कि इस महीने की 20 तारीख तक आयोजित होने वाली ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी में देश भर के युवा भाग ले सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। सोने और चांदी की कीमतों में आज 6% तक का भारी उछाल देखा गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के वायदा बाजार में जून अनुबंध के अंतर्गत सोना लगभग 6% बढ़कर 1,62,597 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, जबकि जुलाई अनुबंध के अंतर्गत चांदी लगभग 6.4

0: 4% बढ़कर 2,96,821 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार दिन के दौरान सोने और चांदी की कीमतों में 8% तक की वृद्धि दर्ज की गई। सरकार ने सोने और चांदी पर आयात शुल्क 6% बढ़ाकर 15% कर दिया है। घरेलू शेयर बाजार के आज दोपहर के कारोबार में 0.5% की वृद्धि देखने को मिली। सेंसेक्स 403 अंक बढ़कर 74,962 जबकि निफ्टी 146 अंक की वृद्धि के साथ 23,526 पर था। भारत में इस वर्ष दक्षिण पश्चिम मॉनसून का आगमन जल्दी हो सकता है। इस सप्ताह के अंत तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मॉनसून आ जाएगा। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मॉनसून आमतौर पर हर साल 1 जून के आसपास केरल में शुरू होता है। विभाग ने देश के पूर्वोत्तर तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आज ओलावृष्टि हो सकती है। दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पंजाब में भी आज बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ वर्षा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1998 में आज के दिन भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों का स्मरण किया। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परमाणु परीक्षणों ने देश के अडिग संकल्प को प्रदर्शित किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। श्री फखरुद्दीन अली अहमद देश के 5वें राष्ट्रपति थे। उन्होंने 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक पदभार संभाला। आईपीएल क्रिकेट में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। उधर बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और किदांबी श्रीकांत प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने चीनी ताइपे की तुंग स्यू टोंग को सीधे सेट में 21-9, 21-12 से सिर्फ 33 मिनट में हरा दिया। छठी वरीयता प्राप्त पीवी सिंधु का क्वार्टर फाइनल में मुकाबला डेनमार्क के अमाली शुल से होगा। वहीं पूर्व विश्व चैंपियन किदांबी श्रीकांत ने सिंगापुर के लो केन यू को आसानी से 21-14, 21-15 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। अगले दौर में उनका सामना चीनी ताइपे की सू ली योंग से होगा। हालांकि भारत के आयुष शेट्टी जापान के कोदाई नाराउका से हारने के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 75 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में कोरिया की सेंगमिन ली को 5-0 से हराकर लक्ष्य फोगाट फाइनल में पहुंच गए हैं। अन्य 4 मुक्केबाजों को कांस्य पदक से ही संतोष करना पड़ा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया। श्री एन रंगासामी ने रिकॉर्ड 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज किए। CBSE ने अखिल भारतीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए। सरकार द्वारा आयात शुल्क को लगभग 15% किए जाने के बाद सोने या चांदी की कीमतों में 6% से अधिक की वृद्धि। मौसम विभाग ने कहा इस साल मॉनसून जल्दी आने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

आशा भोसले की आवाज में लाजवंती फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, सचिन देव बर्मन की तर्ज। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

चलती का नाम गाड़ी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल सचिन देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नगमे में आप सुन रहे हैं विविध भारती पर। आइए अब सुनते हैं आशा भोसले को मजरूह सुल्तानपुरी के शब्दों के साथ, मदन मोहन की तर्ज फिल्म आखिरी दांव। सुनते हैं ये गीत।

आखिरी दांव फिल्म के इस गीत में आपने सुना आशा भोसले को मजरूह सुल्तानपुरी के बोल मदन मोहन का संगीत। आपको याद दिला दें कि शाम 4 बजे सखी सहेली के ठीक बाद आप सुन सकते हैं आज के मेहमान कार्यक्रम, जिसमें आज शायर और सेवानिवृत्ति

गीता दत्त की आवाज में आप सुन रहे थे आवड़ा ब्रिज फिल्म का ये गीत, कमर जलालाबादी के बोल, ओपी नैयर का संगीत। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे विविध भारती पर, और अब आपको सुनवाते हैं राजेंद्र कृष्ण का लिखा ये गीत, चंदन फिल्म का ये गीत, मदन मोहन का संगीत है, आवाज मोहम्मद रफी की।

हो जाए उसको ऑटोमेटिक टेलीफोन, हर 24 घंटे जागे उसकी आंख कभी ना लागे। होशियार खबरदार, बच के रहना, देख रहा है सब कुछ ऊपर वाला, बड़ा ही सीआईडी है वो नीली छतरी वाला, हर ताले की चाबी रखे हर चाबी का ताला।

0: मोहम्मद रफी की आवाज में काला पानी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल सचिन देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर सुन रहे हैं और कार्यक्रम का अंतिम गीत धूल का फूल फिल्म से महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर की आवाजें, साहिल लुधियानवी के बोल एन दत्ता का संगीत। ये गीत सुनिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
2: Oh, lovely. Well done.
1: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
2: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स, लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से। नो, लोन लिए गए काम में लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ। कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो। आप कौन?
3: आरबीआई कहता है
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।

मुझे लूट लो मेरे नजदीक आके, कि मैं मौत से

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

0: सखी सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार। मंजरी आपको भी सप्रेम नमस्कार। क्या हालचाल?
2: बस सोनाली बिल्कुल हालचाल एकदम ठीक है। और तुमको और हमारे सुनने वाले सभी सखियों और साथियों को प्यार भरा नमस्कार। और मुझे लगता है सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ मस्त और खुश होंगे और सब इंतजार भी करें कि आज सोनाली और मंजरी बहुत दिनों बाद मिले हैं इस सखी सहेली मंच पर और ये इतनी सारी बातें लेकर के आई हैं तो देखते हैं लोग क्या क्या करती हैं है ना। तो इशारे तो समझ ही रहे हैं ना कि सब लोग भी आज कुछ खाने पीने की बात भी होगी, कुछ बताया भी जाएगा।
1: मजेदार चटपटी चाट का जिक्र होने वाला है।
2: दो आरजे के साथ में दो धुरंधर कुक भी बैठे हुए हैं है ना। कोई किसमें महारत हासिल रखता है, कोई किसमें महारत हासिल रखता है ना सोनाली।
1: बिल्कुल।
2: तो आज तुम कुछ कहने वाली थी ना कि मतलब गाने सुनाने से पहले कुछ तुम्हारा था।
1: मुझे ना ये गानों की आवाज तो बाद में आएगी पर ये आपकी जो छन छन छन छन चूड़ी की जो आवाज आ रही है ना वो बार बार आपके हाथों की तरफ आकर्षित कर रही है कि क्या है इतनी सुंदर चूड़ियां हाथ में पहनी हुई है।
2: एक्सचेंज कर लेते हैं, तुम अपनी मुझे दे दो, मैं तुम्हें अपनी दे देती हूं।
1: ये बातचीत बाद में करेंगे, पहले हम विषय
2: बता देते। देखो व्यंजन की बात आज करने वाले तो उसमें भेलपुरी और दाबेली है ना, जिसमें तुम भेलपुरी मेरे लिए बना के नहीं लाई, बोली दाबेली बाद में खिला दूंगी।
1: ये जो ऐसे आइटम होते हैं ना भेलपुरी और दाबेली, ये ऐसे बनाए और तुरंत खाए, बना के लेकर नहीं आ सकते ना इसको।
2: बिल्कुल सही कहा तुमने। और शब्द हमारे विचार आपके में हम बात करेंगे आज आत्मविश्वास के ऊपर।
1: जी, जो सबसे जरूरी है हर क्षेत्र में, यानी अगर जिसके पास आत्मविश्वास होगा वो अपनी जो है ना बेहतरीन पेशकश दे सकता है।
2: इस शब्द पर तो हमारे साथी लिखकर संदेश भेजेंगे और उन्हीं को तो हम पढ़ने वाले हैं ना।
1: और साथ ही साड़ियों का संसार, इसमें आज हम पश्मीना साड़ी के बारे में जानकारी देंगे और हमारे बहुत सारे साथियों ने भी इस विषय पर बहुत सारे कमेंट्स लिखना शुरू कर दिया है। और साथ ही
2: खाने के लिए जीते हैं या जीने के लिए खाते हैं,
1: ये सवाल मैं आपसे पूछूंगी कि भाई मंजरी जी आप खाने के लिए जीते हैं सिर्फ जीने के लिए खाते हैं?
2: नहीं भाई, तो मैं तो भाई जीने के लिए खाती हूँ, लेकिन वो इतना स्वादिष्ट खाना बनाते हैं ना कि वो सब एक जैसा ही हो जाता है
1: भाई मंजरी जी मैं तो खाने के लिए जीती हूँ है ना, कि मनुष्य का जीवन बार बार नहीं मिलता है, इतने अच्छे अच्छे आइटम से इतने सुंदर से
2: आप मेंटेन है ना
1: ये तो वही तो बात है,
2: इसलिए हमें संतुलन रखना है।
1: हाँ, पौष्टिक खाना खाना है और उसमें अपने स्वाद का भी ध्यान रखना है, वही तो जीवन, उसी में तो जीवन का सही में आनंद है।
2: बिल्कुल आनंद है,
1: संतुलन जरूरी है,
2: संतुलन बहुत जरूरी है। और गीतों का भी तो आनंद है ना, तो क्यों ना पहले गीत सुनाते फिर बातें करते हैं।
1: जी तो सुनते हैं गीत।

0: जैसा कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: तो सोनाली, हम लोग बात करने वाले हैं पश्मीना साड़ी के बारे में, है ना?
2: तो कश्मीर चले?
1: बिल्कुल चलते हैं। तो कश्मीरी साड़ियाँ, जिन्हें पश्मीना साड़ियाँ भी कहा जाता है, कश्मीरी ऊनी कपड़े की एक उत्कृष्ट किस्म है जो 4 अलग अलग प्रकार की पहाड़ी पशुओं से प्राप्त ऊन से बनाई जाती है। पेशमनी शब्द फारसी शब्द पश्मी नेह से लिया गया है, जिसका फारसी में अर्थ ऊन होता है। पश्मीना कपड़ा आमतौर पर कश्मीर में उत्पादित

0: होता है।
1: और ये कपड़ा बेहद आरामदायक और मुलायम होता है। असली पश्मीना कपड़ा इतना नरम और मुलायम होता है कि आसानी से अंगूठी के आर पार जा सकता है। और कश्मीरी साड़ियाँ आमतौर पर सर्दियों के मौसम में पहनी जाती है, क्योंकि ये कपड़ा गर्म और हल्का होता है, जिससे इसे पहनना और ले जाना बहुत आरामदायक होता है।
0: और पश्मीना ऊन और महीन रेशम के मिश्रण से पश्मीना रेशम बनता है। असली पश्मीना साड़ियों में कश्मीरी कढ़ाई की बारीकी कारीगरी होती है, जिसे कशीदा कहा जाता है। कश्मीर में साड़ियाँ बनाने के लिए कई तरह के कपड़े इस्तेमाल किए जाते हैं। इनमें सबसे आम है पश्मीना साड़ियाँ, कश्मीरी रेशम की साड़ियाँ, क्रेप साड़ियाँ और जॉर्जेट साड़ियाँ। यानी कितनी खूबसूरत साड़ियाँ, जैसे तुमने कहा ना कि अंगूठी से आर पार हो जाती है, तो सोचो कितनी मुलायम होती होंगी वो,
1: कितनी
0: है ना।
1: पतली होती होगी ना। और कश्मीरी साड़ियों की उत्पत्ति लगभग 200 वर्ष पूर्व की है, और आज भी पश्मीना शॉल फैशनेबल जीवन जीने वाले किसी भी व्यक्ति के वार्डरोब में सबसे पसंदीदा वस्तुओं में से एक होती हैं। और कश्मीरी साड़ियाँ कश्मीर की धरती पर हाथ से बुनी जाने वाली एक प्रामाणिक शैली की साड़ियाँ हैं। और कश्मीरी साड़ी में हमेशा इसकी विशिष्ट कढ़ाई होती है। सटीक रूप से कहें तो हर कश्मीरी साड़ी मूल रूप से कढ़ाई वाली साड़ी होती है। और कश्मीरी साड़ियाँ खूबसूरत और अनूठी कढ़ाई से सजी होती हैं, जो कश्मीर की पारंपरिक शैली जैसे कि आरी वर्क और तिल्ला कढ़ाई। कश्मीरी साड़ियों में अधिकतर फूलों के डिज़ाइन दिखाई देते हैं।
0: बिल्कुल। और कश्मीरी साड़ियाँ अधिकतर हल्के से लेकर गहरे रंग तक कई रंगों में उपलब्ध होती हैं। इनमें से कुछ सबसे अधिक उपयोग की जाने वाले रंग सफ़ेद, बेज, काला, पीला और नीला हैं। कश्मीरी या पश्मीनी साड़ियाँ आमतौर पर सादी साड़ियों के रूप में बुनी जाती हैं, लेकिन इन्हें बॉर्डर और पल्लू वाली पारंपरिक साड़ियों के समान दिखने के लिए भी बुना जा सकता है।
1: अब जैसे प्लेन स्टाइल, यानी प्लेन स्टाइल कश्मीरी साड़ियाँ चटक रंगों की होती है, जिनमें कोई मोटिफ कढ़ाई, डिज़ाइन या प्रिंटिंग नहीं होती। इनमें एक खास आकर्षण होता है और इनकी सादगी ही इनकी सबसे बड़ी खूबी है। ये साड़ियाँ ऑफिस या कार्यस्थल के लिए एकदम सही है। प्लेन कश्मीरी साड़ियाँ कई रंगों और शेड्स में उपलब्ध हैं, जिनमें नेचुरल बेज से लेकर आइवरी, सफ़ेद, लाल, नीला, हरा, पीला, गुलाबी जैसे अन्य रंग भी शामिल होते हैं।
0: और कानी बुनाई कश्मीर घाटी की एक अनूठी बुनाई शैली है, जिसका उपयोग कपड़े के विभिन्न रंगों में जटिल और बारीक पैटर्न बुनने के लिए किया जाता है। इसमें बहुत बारीकी से काम किया जाता है और काफी समय लगता है, क्योंकि प्रत्येक साड़ी को बुनने में महीनों तक का समय लग सकता है। कानी पश्मीना साड़ियाँ उत्कृष्ट वस्त्र हैं और पीढ़ियों तक विरासत के रूप में दी जा सकती हैं। ये भव्य साड़ियाँ किसी भी औपचारिक अवसर के लिए आदर्श विकल्प हैं, चाहे वो भव्य रात्रि भोज हो, सम्मेलन हो या मनोरंजनपूर्ण समारोह। ये साड़ियाँ हर जगह शोभा बढ़ाती हैं। तो सोच लो कितना अच्छा लगता होगा जब महिलाएं साड़ियाँ, ये वाली पश्मीना की साड़ियाँ पहन के निकलती होंगी, तो चार चांद लग जाते होंगे महफिल में, है
1: और
0: ना।
1: सचमुच एक जो कशीदा कढ़ाई है ना, ये एक अनूठी यहाँ की शैली है जो केवल कश्मीर में ही प्रचलित है। साड़ी पर सुंदर और जटिल पैटर्न बनाने के लिए केवल कुछ ही टांकों का उपयोग किया जाता है। कशीदा कढ़ाई की खास बात यह है कि इसे या तो केवल बॉर्डर या पल्लू पर किया जा सकता है, या फिर पूरी साड़ी पर भी किया जा सकता है। एक लोकप्रिय शैली है जिसमें बॉर्डर और पल्लू पर कशीदा कढ़ाई के साथ साथ पूरी साड़ी पर छोटे छोटे डिजाइन बने होते हैं। कशीदा कढ़ाई वाली साड़ियाँ कला और शिल्प की उत्कृष्ट कृतियाँ हैं।
0: और सोजनी कश्मीर की एक बहुत ही अनूठी कढ़ाई शैली है, जिसमें सैटिन स्टिच का उपयोग करके इस पैटर्न को बनाया जाता है। और साड़ी के दोनों तरफ कढ़ाई की जा सकती है, यानी कि पूरी भर जाती है ये कढ़ाई, आगे पीछे दोनों एक जैसी। इसकी खासियत ये है कि दोनों तरफ अलग अलग रंग भी हो सकते हैं और नहीं भी। सोजनी पहले शाल में बहुत प्रचलित थी, लेकिन अब कश्मीरी साड़ियों के डिजाइन में भी इसका इस्तेमाल होने लगा है।
1: और प्रिंटेड कश्मीरी साड़ियाँ और पश्मीना सिल्क साड़ियाँ पारंपरिक प्रिंट में भी उपलब्ध हैं। इनमें कई प्रकार के प्रिंट मिलते हैं, जैसे साड़ी के पूरे भाग, बॉर्डर, पल्लू पर, बूटी पर प्रिंट, फूलों वाले बॉर्डर और पल्लू, ज्यामितीय बॉर्डर और आदि। और ये प्रिंटेड साड़ियाँ रेशम में सूती साड़ियों की तरह ही बेहद आकर्षक और आरामदायक होती है, और इन्हें कैजुअल और ऑफिस दोनों तरह के मौक़ों पर पहना जा सकता है।
0: और कश्मीरी साड़ियाँ दोहरी या बहुरंगी बुनाई के पैटर्न में भी मिलती हैं। इनमें धारियों के चेक पैटर्न या सादे केंद्र पर मैचिंग बॉर्डर या पल्लू के डिज़ाइन होते हैं। ये बहुरंगी साड़ियाँ 100% पश्मीना और पश्मीना सिल्क दोनों में उपलब्ध हैं। और धागे को कंघी करने की प्रक्रिया से सख्त रेशों को नरम रेशों से अलग किया जाता है। फिर चरखे पर, जिसे स्थानीय भाषा में चरखा कहा जाता है, इसे सावधानीपूर्वक हाथ से काटा जाता है। ऊन व्यापारी ताने और बाने के लिए धागे को अलग करते हैं। रंगीन साड़ियों के लिए इस चरण में रंगर या रंग साज की सहायता से ली जाती है। रंगाई की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ऊन के गुच्छों को बॉबिन में बांधा जाता है, फिर उन्हें ताना लगाने के लिए तैयार किया जाता है। तो इस तरह काफ़ी

0: मेहनत लगती है इन साड़ी को बनाने के लिए, एक दो महीने का समय लग जाता है, बहुत अच्छी डिज़ाइन उभर कर आती है। और सोनाली, हमारी एक साथी ने कमेंट भी लिखकर भेजा है तो मैं इसको पढ़ लेती हूँ।
1: हाँ
0: साड़ियों का संसार पश्मीना, ये जम्मू कश्मीर में बनाई जाती है, वहाँ की बहुत ही प्रचलित साड़ी है। अभी कुछ महीने पहले मेरे घर में शादी थी, तब मैंने ये साड़ी बारात कार्यक्रम में पहनी थी। क्या बात है, और इसका सिल्क बहुत ही मुलायम होता है, हाथ से फिसलती है और देखने में बहुत खूबसूरत लगती है। इसके सूट और शॉल भी मिलते हैं, एक पश्मीना साड़ी भी होना चाहिए हमारी वार्ड्रोब में। बिल्कुल, आपकी वार्ड्रोब में तो हो गई है, अब हम लोग को सोचना पड़ेगा, है
1: अब
0: ना।
1: हम भी खरीदने वाले हैं, हमारी सखी ने खरीद लिया, तो ये हमारी भी जिम्मेदारी कि
0: जी
1: हमें भी पश्मीना साड़ी खरीदना है।
0: बिल्कुल।
1: बहरहाल गाना सुनना है, सुनते हैं गीत।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: जाने कित

0: तो भाई सोनाली, आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो हमारा विषय है कि खाने के लिए जीते हैं, जीने के लिए खाते हैं। तो हमारे साथियों ने देखो बहुत सारे
1: भर भर के
0: संदेश
1: कमेंट्स लिखे हैं।
0: भर भर के लिखे हैं कमेंट्स। और देखो, मनुष्य के जीवन में भोजन का जो स्थान है ना, वो तो
1: बहुत
0: बहुत
1: महत्वपूर्ण।
0: महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके बिना तो जीवन चलता नहीं है। शरीर के लिए सब चीज़ों की जरूरत होती है, उसी तरह भोजन की है। भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं होता ना सोनाली, बल्कि जीवन को चलाने वाली वो शक्ति होती है। अन्न के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हम रसोई में सोच ही नहीं सकते कि ये चीज़ हमारे पास होगी या नहीं होगी, हम सब चीज़ें खरीद लाते हैं। और यही कारण है कि हमारे देश में अन्न को देवता का रूप माना गया है। जब भी हम खाना बनाते हैं तो अन्न के देवता को, देवी को याद करते हैं। और देखो, पहले के ज़माने में क्या होता था कि एक सुबह चाय हो गई, फिर सीधा सादा खाना हो गया, फिर दोपहर की शाम की चाय हो गई, और रात का खाना सादा। सब सादगी पूर्ण था जीवन, उस समय शरीर स्वस्थ भी रहता था, लेकिन धीरे
1: बहुत
0: धीरे
1: स्वस्थ रहते
0: बहुत
1: थे
0: स्वस्थ
1: और
0: रहते थे।
1: काम कितना करते थे पुराने जमाने के लोग।
0: बहुत लोग, सब लोग घर में चक्की भी चलना है, तो
1: हाँ,
0: गेहूं भी पछोरना है, ये
1: पानी
0: सारे काम,
1: भरना
0: पानी
1: है,
0: भरना है,
1: कुएं से पानी निकालना है,
0: हाँ,
1: कितना सारे काम
0: बहुत सारे
1: करते
0: काम
1: थे।
0: थे, तो उसमें फिटनेस रहती थी बॉडी को। लेकिन आज के समय में जो हमारी जीवन हो गया है, भागदौड़ की जिंदगी जो हो गई है, भोजन के प्रति लोगों का दृष्टिकोण जो है बदलता जा रहा है। उन्हें स्वाद और दिखावा और फैशन दिखता है, जिसमें भोजन को, वास्तविक उद्देश्य को पीछे छोड़ देता है। और इसी कारण ये प्रश्न विचारणीय भी बन गया है सोनाली, कि क्या हम जीने के लिए खाते हैं या खाने के लिए जीते हैं।
1: हमारे एक साथी ने लिखा है, मंजरी, भोजन चाहे जीवन जीने के लिए हो या जीवन भोजन के लिए हो, दोनों ही जरूरी है। वो तो हम अपने ऊपर निर्भर करता है कि हम उस भोजन को किस नजरिए से देखते हैं। कुछ लोग रूखा सूखा भोजन ग्रहण करके शून्य से शिखर तक पहुंच जाते हैं, उनको कह सकते हैं कि जीने के लिए खाते हैं। और कुछ लोग बहुत स्वादिष्ट भोजन करके भी अपने जीवन में कुछ विशेष नहीं कर पाते, उनको कह सकते हैं कि सिर्फ खाने के लिए जीते हैं।
0: हाँ,
1: पर ऐसी बात नहीं है, हम पौष्टिक भोजन भी खा के, यानी खाने के लिए जी सकते हैं ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें जंक फूड खा के ही जीना है। बहुत सारे पौष्टिक हमारे तो हमारे भोजन में तो
0: आहार
1: इतनी, आहार में इतनी पौष्टिकता भरी हुई है।
0: हर सीजन में देखो, हर सीजन की सब्जियां मिलती, हर सीजन के फल मिलते हैं। अगर हम उनको भी खाएंगे ना, तो हम स्वस्थ रह सकते हैं,
1: रह
0: जीवन
1: सकते
0: गुजार
1: हैं।
0: सकती है। जरूरी नहीं कि हमें बहुत फास्ट फूड पर हम जाएं, जंक फूड पर जाएं,
1: जी
0: है ना। और हमारे साथी और लिखते हैं कि अगर ये पूछा जाए कि आप खाने के लिए जीते हैं या जीने के लिए खा रहे हैं, तब यही जवाब रहेगा, जीने के लिए खाना जरूरी होता है। यानी ईट टू गो, ईट टू लाइव। जैसे गाड़ी को चलाने के लिए ईंधन की जरूरत होती है, उसी तरह भोजन हमारे शरीर का ईंधन है, जो हमें पोषक तत्व देकर उम्र के साथ साथ ऊर्जा और बुद्धि भी बढ़ाता है। अगर खाना स्वाद पर केंद्रित होगा या चटकारे भोजन पर ध्यान केंद्रित होगा, तो पेट खराब होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए जो भी खाओ, जीने के लिए खाओ। एक बात कान से खाने से की भी ये काम की, मतलब कह दूं कि विविध भारती के मधुर गीतों का रसस्वादन सेहत के लिए भी बड़ा फायदेमंद होता है। आपने बहुत अच्छी सी बात इसमें शामिल कर दी है।
1: एक
0: जी
1: हमारी सखी ने लिखा है कि कुछ समय पहले तक मैं जो भी मिल जाता था खा लेती थी, कभी यह सोचने का समय नहीं मिला कि जो खा रही हूँ उसमें पोषण है भी नहीं। लेकिन जब स्वास्थ्य की बात आई, तब समझ में आया कि भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि जीवन को ऊर्जा देने का आधार है। और उन्होंने कहा है कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर स्वाद के पीछे स्वास्थ्य को भूल जाते हैं, जबकि सही मायने में हमें जीने के लिए खाना चाहिए, ना कि केवल खाने के लिए जीना चाहिए। संतुलित और पौष्टिक भोजन ही स्वस्थ शरीर और शांत मन और अच्छे जीवन की असली पहचान है। अब एक गीत सुन ले,
0: बिल्कुल
1: सुनते हैं गीत।

0: भाई तुम
1: मंजरी
0: थिरक रही थी इस गाने में है ना।
1: जब अच्छा अच्छा खाना सामने हो ना तो
0: हाँ
1: हमारी पायल थिरकने लगती है, हमारी
0: भाई
1: पायल
0: मैं
1: बजने
0: देख रही थी। तो
1: लगती
0: देखो मेरे एक साथी लिखते हैं कि मैं सूरत का रहने वाला हूँ और सूरत का खाना और काशी का डैश डैश फेमस है, सो तो मैं खुले पेट से सबको कहता हूँ कि हाँ मैं चटोरा हूँ, खाने के लिए जीता हूँ। स्वर्ग या नरक में ना जाने खाने को मिले या ना मिले, भगवान को भी लगना चाहिए कि मेरा भेजा बंदा खा पी कर धरती से लौटा है। बहुत इन्होंने हंसने वाले स्माइलीज लगाए हैं। और अगला संदेश क्या है
1: बहुत सारे हमारे
0: हमारे, अच्छा
1: साथियों
0: एक
1: ने।
0: साथी और लिखते हैं, सुनाली हम पढ़ लेते हैं कि पहली बात तो खाएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे, इसलिए खाने के लिए जीना चाहिए, उससे अच्छी सेहत होती रहती है और जब तक स्वस्थ है तब तक जी भरकर खाना चाहिए, लेकिन योग और वॉक करना चाहिए,
1: और
0: है
1: अब
0: ना।
1: लेते हैं एक
0: अंतराल
1: ब्रेक।

0: सोनाली क्या कमेंट तुम देख रही थी बड़ी देर से।
1: बहुत सुंदर हमारे साथियों ने हमारे कमेंट्स लिखकर भेजे। एक लिखते हैं कि भाई खाने के लिए जीते हैं, जीने के लिए खाते हैं, जो भी हम खाते हैं हमारा जीवन बन जाता है, इसलिए भोजन कृतज्ञता के भाव के साथ खाना चाहिए। कहते हैं

0: कि भोजन के द्वारा हम किसी के दिल तक पहुंच सकते हैं, मतलब भोजन जीवन है। जीने के लिए खाना जीवन का संतुलन सिखाता है, जबकि खाने के लिए जीना अक्सर स्वाद की आदत बन जाता है। भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि शरीर को ऊर्जा, मन को संतोष और रिश्तों को मिठास देने वाला माध्यम है। स्वाद जीवन का आनंद है, लेकिन स्वास्थ्य उसकी असली पूंजी है। इसलिए शायद सही बात यही है कि हम ऐसा खाएं जो जीवन को स्वस्थ, खुशहाल और संतुलित बनाए, क्योंकि अच्छा जीवन केवल स्वाद से नहीं, अच्छे स्वास्थ्य और सुकून से भी बनता है।
1: क्या
0: क्या
1: बात
0: बात
1: है।
0: है, बहुत सुंदर
1: और
0: बात।
1: हमारे साथी लिखते हैं कि दुनिया में बहुत सारे लोग खाने के लिए जीते हैं, और जब समझ में आता है कि जीने के लिए समतौल खाना जरूरी, तब तक वक्त निकल चुका होता है। इसलिए जीवन करी जीविता अन हे पूर्ण ब्रह्म उदर भरण नोहे जानिजे यज्ञ कर्म। ये बात सही समय पर जान लो। अर्थ है इसका कि शरीर का यज्ञ शुरू रहने की समाधि यानी खाना होता है, ये बात पहचान लो। बहुत सुंदर सी बात आपने लिख कर भेजी है। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि जीने के लिए खाना एक जैविक और तार्किक आवश्यकता है, जबकि खाने के लिए जीना जीवन के रंगों और खुशियों का आनंद लेने का तरीका है। एक स्वस्थ और सुखी जीवन के लिए अनिवार्य है कि हम जीने के लिए खाएं, लेकिन कभी कभी खाने का आनंद इस तरह से ले मानो हम उसी के लिए जी रहे हैं। सुनाली, एक किस्सा मुझे याद आ गया कि जिम में हमने देखा कि सीढ़ी पे चढ़ के खिड़की थी, तो वहां खिड़की के पास स्पेस था, तो एक लड़की है काफी हैवी थी, वो चढ़ी वहां बैठ गई और बैग से निकाल के उसने बर्गर लेके आई थी, और अंकल चिप्स थे उसके, चिप्स थे और ठंडा कोल्ड ड्रिंक थी, तो बस वो उसके साथ बैठ के खा पी रही थी। तो मैं चढ़ रही थी, मैंने पूछा उसको कि तुम यहाँ क्या करने आई हो, कहती भूख बहुत लगी, पहले खा लूँ फिर जाके कर लूंगी। तो उसका ये कि वो खाने के लिए जी रही थी,
0: नहीं,
1: ऐसा
0: देखिए,
1: लग रहा था।
0: खाने के लिए जीना जरूरी है, पर अगर हम स्वस्थ रहेंगे तभी तो वो जी पाएंगे ना अच्छे से। तो ऐसा नहीं है कि हम जंक फूड खा के ही जी सकते हैं, उसमें भी अब बहुत सारे ऑप्शन है। अब देखिए, जैसे हमने भेलपूरी और दाबेली का ऑप्शन दिया है, तो मैं एक उसमें पौष्टिक भेल की भी रेसिपी बताऊंगी कि
1: क्या बात
0: ऐसा
1: है।
0: नहीं है कि हमेशा जंक फूड खा के ही, उसमें भी हम बहुत उसमें हेल्दी ऑप्शन ले सकते
1: ले
0: हैं।
1: सकते हैं।
0: एक हमारे साथी लिखते हैं मंजरी, जो शरीर के लिए फायदेमंद है वो भोजन नियमित तरीके से खाना चाहिए। सीजनल सब्जी और फल का सेवन करना चाहिए। डब्बा बंद और गैर मौसमी फल सब्जी और अनाज से बचना चाहिए। अपने रहने के एक लिमिटेड दायरे में उगने वाली फसल का उपयोग अधिक करना चाहिए। यानी हम जहाँ रहते हैं वहाँ उगने वाली जो सब्जियाँ होती हैं, वो फल होते हैं ना, उसे हमें प्राथमिकता देना चाहिए। ऐसा
1: बिल्कुल।
0: होता है कि हम विदेशी फलों को, विदेशी सब्जियों को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता देने लग गए हैं। वो भी अच्छे हैं, पर जो हमारे हैं, जैसे अब हम बचपन में कितने जो है ना जाम अमरूद खाते थे,
1: हाँ,
0: बेर
1: सारे
0: खाते
1: फल।
0: थे, गन्ना खाते थे, तो अब वो बच्चे भूलते जा रहे हैं, पर उनमें भी बहुत ज्यादा विटामिन मिनरल्स मौजूद होते
1: अरे,
0: हैं।
1: बहुत से बच्चों को ये भी नहीं पता है कि गन्ने को कैसे
0: खाया
1: मतलब
0: जाता है।
1: खाया जाता है, चूसा जाता है, क्या किया जाता है, तो नहीं बताना पड़ता है कि भाई गन्ने को चूसना पड़ता है। उन्हें चने के साग का स्वाद नहीं पता है, उन्हें झरबेरी का स्वाद नहीं पता है।
0: तो उन्हें कैसे मालूम होगा, हमने ही नहीं बताया
1: हाँ, हम नहीं बता रहे उनको, हम उन
0: तो।
1: जगह लेके नहीं जा रहे हैं, इसलिए
0: जी।
1: थोड़ी सी गलती अपने लोगों की कही जा सकती है। चलो फिर एक संदेश पढ़ लेते हैं। एक साथी लिखते हैं कि शरीर को चलाने के लिए भोजन से जितनी एनर्जी चाहिए उतना भोजन चाहिए ही। कभी कभार भोजन स्वादिष्ट होने के साथ होने के कारण कुछ ही ज्यादा खा लिया जाता है, तो पेट में तकलीफ हो जाती है, इसलिए भोजन को एक लिमिट में ही करना चाहिए। और एक हमारा संदेश है सोनाली, उन्होंने थोड़ा इंग्लिश में लिखा है कि ज्यादातर तो सभी सभी जीने के लिए ही खाते हैं, वैसे भी आजकल तो नाप तौल का खाना होता है, ये मत खाओ वो नुकसान करेगा, इस तरह की बातें ले लिखी हैं। और हम अपने साथियों से कहेंगे कि हिंदी में ही संदेश लिखे तो ज्यादा अच्छा रहता है। वैसे
0: पढ़ने
1: मैंने
0: में
1: आपका
0: दिक्कत
1: पढ़
0: नहीं
1: लिया,
0: आती है ना।
1: हाँ, वो इजिली सी आंखों में अटैक कर जाता है,
0: जी।
1: हालांकि मैंने इनका संदेश पढ़ लिया है, ऐसी कोई
0: एक
1: दिक्कत
0: हमारे
1: नहीं।
0: साथी लिखते हैं मंजरी, खाने के लिए जीना है दृष्टिकोण भोजन को केवल पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि जीवन के परम आनंद और उत्सव के रूप में देखता है। भोजन के स्वाद, विविधता और उससे मिलने वाली मानसिक संतुष्टि को प्राथमिकता देना, नई संस्कृतियों, व्यंजनों और स्वादों को खोजना एक कला है। यह सामाजिक मेलजोल को बढ़ाता है। अच्छा खाना मस्तिष्क में डोपामाइन रिलीज करता है, जो तनाव कम करने और खुशी देने में मदद करता है। अत्यधिक स्वाद लोलुपता से स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है, जैसे अपच या वजन बढ़ सकता है।
1: बिल्कुल। और हमारे एक साथी और लिखते हैं कि आज का पहला विषय बहुत ही रोचक है। मेरा मानना है कि हमें जीने के लिए खाना चाहिए, क्योंकि सादा और पौष्टिक भोजन ही हमें स्वस्थ ऊर्जावान रखता है, लेकिन कभी कभी स्वाद के लिए पसंद का खाना खाने में भी एक अलग ही खुशी है। और अक्सर लोग स्वाद के पीछे भागते हैं, लेकिन लंबी उम्र और अच्छी सेहत के लिए जीने के लिए खाना ही सही मंत्र है। अगर हम खाने पर नियंत्रण रखेंगे तो शरीर हमारा जो है हमेशा साथ देगा। और सुनाली, एक साथी ने हमारे और इंग्लिश में कमेंट लिखकर भेजा है, जब जब हम खाना खाते हैं तभी तो हम जीते हैं। अगर खाना नहीं खाएंगे तो हमारा शरीर कमजोर हो जाएगा, इसलिए खाना भी जरूरी है और जीना भी जरूरी है। जब

0: तक है जीना जब तक खाएंगे खाना। तो ये बात आपने अच्छी लिखी है, लेकिन हम चाहेंगे कि अगली बार आपका संदेश हिंदी के शब्दों में आए, है ना? और क्या करें, सुने गीत,
1: सुन लेते हैं गीत।

0: तो सोनाली कौन सा कमेंट तुम पढ़ने वाली हो?
1: एक हमारे साथी ने लिखा है कि सही मायने में भोजन वही है जो शरीर को ताकत दे और मन को संतुलन। जिस प्रकार दीपक को जलने के लिए तेल चाहिए, उसी प्रकार शरीर को जलने के लिए भोजन चाहिए। परंतु दीपक का उद्देश्य केवल तेल खत्म करना नहीं, बल्कि रोशनी फैलाना होता है। ठीक वैसे ही जीवन का उद्देश्य केवल खाना नहीं, बल्कि अच्छे कर्मों और खुशियों से जीवन को सुंदर बनाना है। इसलिए हमें भोजन का सम्मान करते हुए संयम और संतुलन के साथ जीवन जीना चाहिए।
0: क्या बात है। और हमारे साथी जो है, उन्होंने छोटा सा संदेश लिखा है, खाने पीने क्या शर्माना, कम खाओ गम खाओ, सेहत जोरदार शरीर कभी शानदार। और एक साथी लिखते हैं, एक प्रसिद्ध कहावत का अंग्रेजी अनुवाद है, ईट गो लाइव, ईट टू लाइव और लाइव टू ईट होता है, खाने के लिए जीते हैं या जीने के लिए खाते हैं। इस विषय पर कॉलेज में इंग्लिश में निबंध आता था। क्या बात है, बिल्कुल सही बात है।
1: और एक हमारे साथी ने भी लिखा है कि हिलियर्ड कहते हैं कि जीने के लिए खाना खाने का मतलब है भोजन को शरीर के लिए ईंधन की तरह मानना। अक्सर इसके विपरीत खाने के लिए जीना वाला दृष्टिकोण ये दर्शाता है कि आनंद का एक बड़ा हिस्सा मुख्य रूप से या पूरी तरह से खाने के अनुभव में ही निहित हो जाता है, जो हिलियर्ड के अनुसार आमतौर पर अस्वास्थ्यकर विकल्पों को जन्म देता है।
0: और एक हमारे साथी लिखते हैं, जीने के लिए खाना खाते हैं वो भी घर का बना हुआ स्वादिष्ट वेजिटेरियन फूड, प्राकृतिक सब्जियां, फल और फ्रूट्स। बहुत अच्छी सी बात है, आप बिल्कुल संभाल करके अपने भोजन को ग्रहण करते हैं। और हमारे सभी साथी भी बहुत अच्छी तरह से खाते हैं। लेकिन हमारे एक साथी और लिखते हैं कि सही मायने में भोजन वही है जो शरीर को ताकत दे और मन को संतुलन। जिस प्रकार दीपक को जलने के लिए तेल चाहिए, उसी प्रकार शरीर को जलने के लिए भोजन चाहिए। परंतु दीपक का उद्देश्य केवल तेल खत्म करना नहीं, बल्कि रोशनी फैलाना है। ठीक वैसे ही जैसे, लगता तुमने ये पढ़ा है
1: ये पढ़
0: क्या? अच्छा,
1: दिया
0: तभी तुम इशारे कर रही थी। चलो अच्छी बात है, उनको थोड़ा अच्छा लगा होगा। तो देख, दूसरा कमेंट हम ले लेते हैं सोनाली। खाने के लिए जीते हैं, जीने के लिए खाते हैं। भाई बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि इससे हर एक का ही स्वास्थ्य प्रभावित हुआ करता है। जो लोग स्वाद के लिए भोजन करते हैं, वे ही खाने के लिए जीते हैं, ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि वे अपनी जीवा पर लोलुपता पर नियंत्रण नहीं रख सकते। इसलिए विपरीत, जो लोग खाने के लिए जीते हैं, खाते हैं, वे सुस्वाद भोजन के साथ ही षडश युक्त संतुलित भोजन के लिए सेहतमंद और आनंद में रहते हैं। मैं तुम्हारी आंखों में देखती जा रही थी पढ़ते पढ़ते, कि कहीं तुमने इसको भी तो नहीं पढ़ लिया है। कभी कभी ऐसा हो जाता है श्रोता भाइयों, कि

0: लगता है कि हाँ ये नहीं पढ़ा है, तो पता चलता है दूसरा इशारा कर रहा होता है ना। ये टेक्नोलॉजी में ऐसे है ना, थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो सकती है
1: लेकिन
0: ना, इसमें मजा आता है जिसको लगे अरे मैंने दोबारा पढ़
1: पर अगर हमने गलती को है ना, अपनी गलती को भी आत्मविश्वास के साथ बोल दिया कि
0: लिया।
1: हाँ हमने गलती कर ली,
0: हाँ, तो
1: तो
0: कोई
1: वो
0: भी दिक्कत है,
1: आत्मविश्वास भी अच्छा लगता है
0: बिल्कुल
1: ना।
0: बिल्कुल।
1: आज ये शब्द हमारा, विचार आपके इस विषय में,
0: हाँ,
1: हमारा विषय है आत्मविश्वास। हमारे साथियों ने भी बहुत भर भर के कमेंट्स लिखे हैं आत्मविश्वास। वो सचमुच मंजरी, आत्मविश्वास जो ऐसी ऐसा शब्द है ना, अगर हम उसे अपना ले, यानी कि अगर हमारे अंदर आत्मविश्वास आ जाता है ना, तो कितने भी कठिन से कठिन काम हम बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। फिर
0: बिल्कुल
1: वो कोई कला है, उसके बाद में कोई भी प्रस्तुति है, अगर वो प्रस्तुति में थोड़ी बहुत गलती हो जाए तो भी चलेगा, पर उसमें अगर आत्मविश्वास होगा तो वो कला दिल को छू जाती है।
0: बिल्कुल। हमारे साथी लिखते हैं इसी बात पर कि आत्मविश्वास शब्द में ही इसका अर्थ शामिल है। आत्म यानी खुद पर, विश्वास मतलब भरोसा, अंग्रेजी में सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हैं। इसे अगर परिभाषित किया जाए तो जिन्हें हम अपनी अक्षमताओं, कौशलों और निर्णय लेने की क्षमता पर अटूट भरोसा हो, वो आत्मविश्वासी कहा जा सकता है। जो बिना डर हर चुनौतियों का सामना कर सकता है, बस एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए। इस बात पर गुजराती मुहावरा है, मन होए तो मालवे जवाए। मतलब मन करे तो हम कोई भी जगह जा सकते हैं, कोई भी कठिन कार्य कर सकते हैं। बहुत सुंदर सी बात लिखी
1: एक
0: आपने।
1: हमारी सखी ने लिखा है कि अपनी असफलताओं पर ना डरते हुए अपने काम पर भरोसा, सही मायने यही आत्मविश्वास होता है। अपनी योग्यताओं, क्षमताओं और निर्णयों पर अटूट भरोसा है, ना कि केवल अहंकार। ये अपनी खूबियों और कमियों को स्वीकार करते हुए जीवन की चुनौतियों का सामना करने की सकारात्मक मानसिक स्थिति है। ये डर को दूर कर सत्य और आंतरिक शक्ति पर विश्वास करने का नाम है। मन में विश्वास, हम होंगे कामयाब
0: क्या
1: एक दिन।
0: बात है। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि आत्मविश्वास से विवेक बुद्धि को बल मिलता है। वो मैं पूर्ण आत्मविश्वास से भर कर कार्य करता हूँ, जहाँ मुझे सफलता भी मिलती है। बस कोई काम में आत्मसात से करे, यानी कि आप कोई भी काम करें तो ये मत सोचे कि हमें इस काम से सफलता मिलेगी। पहले तो ईमानदारी से काम करें, आप आत्मविश्वास से भरें और धैर्य के साथ करें, तो आप हमेशा अपने काम को आगे ले जा सकते हैं। और हमारे साथी लिखते हैं कि आत्मविश्वास के बारे में मेरा मानना है कि ये हमारे काम और मेहनत से पैदा होता है। जब हम दिन भर कठिन परिश्रम करते हैं और अपने काम में माहिर होते जाते हैं, तो वही भरोसा हमारे व्यक्तित्व में आत्मविश्वास बनकर छलकता है। आत्मविश्वास ही वह शक्ति है जो हमारे हर सुबह एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। मेरा मानना है कि आत्मविश्वास कठिन परिश्रम से आता है। जब हम अपनी कमियों को स्वीकार कर उन्हें सुधारते हैं, तो हमारा आत्मविश्वास अपने आप बढ़ सकता है।
1: एक हमारे साथी लिखते हैं कि आत्मविश्वास के बारे में मेरा मानना है कि हमारे काम और मेहनत से पैदा होता है। जब हम दिन भर, अच्छा आपने पढ़ चुका है ये भी कमेंट्स आप पढ़ चुके हैं, और हमारे बहुत सारे साथियों ने इस विषय पर और भी कमेंट्स लिखे हैं, तो उससे पहले गाना सुन लें, तो सुनवाते हैं गीत।

0: एक हमारे साथी लिखते हैं मंजरी कि व्यक्ति के जीवन में आत्मविश्वास सफलता की वो सीढ़ी है जिस पर चलकर व्यक्ति आसमान की ऊंचाइयों को छू सकता है। जब स्वयं पर भरोसा होता है तो हर मुश्किल आसान लगती है, लेकिन आत्मविश्वास का मतलब ये नहीं कि मुझे सब पता है। इसका मतलब पता ना होने पर भी सीख लूंगा। आत्मविश्वास कभी शोर नहीं करता, वो शांति और धैर्य के साथ अपना काम करता है। सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात यह है कि आत्मविश्वास कोई जादू नहीं जो एक दिन में प्राप्त किया जा सकता है। ये हर रोज खुद से छोटे छोटे वादे करके उन्हें निभाने से ही आता है। क्या
1: क्या
0: बात
1: बात
0: है,
1: है।
0: बहुत सुंदर
1: और
0: विचार।
1: इतनी सारी बातें करने के बाद तो अब चलते हैं व्यंजन की ओर, जिसमें मुझे मिल गई है कच्ची दाबेली की रेसिपी।
0: तो
1: तो
0: बता
1: हमारे
0: दीजिए।
1: साथियों ने भेजी, तो हम इसको पढ़ते हैं कि पहले मसाला तैयार कर लीजिए। दाबेली मसाला घर पर बनाने के लिए धनिया, जीरा, सौंफ, लौंग, दालचीनी, तेज पत्ता और सूखे नारियल को भून कर पीस कर तैयार कर लीजिए। मतलब अपने अंदाज से लीजिए सामग्री। सामग्री आगे लिखी इन्होंने कि जो आलू का मसाला, 4-5 उबले और मैश किए हुए आलू, दाबेली का मसाला जो स्पेशली लिया जाता है जो पहले से तैयार किया था वो 2-3 बड़े चम्मच लेना है। जो हमने पहले बताया था वो दाबेली का मसाला था। अब चटनी, इसके लिए आपको इमली की खट्टी मीठी चटनी और लहसुन लाल मिर्च की तीखी चटनी। स्टफिंग के लिए बारीक कटा प्याज, अनार के दाने, मसाला वाली मूंगफली, बारीक सेव और अन्य में लिखा है 6-8 पाव मक्खन या घी, हरा धनिया। और इसकी विधि लिखी है कि स्टफिंग तैयार करें, एक कढ़ाई में तेल गर्म करें, इसमें दाबेली मसाला, थोड़ा सा पानी और इमली की चटनी डालकर मिलाएं। अब मैश किए हुए आलू और नमक डालकर अच्छी तरह मिलाइए। मिश्रण को गीला और मसालेदार रखना है। प्लेटिंग के लिए तैयार आलू के मिश्रण को एक थाली में फैलाएं, ऊपर से बारीक कटा प्याज, अनार के दाने, मसाला, मूंगफली, हरा धनिया और ढेर सारी बारीक सेब डालें। दाबेली असेंबल करें, पाव को बीच में काटें और पूरी तरह से अलग न करें। एक तरफ से तीखी चटनी, दूसरी तरफ से मीठी चटनी लगाएं और भरें। बीच में 1 बड़े चम्मच तैयार आलू का मसाला भरें, ऊपर से थोड़ा सा अनार, प्याज और मूंगफली डालें और एक तवे पर मक्खन या घी गर्म करें और दाबेली को दोनों तरफ से कुरकुरा होने तक सेक लें। गर्मा गर्म दाबेली आप खाएं, हमको खिलाएं, सबको खिलाएं, है ना।
0: और अभी छुट्टियों का मौसम है तो बच्चों को इस तरह का कुछ चटपटा बना के खिलाते हैं तो
1: बहुत अच्छा
0: बच्चे बड़े
1: लगता
0: खुश हो
1: है।
0: जाते हैं ना,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: और उन्हें उन्हें उनकी हेल्प भी ले सकते हैं क्योंकि बनाना जो है आसानी होता है। बस
1: बिल्कुल
0: तवे में सेकते वक्त हम अपने साथ खड़े रहें, वरना
1: बिल्कुल
0: बच्चों को साथ में लेके हम उन्हें सिखा भी सकते हैं, बना भी
1: बिल्कुल
0: सकते हैं। वैसे एक भेलपूरी जो है एक चटपटा भारतीय नाश्ता और चाट का प्रकार है। इसकी जड़ें गुजराती व्यंजनों में से है लेकिन मुख्य रूप से मुंबई की पहचान है। मुंबई के चौपाटी गिरगांव जुहू बीच की भेलपूरी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इसकी सामग्री इन्होंने बताया है कि मुरमुरा, तली हुई सेव, पापड़ी, कटे हुए उबले आलू, प्याज और काटी हुई हरी मिर्च से बनाया जाता है। इसमें खट्टी मीठी इमली की चटनी और तीखी हरी चटनी मिलाई जाती है। इसका स्वाद बेहद चटपटा होता है और कलकत्ता में से झालमुरी और कर्नाटक में मसाला पूरी है चुरमुरी के नाम से जाना जाता है। वैसे
1: क्या
0: एक मैं
1: बात।
0: पौष्टिक भेल की मैं आपको रेसिपी बताने वाली थी, तो उसके लिए हमें क्या करना है, 2-3 मुट्ठे मखाना लेना है, उसे घी में अच्छी तरह सेक लेना है, उसमें उबला हुआ शकरकंद जो है उसके छिलके निकाल के
1: क्या
0: बारीक
1: बात
0: बारीक
1: है।
0: छोटे छोटे टुकड़ों में डाल देना। फिर उसमें उबली हुई मूंगफली डालना है और उसमें फिर प्याज, टमाटर और फिर उसमें हरी चटनी, मीठी मीठी चटनी, फिर उसमें बारीक कटी हुई ककड़ी भी डाल सकते हैं, उसमें अनारदाना डाल सकते हैं, उसमें चाट मसाला डाल दीजिए और फिर उसमें रागी की सेव डाल दीजिए
1: क्या बात
0: और ये
1: है।
0: पौष्टिक भेल सर्व कीजिए।
1: हाँ,
0: यानी
1: बहुत
0: हमें
1: खास बात है आपने बताई कि शकरकंद के टुकड़े
0: हाँ यानी
1: और
0: आलू के
1: रागी।
0: बदले हम
1: हाँ,
0: शकरकंद
1: शक्करकंद,
0: का इस्तेमाल कर सकते
1: बहुत
0: हैं
1: अच्छी, सुंदर
0: और
1: बताई,
0: बेसन की सेव के बदले हम उसमें रागी की
1: रागी की
0: सेव
1: से।
0: यूज कर सकते, या फिर खाकरा जो होता है उसको चूरा करके वो डाल दे। तो यानी ऐसा जरूरी नहीं है कि हम जंक फूड खा

0: के ही खुश रह सकते हैं। इस तरह हमें पौष्टिक खाने खा के भी हम खुश रह सकते हैं।
1: बिल्कुल रह सकते हैं। और साथ में गीत सुने कि
0: गीत
1: कमेंट्स पढ़ोगे?
0: एक कमेंट्स पढ़ दीजिए।
1: ठीक है, एक हमारे लिखते हैं कि भारत दावेली, कच्ची दावेली भारत का एक लोकप्रिय नाश्ता है जिसकी उत्पत्ति गुजरात के कच्छ क्षेत्र के मांडवी में हुई थी। ये एक मसालेदार और मीठा नाश्ता है जिसे उबले हुए आलू को एक विशेष मसाले के साथ मिलाकर बनाया जाता है। बहुत सुंदर सी जानकारी दी है। और हमारे साथी लिखते हैं कि देखा तुम्हें मिला।
0: दाबेली, कच्ची दाबेली है, डबल रोटी, देवनागरी दाबेली भारत का एक लोकप्रिय नाश्ता है, गुजरात के मांडवी से हुई एक मसालेदार मीठा नाश्ता है, और ये जो है उबले हुए आलू को विशेष मसाले के साथ मिलाकर बनाया जाता है। इसमें हम पाव की जगह पर हम रोटी का इस्तेमाल करें ना, और पैकेट बना के बना सकते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है।
1: क्या बात
0: और
1: है।
0: आप गीत सुन ले, सुनते हैं।

0: सचमुच नाना करते प्यार कर ही बैठते हैं हम
1: देखो हमारे
0: खाने की चीजों से,
1: साथ
0: भले ही डॉक्टर कितना भी मना कर दे कि ये
1: लेकिन
0: नहीं खाना है वो नहीं खाना
1: अरे
0: है।
1: आजकल तो देखो ना हमारे सोशल मीडिया पे कितनी सारी रेसिपी बताई जाती है, तो उसी में डूबे रहते हैं कि अच्छा ये भी बना ले वो भी बना ले, और सब ले लेकर अपने पास स्टोर करते जाते हैं
0: और फिर
1: व्हाट्सएप
0: क्या
1: पे।
0: होता है ना, जब हम मॉल में जाते हैं ना तो उस वक्त हमें आ जाता है, अच्छा हाँ हमने वो ना नेट पे ये रेसिपी देखी
1: हाँ
0: थी, उसमें ये डालना है, ये पाउडर डालना है, ये सब डालना है, और लेकर आते
1: एक्स्ट्रा
0: हैं
1: शॉपिंग कर लाते हैं, फ्रिज पूरा भर लेते हैं
0: और
1: चीज
0: कभी
1: बटर
0: कभी बनाते भी नहीं है, वो
1: से
0: पैकेट वैसा ही पड़े पड़े एक्सपायर हो
1: रखे रहते।
0: जाता है।
1: देखो हमारे साथी लिखकर बैठते हैं, रेसिपी सुनकर नाना करते दावेली बनाकर खा भी बैठे हैं। और एक लिख रहे हैं कि मैं तो रास्ते से जा रहा था, भेलपूरी खा रहा था, तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। और एक लिखते हैं खाने के लिए जीते या जीने के लिए खाते हैं, इस बारे में इंदौरियों से पूछे, हर इंदौरी खाने के लिए जीता है, किसी भी कोने में चले जाइए खाने।

0: पर भीड़ लगी होती। क्यों ना हो भाई, यहाँ नाश्ते खाने की इतनी विविधता जो है, वाकई में सही बात है।
1: सचमुच
0: हमारे
1: इंदौर
0: देश
1: बार
0: में
1: बार जाने को जी
0: जी,
1: करता है।
0: और देखो हमारे हर शहर में, हमारे देश में कई सारे शहर हैं, सबके अलग खान पान है, सबका अलग स्वाद है। तो जब जहाँ कहीं जाते हैं तो वहाँ का स्वाद खाते हैं। आप चाहे इंदौर चले जाइए, चाहे आप लखनऊ चले जाइए, चाहे आप गुजरात आ जाइए, चाहे महाराष्ट्र आ जाइए, राजस्थान चले जाइए, और जिसका नाम हमने नहीं लिया उन सभी शहरों में जाइए, वहाँ का बढ़िया बढ़िया पंजाब वगैरह सब जगह खा के आइए,
1: और
0: है
1: खूब
0: ना।
1: खाइए और है ना खूब सारा व्यायाम कीजिए, ताकि
0: बिल्कुल।
1: है ना ये जो खाना जो हमने खाया है वो पच जाएगा और हम
0: फिलहाल
1: स्वस्थ रहेंगे।
0: फिलहाल तो हमारी बातों की जो हमने गप्पे मारी हैं उनसे लेते हैं विराम, तो सभी से लेते हैं विदा,
1: और
0: है
1: आप
0: ना।
1: सभी को सोनाली पाठक
0: और मंशी वर्मा का नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
1: सखी सहेली।

0: नमस्कार श्रोताओं, आज के मेहमान आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं सुप्रसिद्ध शायर और विविध भारती के भूतपूर्व केंद्र निदेशक राजेश रेड्डी से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है यूनुस खान। आज सुनिए इस बातचीत का पहला भाग।
1: राजेश रेड्डी एक जाने माने शायर जिनकी गजलों का हर शेर खरा होता है। वो लिखते हैं, शाम को जिस वक्त खाली हाथ घर जाता हूं मैं, मुस्कुरा देते हैं बच्चे और मर जाता हूं मैं। राजेश रेड्डी अपने समय और समाज की आवाज भी बन जाते हैं। जुबां खामोश है डर बोलते हैं, अब इस बस्ती में खंजर बोलते हैं। राजेश रेड्डी की शायरी में जिंदगी का फलसफा छलक छलक पड़ता है। वो लिखते हैं, ये जो जिंदगी की किताब है, ये किताब भी क्या किताब है, कहीं एक हसीन सा ख्वाब है, कहीं जानलेवा अजाब है। जिंदगी के डर, जिंदगी की उदासी और जुल्मतों को वो अपनी लेखनी में पिरो देते हैं। घर से निकले थे हौसला करके, लौट आए खुदा खुदा करके। जिंदगी की नाकामियां, उदासियां और विडंबनाएं भी राजेश रेड्डी की लेखनी में नजर आती हैं।

0: जिंदगी तूने लहू लेके दिया कुछ भी नहीं, तेरे दामन में मेरे वास्ते क्या कुछ भी नहीं। राजेश रेड्डी वो शायर हैं जिन्होंने बड़ी ही मशहूर गजल लिखी जिसे पंकज उधास ने गाया। यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है, खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से डरता है। कई वर्षों तक राजेश रेड्डी विविध भारती के हेड रहे। उन्होंने विविध भारती को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। जाने माने शायर और विविध भारती के हमारे पुराने साथी राजेश रेड्डी विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद हैं और मैं उनका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं।
1: बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस और विविध भारती पूरे परिवार को। इस पूरे परिवार से बरसों बाद 13-14 साल बाद एक मुलाकात हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। और विविध भारती के श्रोताओं से भी इस बहाने मिलना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस विविध भारती परिवार को।
0: मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अभी वो जमाना लौट आया जब आप विविध भारती के मुखिया हुआ करते थे और ढेर सारे काम हम लोग मिलकर एक साथ किया करते थे।
1: जो वो बहुत प्यारा जमाना था और एकदम तुमसे मिलके और विविध भारती में आने के बाद वो जमाना फिर एकदम तरोताजा हो गया। और वो ऊर्जा, वो उत्साह, वो उमंग और श्रोताओं के साथ वो लगाव एकदम आंखों के सामने आ गया। जी खुश हुआ जी।
0: क्या बात है। अच्छा, आकाशवाणी अब अपने 90 बरस की यात्रा की तरफ अग्रसर है। एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक सामाजिक योगदान रहा है, चेतना का योगदान रहा है आकाशवाणी का। तो 90 बरस की इस यात्रा के बारे में जानकर आपकी क्या कैफियत है और आप क्या कहना चाहते हैं?
1: इस यात्रा का तो कोई भारत में खास तौर से पूरे भारत को सांस्कृतिक रूप से और भाषा के तौर पर जोड़े रखने का इससे अच्छा माध्यम, क्योंकि बाकी जो संचार माध्यम है उनमें भाषा, अखबार की बात करें या किताबों की बात करें, टीवी तो खैर बहुत बाद में आया, तो ये आकाशवाणी था जो देश के कोने कोने में, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे वो मैदान हो, गांव हो, बसा हुआ शहर हो, सब जगह अगर पहुंचती तो आकाशवाणी की ही थी। और एक से दूसरे से जोड़ने का जो काम आकाशवाणी ने किया उसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती कि कितने अच्छे ढंग से ये काम हुआ और हो रहा है।
0: बिल्कुल, अपने बचपन की तरफ अगर लौटे तो रेडियो को आप किस तरह से अपने बचपन में देखते हैं, किस तरह से प्लेस्ड था रेडियो और कितनी सुनहरी यादें आकाशवाणी से जुड़ी हैं?
1: यूनुस, कमाल की बात यह है कि अब सारा बचपन जो है वो उस जमाने में और आज के जमाने में तो सोशल मीडिया और जाने क्या कुछ हो गया है, हम लोगों का बचपन रेडियो सुन सुन कर ही बढ़ा। उसमें जो कुछ भी संस्कार आए, सुनने के भी, सीखने के भी, बोलने के भी, समझने के भी, ये सब संस्कार आकाशवाणी ने दिए। और जिसको सुनते सुनते कि ये आवाज़ें कानों को इतनी अच्छी लगती हैं, फिर फिल्म म्यूजिक की तो मैं बाद में बात करूंगा, जिनको हम सुनते थे, चाहे रेडियो ड्रामा हो, अनाउंसर हो, अनाउंसर उस वक्त जो है वो पूरे शहर में एक सुपरस्टार हुआ करते थे, उनकी आवाज़ सुना, अनाउंसर, न्यूज़ रीडर्स, ये सब जो है। तो अगर किसी से कहा जाए कि आप रेडियो में काम करते, अच्छा अनाउंसर है आप, ये अनाउंसर का वो दर्जा था मतलब, और वो पॉपुलरिटी थी। तो मतलब आप स्टेशन डायरेक्टर हो तो कोई मतलब ही नहीं है, हाँ। कोई जानता ही नहीं आपको, लेकिन अगर अनाउंसर है आप, अच्छा, तो ये मतलब बड़ी पहचान हुआ करती थी कि आप रेडियो में अनाउंसर है। फिर रेडियो सिंगर होना, रेडियो आर्टिस्ट होना, ये बड़ी बातें थी। तो हम जब बचपन में सुना करते थे तो जयपुर में मेरा सारा बचपन बीता, तो ये सब हुआ। और फिर उसी केंद्र को सुनते सुनते युवाणी इंद्र शुरू हुआ था, तो जयपुर के जो पहले युवाणी वाला बैच था उसमें हमें सौभाग्य मिला कि हम पार्टिसिपेंट के तौर पर एक कला के रूप में, एक ड्रामा आर्टिस्ट के रूप में ऑडिशन दिया, क्लियर हुए और फिर उसका हिस्सा बने। तो वही युवाणी कार्यक्रम जिसकी शुरुआत ही हम कलाकार थे, पार्टिसिपेंट थे, फिर उसी को हमने एज अ प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव उसको प्रोग्राम को संभाला आकाशवाणी ज्वाइन करने के बाद। और फिर जो मैं दूसरी बात कहना चाह रहा हूँ ये, हाँ। कि आज मैं विविध भारती में बैठ के ये बात बड़े गर्व से कहना चाह रहा हूँ कि बचपन में फिल्म म्यूजिक और उस दरबाने का फिल्म म्यूजिक का तो कहना ही क्या
0: जी।
1: तो जिनको, जिस चैनल को सुन सुन के, वो संगीत सरिता, वो सारे कार्यक्रम और बड़ी बड़ी आवाजें, बड़े बड़े संगीतकार, फिल्म म्यूजिक, तो जिन जिन को सुन के हम लोग बड़े हुए, विविध भारती चैनल को, मैं कभी कल्पना नहीं कर सकता था कि मैं उसी चैनल में आऊंगा
0: जी।
1: और न सिर्फ आऊंगा
0: बल्कि हेड करेंगे
1: उसका कार्यक्रम का, मतलब मुझे संचालन करने का मौका मिलेगा, उसको निर्धारित करने का मुझे मौका मिलेगा, प्लान करने का मौका मिलेगा और पूरे चैनल को मैं अपने ढंग से चला पाऊंगा, देख पाऊंगा। तो ये मेरा सौभाग्य था कि जिस चैनल को सुनते सुनते मैं बड़ा हुआ,
0: वाह वाह वाह,
1: उसी चैनल से मैं रिटायर हुआ और अच्छे ढंग से

0: यार हुआ कि मेरी एक अच्छी टीम थी जिसमें यूनुस एक से एक टेबल, मैं क्या नाम लूं, और पूरी अच्छी टीम, और उनकी वजह से हम अच्छे अच्छे प्रोग्राम शुरू कर सके, चला सके, और आज भी वो चैनल बहुत पॉपुलर है दुनिया
1: क्या
0: भर का।
1: बात है, क्या बात है। मुझे याद आता है आपके साथ काम करने का वो पूरा दौर। कितनी प्यारी आपने बात कही है, युववाणी से आपकी शुरुआत हुई और जयपुर के पहले युववाणी के बैच में आप रहे हैं। न जाने कितने लोगों की यादें ताज़ा हो गई होंगी। मेरी अपनी खुद की याद इसलिए ताज़ा हो गई कि मैंने भी अपनी रेडियो की शुरुआत युववाणी से ही की है, तो वो जो जहन में युववाणी की सिग्नेचर ट्यून बजने लगी जिस तरह की वो होती थी। पर क्या ये रेडियो तक का रास्ता आसान था, या वो रास्ता बहुत सारे डिबेट्स और कल्चरल एक्टिविटीज से होता हुआ पहुंचा है?
0: हाँ, नेचुरली ये आप एकदम अचानक आकाशवाणी में नहीं जा सकते, आपको एक सांस्कृतिक लिटरेरी बैकग्राउंड तो आप में होना ही पड़ेगा,
1: बिल्कुल
0: उसके बगैर आप आकाशवाणी में एंटर नहीं कर सकते, कम से कम आर्टिस्ट के तौर पर या पार्टिसिपेंट के तौर पर। और उस वक्त तो शर्तें और भी ज्यादा, वो आकाशवाणी का एक तरह से जयपुर का आकाशवाणी ड्रामे के मामले में नंबर वन था।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बड़े
0: है?
1: दिग्गज
0: बड़े
1: लोग वहां
0: दिग्गज
1: से आते
0: लोग,
1: हैं
0: नंदलाल शर्मा जी,
1: जी,
0: फिर ओम शिवपुरी, ये सब लोग वहां पे काम
1: गंगा
0: कर।
1: प्रसाद जी।
0: हाँ, तो ये सब जो उसका मेयर था वो ऐसा था कि पूछे मत। जब हम आकाशवाणी में एंटर, उससे पहले हम लोग रंगमंच, कवि सम्मेलन, साहित्य, ये सब कर चुके थे
1: जी जी
0: और कर
1: जी
0: रहे थे, है ना। तो उसके साथ ये हम ऑडिशन देने गए, उत्तर से सेलेक्ट हुए और पार्टिसिपेंट के तौर पे उसमें हिस्सा लिया। तो ये सफर जो है आकाशवाणी का सफर, पहले मेरा अपना रचनात्मक सफर शुरू हुआ और वो फिर आकाशवाणी के जरिए आगे बढ़ा। ये
1: बहुत ही शानदार बात है। जयपुर में जब आप पढ़ रहे थे तो आपने कहा कि रंगमंच और बाकी कल्चरल एक्टिविटीज में आप शामिल थे, तो रंगमंच की अपनी एक्टिविटीज के बारे में बताइए।
0: रंगमंच का यूं था कि मैं थोड़ा अपना पारिवारिक पहले बैकग्राउंड बताऊं कि
1: जी
0: मैं, हमारे परिवार में संगीत का परिवार रहा है। हमारे पिताजी बाकायदा गायक रहे और आकाशवाणी जयपुर के उस वक्त ए ग्रेड आर्टिस्ट में से वो सुगम संगीत के गीत, गजल, ये सब गाना उनका रहा। और न सिर्फ वो गायक थे बल्कि उन्होंने जयपुर में एक राष्ट्रीय तरुण कलाकार परिषद और श्रुति मंडल, ये दो
1: वाह,
0: सांस्कृतिक मतलब कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन कौशल भार्गव साहब के साथ मिलकर खड़ी की, जिसने साल भर में बड़े बड़े कंसर्ट, म्यूजिकल कंसर्ट, और बड़े बड़े उस्ताद, बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े गुरु, तो इन सबको हमने बचपन से उनको आमने सामने बैठ के सुना, उनके आसपास घूमे, कई लोग हमारे घर भी आए। तो वो माहौल जो था बचपन का, वो सांस्कृतिक माहौल हमें बचपन से मिला, हम लोग
1: यहां
0: बड़े।
1: एक पल के लिए रुकना
0: जी
1: चाहता हूं कि जिस किसी को भी आपके बारे में बताएं तो लोग सोचते हैं कि आपका ताल्लुक तो कहीं आंध्रा से होना चाहिए, तो
0: जी
1: जयपुर से होते हुए लोगों को थोड़ा ताज्जुब होता है, इसके
0: हाँ,
1: बारे में
0: बिल्कुल
1: थोड़ा
0: सही है,
1: बताएं।
0: वो नाम से भी बिल्कुल है कि, और ये सही है कि हम लोग मूल रूप से आंध्रा के ही हैं,
1: जी
0: तेलंगाना के हैं, हमारे पिताजी माताजी सब वहीं के रहे, लेकिन मेरा ननिहाल नागपुर, और मेरे पिताजी जो पोस्टल टेलीग्राफ्स में डिपार्टमेंट में काम करते थे, उनकी पहली पोस्टिंग भी नागपुर में थी, तो मेरा जन्म भी नागपुर में हुआ। लेकिन आंध्रा में हमारा संपर्क लगातार, हम लोग नहीं रहे कभी भी, माताजी पिताजी कभी रहे थे, हम लोग बचपन में कभी शादी ब्याह में गए, साल में एक आध बार घूमने गए, तो आंध्रा उससे पहले हमारे पिताजी माताजी वहां से निकल चुके थे
1: जी
0: नागपुर, और नागपुर के बाद एक पूरा डिपार्टमेंट पिताजी के सेक्शन का वो जयपुर शिफ्ट हुआ, तो पिताजी जयपुर शिफ्ट हुए, तो हम बहुत बचपन में ही, हम बच्चे लोग जो थे वो जयपुर शिफ्ट हो गए उनके साथ, और फिर मेरी सारी परवरिश, पढ़ाई लिखाई सब जयपुर हुई। तो ये है आंध्रा और जयपुर का सेतु।
1: बिल्कुल, ये मुझे लगा कि ये
0: हाँ,
1: जरूर इस
0: क्लियर।
1: बात के बारे में बात कर लेनी चाहिए। तो गुलाबी नगरी एक तरह से आपके बनने का, एक
0: बिल्कुल
1: बुनियाद का शहर
0: बिल्कुल,
1: रहा है, और आज भी बहुत सशक्त परंपरा रंगमंच और संगीत की जयपुर में रही है। तो आपके जमाने में वो कौन से कलाकार थे जो रंगमंच में बहुत जबरदस्त तरीके से सक्रिय थे? मुझे लगता है कि ओम शिवपुरी वाला दौर था।
0: हाँ, ओम शिवपुरी उस वक्त एनएसडी जा चुके थे। हाँ,
1: ओके
0: और हम उस वक्त छोटे थे और हम लोग रंगमंच में एक्टिव हुए हुए थे, देख ही रहे थे, सुन ही रहे थे, और एक सीखने का प्रोसेस जारी था।
1: जी
0: तो जो हमारी बचपन की यादें हैं, मतलब शुरुआती दिनों की यादें हैं, उस वक्त ओम शिवपुरी और सुधा शिवपुरी का
1: वाह,
0: तुगलक,
1: क्या बात है
0: जो इब्राहिम अलकाजी का डायरेक्ट किया हुआ, वो क्लासिक प्ले था, क्लासिक
1: जी।
0: प्ले, और इन दोनों का जो रोल था, मतलब ये मैं इन्हें कह सकता हूँ कि ये ओम शिवपुरी, उनको फिल्मों में वो जगह नहीं मिली, उनको वो क्रेडिट नहीं मिला, उनको वो काम नहीं मिला जिसके वो हकदार थे, वो दिलीप कुमार थे, वो
1: बिल्कुल
0: रंगमंच के दिलीप कुमार थे, वो क्रेज था उनका, और वो जो अदायगी, उनका प्रेजेंटेशन, उनकी डायलॉग डिलीवरी, सब कुछ। तो बचपन से ये ओम शिवपुरी, सिद्धार्थ शिवपुरी, मोहन महर्षि, ये सब लोग, और दिल्ली से प्लेस बराबर आते रहते थे, हम लोग देखते थे अंधायुग, ये
1: जी
0: सब देखे हमने। और

0: एवं इंद्रजीत, ये सब नाटक जो बादल सरकार के सारे, तो रंगमंच की एक अच्छी खासी परंपरा जिसमें जयपुर के लोग तो करते ही थे, दिल्ली से भी बड़े बड़े थिएटर ग्रुप दिल्ली और कलकत्ता के लोग आते थे, थिएटर फेस्टिवल भी होते थे और क्लासिकल म्यूजिक कंसर्ट्स भी होते थे जयपुर
1: बिल्कुल,
0: में।
1: आज जयरंगम जैसी चीजें
0: हाँ
1: चल रही हैं तो कैसा लगता है आपको
0: नहीं, बहुत
1: कि
0: अच्छा लगता है, बहुत
1: परंपराएं
0: अच्छा
1: आगे
0: लगता है।
1: हैं?
0: मैं गया हूँ उनके एक फेस्टिवल में, और जहाँ से मकरंद देशपांडे वगैरह हर साल जाते हैं वहाँ पे टीम लेकर के और प्ले लेके, तो वो एक तरह से वो थिएटर का माहौल जो है वो रिवाइव कर रहे हैं और अच्छी ऑडियंस भी आती है वहाँ पे और अच्छा चल रहा है मुझे।
1: जी, और बातें करेंगे आपके बचपन की, हम यहीं इसी वक्त में थोड़ा ठहरना चाहेंगे। मुझे लगता है कि जिस जिस दौर की हम बात करें उस दौर की याद के नाम एक गाना होना चाहिए, तो
0: वो
1: हाय रे
0: बढ़िया
1: वो
0: है।
1: दिन क्यों ना आए,
0: हाँ,
1: अनुराधा
0: बहुत
1: फिल्म का
0: अच्छा है,
1: गाना
0: बहुत
1: है
0: अच्छा है,
1: ना, ये गाना
0: मेरा
1: सुनते हैं।
0: पसंदीदा गाना है।
1: बिल्कुल।

0: हमने ये गाना सुना, हाय रे वो दिन क्यों ना आए, शैलेंद्र का लिखा, पंडित रविशंकर का स्वरबद्ध किया ये गाना, अनुराधा फिल्म का, ऋषिकेश मुखर्जी की ये फिल्म थी। उस दौर में फिल्म म्यूजिक और फिल्मों से किस तरह का ताल्लुक था? जयपुर में फिल्में देखने की और टॉकीजों की भी एक बड़ी शानदार सी परंपरा रही है।
1: जयपुर में एक से एक थिएटर थे, और
0: जी
1: उस वक्त ये राज मंदिर, कभी नाम सुना हो?
0: बिल्कुल,
1: हाँ, तो वो राज मंदिर मेरे ख्याल से भारत का अकेला ऐसा थिएटर था जो बिल्कुल वो राज मंदिर, और उसमें वो राज वाला वो भी था,
0: जी शाही,
1: झंझर शाही अंदाज उसका, तो वो लोग देखने आते थे। फिल्म तो बाद में, थिएटर पहले देखते
0: हाँ
1: थे।
0: वो टूरिस्ट मैप पर
1: हाँ
0: था
1: हाँ
0: वो।
1: वो थिएटर का अपना क्रेज था उसका।
0: जी
1: तो राज मंदिर, जेम, पोलिविक्ट्री, ये सब उस वक्त तो फिल्में भी, मतलब आज कहीं नहीं इतने करोड़ उतने करोड़, मतलब 100 दिन चली, ये बड़ी बात
0: जी
1: होती थी,
0: बिल्कुल,
1: है ना? उसने 100 दिन पूरे किए। फिल्में देखते थे, तो ये सब बड़े बड़े थिएटर थे। और फिल्मों का तो खैर दौर ही अलग था, हम कभी कभी स्कूल से भी भाग के देखा करते थे, ये सब भी
0: जी
1: होता था। और
0: ये
1: वो
0: हुआ है, लेकिन स्कूल से भाग के देखना भी हुआ है।
1: जमाना,

0: उपकार जैसी फिल्म हमने
1: जी
0: देखी थी
1: वाह वाह
0: और कई फिल्में थी, और लंबी लंबी लाइनें
1: जी
0: और आपको टिकट मिल जाए बड़ी बात ना, तो ये वो दौर देखा है हमने, जो कि थिएटर में जाकर फिल्म देखना और स्कूल से भाग के भी देखना और टिकट के लिए धक्का मुक्की होना, ये सब
1: बिल्कुल
0: दौर देखा है। और फिल्म म्यूजिक का तो ये था कि सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट वही था, घर में रेडियो चल रहा है, विविध
1: जी
0: भारती चल रहा है, फिल्मी गा रहे हैं, कभी कहीं लता जी हैं, कहीं आशा जी हैं, कहीं रफी जी हैं, कहीं मुकेश हैं, कहीं मन्ना डे हैं, तो ये सब चलता था। और हमारे क्योंकि संस्कार में म्यूजिक भी था और म्यूजिक
1: जी
0: ही था,
1: जी
0: मैं अपने घर में नहाने में सबसे ज्यादा टाइम लेता था,
1: अच्छा, क्योंकि गाना
0: ये
1: चलता
0: गाना चलता नहीं था,
1: था जी,
0: मैं गाता
1: खुद
0: रहता
1: गाते
0: था तो वो घर वाले भी बार बार बोलते, तो मुझे फिल्मी गानों का शौक,
1: जी
0: गुनगुनाने का शौक वो बचपन से था। फिर वो संस्कार में ऐसा है कि फिर उस पर धुनें भी बनाने लगा और बाकायदा परफॉर्म भी करने लगा, वो एक अलग दौर। फिल्मी गानों का ये असर फिल्म म्यूजिक का मेरी जिंदगी बहुत पड़ा रहा।
1: क्या बात है। और तब से ही ये गायकी वाला मामला आपका
0: हाँ, मेरे
1: जारी
0: ख्याल
1: रहा
0: में
1: है
0: गायकी तो हमारे परिवार में पिताजी और बड़े भाई सब आज भी गायक हैं, वो
1: जी।
0: सिखाते भी हैं, तो संगीत और गायकी का एक वो जो अंग है वो हमारे संस्कार में है, लिखना पढ़ना साहित्य में मैं बाद में आया उस तरह से।
1: जी, रंगमंच वाली आपकी एक्टिविटीज में वो कौन से नाटक याद आते हैं जिनका यहाँ जिक्र हो जाए?
0: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया,
1: जी
0: वो एक लड़कपन का दौर था हमारा, मतलब बीए का दौर ही था, हम उम्र लोगों ने हमने एक टीम बनाई और मैंने ही उसका नाम दिया ग्रुप का विकल्प,
1: जी
0: वो अभी भी चल रहा है, वो हमारे बाकी जो दोस्त हैं वो चला रहा है, हरी नारायण उसका नाम है। तो हम 4 लोगों ने मिलकर एक विकल्प नाम की संस्था बनाई और उसके साथ मैं लिखता था और डायरेक्ट करता था,
1: वाह वाह
0: और एक आध कभी कभी छोटा मोटा रोल की जरूरत पड़ी तो कर लिया। तो उससे हमने एकांकी से शुरुआत की और उस वक्त मैं ज़्यादातर राजनीतिक व्यंग और पॉलिटिकल सटायर और ह्यूमर यही मेरा विषय रहा, तो उस पर ज़्यादा काम हुआ और उस तरह के नाटक मैंने लिखे भी। नाम से ही समझ जाओगे कि होशियार समाजवाद आ रहा है,
1: वाह वाह,
0: नेता कुर्सी प्रसाद सिंह,
1: क्या बात है।
0: और एक नाटक जिसको बहुत ज़्यादा जिसके हमने शोज किए, भूमिका,
1: हाँ
0: जिसको उत्तर प्रदेश संगीत नाटक एकेडमी का ड्रामा कंपटीशन में बेस्ट ड्रामा का अवार्ड भी मिला। और एक नाटक मराठी, क्योंकि हम जिस कॉलोनी में रहते थे तो बहुवर्षीय कॉलोनी थी, मतलब एक छोटा भारत था वो,
1: हाँ हाँ हाँ
0: उसमें गुजराती, मराठी, सिंधी, पंजाबी, सिख, मुस्लिम, सब मतलब कोई भेदभाव ही नहीं था, मतलब आज
1: बिल्कुल
0: इस घर में घुस गए, कल उस घर में घुस गए, सब मिलजुल के खेल रहे हैं, होली हो, ईद हो और गणेश उत्सव हो, तो गणेश उत्सव यहाँ के बाद कई लोगों को पता लगता है गणेश उत्सव क्या है, ये हमने जयपुर में देख चुके हैं,
1: वाह वाह,
0: तो उनकी एक्टिविटीज में शामिल होना, सब कुछ करना, तो मराठी लोगों के साथ उठना बैठना बचपन से रहा, तो मराठी नाटकों का मैंने अनुवाद भी किया।
1: गजब।
0: तो एक नाटक था श्याम फड़के का, कॉमेडी, काका किशासा, जिस पर मराठी में फिल्म भी बनी,
1: हाँ,
0: तो उसका मैंने कौआ चले हंस की चाल
1: क्या बात है,
0: इस नाम से किया, और वो जयपुर का पहला नाटक था जो टिकटेड हाउसफुल रहा,
1: वाह
0: रविंद्र
1: वाह
0: मंच पर टिकटेड
1: जी,
0: हाउसफुल वो पहला नाटक था जो विकल्प ने किया, हमने किया और खूब पसंद किया और उसके बहुत शोज हुए।
1: हम जब असरानी साहब के बारे में सुनते हैं तो वो भी काफी रंगमंच पर सक्रिय थे और जयपुर में थे, जयपुर की एक बड़ी शख्सियत रहे। कभी उनसे आमना सामना हुआ उस दौर
0: नहीं,
1: में?
0: मेरा ये रहा कि वो असरानी साहब से बहुत अरसे बाद एक किसी फंक्शन में यहाँ पे मिलना हुआ, लेकिन
1: अच्छा,
0: उस दौरान में नहीं, वो जयपुर से जा चुके
1: जा
0: थे
1: चुके
0: तब,
1: थे उस दौर में
0: हाँ,
1: जब आप
0: तो वो
1: सक्रिय हुए।
0: तो हमसे काफी से, तो लेकिन उनकी एमआर रोड से 5 बत्ती के पास में ही सब बताते थे कि ये असरानी साहब के भाई की दुकान है, वो
1: जी
0: उनकी एक कपड़ों की दुकान थी। फिर
1: बिल्कुल
0: हमारे जो सीनियर पिंचू कपूर, आपने नाम सुना होगा
1: जी, बिल्कुल
0: पिंचू कपूर, ओम शिवपुरी, ये सब ये हमारे सीनियर लोग, मतलब जो निकल चुके थे हमारे जमाने से पहले ही, तो लेकिन
1: हाँ
0: इनको सुन सुन के, मतलब ये हमारे लिए वो स्टार थे कि जयपुर के ये लोग हैं जिन्होंने
1: जी,
0: नाम कमाया, बड़े लोग थे ये।
1: क्या प्यारी बात है। अच्छा, जब आप आकाशवाणी से जुड़े और युववाणी करने लगे उस समय भी तो जयपुर आकाशवाणी जो है वो एक बहुत ही बुलंद संगठन था और बहुत
0: बिल्कुल
1: बड़े बड़े लोग आकाशवाणी से जुड़े थे। किन हस्तियों के सानिध्य में सीखने को मिला आपको?
0: बहुत बड़े नाम थे और बहुत जयपुर, मैंने कहा ना, जब नाटक में तो नंबर 1 हुआ करता था, हवा महल में मैक्सिमम उसके प्लेस हुआ करते थे, और उसके अलावा वहाँ पे जो आधा आधा घंटे के या 1-1 घंटे के नाटक हुआ करते थे वो कमाल थे, मतलब उसमें नंदलाल शर्मा, आपने नाम
1: जी
0: सुना होगा,
1: बिल्कुल,
0: गणपत लाल डांगी,
1: हाँ,
0: जिनका हवा महल में काफी
1: आज भी
0: होता
1: हवा महल में
0: था,
1: उनके नाटक
0: है ना,
1: ब्रॉडकास्ट होते हैं।
0: रंजना चौधरी, तो ये एक से एक नाम थे और एक से एक आर्टिस्ट थे और जिनके प्लेज लोग बहुत पसंद करते और इंतजार करते थे ये।
1: जी, और आकाशवाणी जयपुर जो है वो जयपुर अजमेर था तब भी।
0: हाँ, क्योंकि अजमेर इंडिपेंडेंट स्टेशन नहीं था,
1: जी
0: वो सिर्फ रिले

0: सेंटर था, तो जयपुर अजमेर ही बोला जाता था उसको, और आज भी
1: अच्छा
0: शायद वही होगा कि
1: जी
0: अजमेर सिर्फ रिले सेंटर है, वहाँ पे कोई कोई रिकॉर्डिंग या उस तरह का इंडिपेंडेंट ब्रॉडकास्ट नहीं होता है, अजमेर को लिंक किया हुआ है यह है।
1: जी तो आकाशवाणी में नौकरी का रास्ता किस तरह से खुला?
0: हाँ, मैं उस वक्त एक और पहलू भी था मेरा कि मैं एमए मैंने किया ही किया था,
1: जी
0: और मैं उस वक्त ये राजस्थान पत्रिका,
1: बहुत ही मशहूर
0: हिंदुस्तान
1: अखबार।
0: का उस वक्त राजस्थान का नंबर वन अखबार था हिंदी का, और उसका एक संडे एडिशन शुरू हुआ था,
1: जी
0: वो राजस्थान में पहली बार ही हुआ था, पता नहीं दिल्ली और जगह होगा या, उसका नाम ही इतवारी पत्रिका था, हर इतवार को आता था, और उसका नाम रखा था इतवारी पत्रिका। कर्पूर चंद कुलेश साहब राजस्थान पत्रिका के मालिक भी थे और बड़े पत्रकार थे, तो उन्होंने शुरू किया था, उसमें उन्होंने श्री गोपाल पुरोहित उसके संपादक थे, और मैं उनके साथ सहायक संपादक के तौर पर लगा। 3 साल मैंने वहाँ काम किया, और वो हर इतवार उसमें कॉलम भी लिखता था, इंटरव्यू भी करता था, ये सब होता रहा। उसी दौरान ये आकाशवाणी की ये वैकेंसी निकली थी यूपीएससी की, तो मैंने भी अप्लाई कर दिया, और संयोग से सेलेक्ट हुआ, यूपीएससी में इंटरव्यू दिया, सब हो गया, और पहली पोस्टिंग मेरी आई जलंधर।
1: अच्छा,
0: ये 1980 की बात है,
1: क्या बात है।
0: 19 नवंबर, हाँ 1980 में, तो पहली पोस्टिंग मेरी जलंधर हुई, मैंने वहाँ ज्वाइन किया, 1 साल वहाँ काम किया, फिर
1: तो वहां
0: जयपुर।
1: तब पता चला था कि ये वो स्टेशन है जहां जगजीत सिंह गाया करते
0: हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर, सब,
1: थे
0: और जगजीत सिंह, सुदर्शन फकीर,
1: जी
0: इन लोगों के नाम से
1: ऐतिहासिक
0: वो,
1: स्टेशन है जलंधर,
0: और वहाँ पे पंजाबी के बड़े बड़े लोग थे, मतलब
1: बिल्कुल
0: पंजाबी राइटर्स, सोहन
1: यस
0: सिंह मीशा,
1: जी
0: और मतलब ऐसे नाम जो बाद में साहित्य अकेडमी अवार्ड जिनको मिला, सुरजीत पातर, ये सब लोग वहाँ पे मतलब एक्टिव लोग थे, पार्टिसिपेंट के तौर पर आते थे, सुरजीत पातर लुधियाना से, ये सब कुछ। तो जलंधर भी उस वक्त पंजाब का जयपुर था, एक तरह से
1: बिल्कुल
0: पंजाब का जयपुर था वो, वहाँ बड़े अच्छे नाटक, बड़े अच्छे आर्टिस्ट, और बहुत एक्टिव शहर था,
1: जी
0: तो मेरा बहुत अच्छा वक्त गुजरा। और मेरे जो सीनियर थे वो सारे पंजाबी लोग थे, मतलब हिंदी वाला मैं अकेला था वहाँ पे, हिंदी का
1: हाँ
0: प्रोग्राम मैं ही संभालता था वहाँ पे, हिंदी का पैक्स था वहाँ पे मैं, लेकिन एक से एक प्रोग्राम, और पंजाबी ऐसी भाषा थी कि जो समझने में उतनी मुश्किल नहीं
1: दिक्कत
0: थी,
1: नहीं
0: मतलब,
1: थी जी।
0: तो मेरा अच्छा वक्त गुजरा जी,
1: कितने वक्त तक आप जलंधर
0: एक
1: में
0: साल
1: रहे
0: एक साल
1: जी, और किन हस्तियों से आपका बहुत करीबी ताल्लुक रहा लिटरेचर की?
0: मैंने बताया ना, सोहन सिंह मिश्रा,
1: जी
0: और फिर उर्दू के भी कई लोग थे वहाँ पे,
1: जी
0: जो सुरजीत पातर, वो उस जमाने में उनसे मिलना हो गया था, जो बाद में साहित्य अकेडमी अवार्ड मिले, में सब कुछ में
1: बिल्कुल।
0: मिश्रा साहब को भी मिला।
1: तब तक आपका लिखना शुरू हो चुका था?
0: हाँ, लिखना तो मेरे जयपुर में शुरू हो चुका था,
1: जी
0: लेकिन मैं उस वक्त मैं गीत लिखता था, तो शुरुआत मेरी मंच से हुई, गीत लिखता भी था, छपते भी थे सब कुछ, और गीतकार के तौर पर मैं राजस्थान में जगह जगह कवि सम्मेलन में भी जाया करता था। उदयपुर में जब कवि सम्मेलन हुआ, तो पहला जो मेरा बड़ा ब्रेक था, या पहचान या आत्मविश्वास जिसे मिला, तो नीरज जी का तो बोलबाला था उस वक्त, गीतों के राजकुमार थे,
1: बिल्कुल
0: तो उनके
1: बिल्कुल।
0: नाम से पूरा क्राउड इकट्ठा होता था, हजारों लोग इकट्ठा हो जाते थे,
1: सुबह तक
0: तो
1: लोग सुनते
0: हाँ,
1: थे और सबसे
0: तो
1: लास्ट में उन्हें
0: हाँ,
1: पढ़वाया
0: तो
1: जाता था।
0: जी, और मेरा वो शुरुआती दौर था,
1: जी
0: तो नीरज जी थे वहाँ पे, वो मुख्य कवि तो थे ही थे, तो मैंने जब वो गीत पढ़ा अपना, तो ये नीरज जी ने आशीर्वाद देने का उनका तरीका था, उन्होंने बहुत प्यार दिया, पहचान, और अपने गले की माला मेरे गले में जब मैं पढ़ रहा हूँ तभी आके डाल दी,
1: अरे
0: तो ये
1: गजब,
0: एक आशीर्वाद था जो मुझे
1: क्या
0: मिला
1: बात
0: मुझे।
1: है। क्या वो गीत याद है आपको?
0: हाँ, जो वो मेरे काफी पढ़ा इधर उधर,
1: जी
0: तरन्नुम में सुनाऊँ उसको
1: जरूर
0: जी।
1: सर, जरूर, बिल्कुल स्वागत है।
0: जिंदगी की बस्ती में

0: है। और ये नवगीत का शुरू हुआ था, तो ये
1: जी
0: अंत देख, बात क्या करे कोई हाफती हवाओं
1: हाफती हवाओं से
0: से,
1: क्या बात है।
0: बात

0: क्या बात है, क्या बात है।
1: थैंक यू,
0: जाहिर है कि
1: धन्यवाद।
0: इस रचना से नीरज जी की प्रशंसा तो मिलनी ही थी, और ये आपके लिए बहुत यादगार लम्हा रहा
1: वो
0: होगा।
1: बिल्कुल, और एकदम शुरुआती दौर में इतने बड़े हस्ती का
0: जी
1: आशीर्वाद मिलना और प्रोत्साहन मिलना, तो वो एकदम यादगार और बहुत आत्मविश्वास देने वाला लम्हा था, एक सफर को आगे बढ़ाने वाला होता था।
0: जब आप घर लौटे इस कवि सम्मेलन के बाद, तो क्या पिताजी की कैफियत थी, उन्हें क्या बताया?
1: वो बहुत खुश हुए, लेकिन मैं यहाँ ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे पिताजी, मैंने कहा वो गायक थे और संस्था चलाते सब कुछ, लेकिन एक अलग तरह के पिता थे वो, बिल्कुल
0: हाँ,
1: बहुत कम बोलना, मतलब उनसे हमारा संवाद जो है ना, हमारे
0: मिनिमम।
1: नाटक भी देखते थे, आते थे देखते थे, लोग खुश हो रहे हैं तालियां बजा रहे हैं या सब कुछ, या कभी सलून में भी आते थे कभी, तो वो आके देखा और चले आए घर पे। अखबार में भी कॉलम लिखता था, हर वक्त संडे आता था,
0: हाँ
1: पढ़ते थे सब कुछ था, लेकिन वो खुद अपनी तरफ से कभी, वो दौर था, तो हो सकता है कि आज तो अगर हम अपने बच्चों से दोस्त की तरह से बात करते हैं,
0: जी,
1: पिताजी का एक डिस्टेंस हमेशा रखते थे
0: तो
1: या
0: आपके
1: था।
0: जहन में हमेशा ये सवाल रहता होगा कि अच्छा
1: हाँ
0: लगा है कि नहीं, क्या
1: हाँ
0: चल रहा है मन
1: तो
0: में।
1: बस वो उनको सूचना जरूर, वो और हमारे संवाद माँ से होता था,
0: जी
1: उनसे खूब मतलब हंसी मजाक बोलना चलना, साहब नाराजगी या गुस्सा या सब कुछ पिताजी से घर में जो था, लेकिन वो खुश तो होते थे, बहुत खुश
0: जी जी
1: होते थे,
0: जी
1: लेकिन वो डायरेक्ट इस तरह से बोलते नहीं थे,
0: वो
1: बताते
0: दौर भी
1: नहीं
0: ऐसा था कि पिताओं से संवाद बहुत कम हुआ
1: थे।
0: करता था। माँ की स्मृतियां हमारे साथ बांटिए कि उनसे क्या कुछ आपने सीखा है, और आपकी शख्सियत में उनका क्या योगदान है, और आपकी कामयाबी उन्हें कितना खुशी दी, दे दे
1: नहीं
0: कर
1: बिल्कुल, ये
0: दी।
1: पारिवारिक रूप से अगर देखें तो पिता ने माहौल दिया,
0: जी
1: पिता ने माहौल दिया, मतलब अगर मैं कलाकार बना हूं या कलाकार कला के क्षेत्र में हूं, तो वो पिता के संस्कार हैं, पिता ने जो माहौल दिया बचपन से, अगर आप देखें तो कुमार गंधर, भीमसेन जोशी, रविशंकर, बुद्धदेव मुखर्जी, राजन साजन मिश्र, अमजद अली खां, बड़ा
0: बाप
1: कोई
0: रे,
1: नाम लीजिए, कोई नाम लीजिए जिनको हमने बचपन में आगे बैठ के
0: आमने
1: सुना
0: सामने
1: है,
0: देखा। जी
1: आमने सामने देखा, उनके आसपास घूमे बैठे, गिरिजा देवी, बेगम अख्तर,
0: बाप रे,
1: कोई नाम लीजिए, तो वो सब हमने देखा है और उनके साथ उठे बैठे हैं, कई लोग हमारे घर आए है ना, तो ये माहौल पिताजी ने दिया, उसके बगैर हमारे संभव नहीं था कि हम उस दुनिया को देख सकते, इन बड़े लोगों को देख सकते, इन हस्तियों, तो वो उनको सुन सुन के भी संस्कार हुए, संगीत जो है वो इस तरह से भी संस्कार में आता है, एक तो बाकायदा आप गुरु से सीखते हैं और एक सुन के भी सीखते हैं, तो वो हमने उस तरह से सीखा, तो पिताजी ने माहौल दिया, संस्कार दिया, माँ ने जो है वो एक पूरा प्रोटेक्शन कहना चाहिए। मैं बात करूं तो हमारी कॉलोनी में जो मैंने कहा ना, वो एक मिनी भारत था वो,
0: जी,
1: लेकिन मेरा बचपन बिल्कुल विपरीत था, मैं अपनी कॉलोनी के चंद शैतान बच्चों में से एक था।
0: ये तो एक नया खुलासा है हमारे लिए।
1: मतलब खेलना कूदना ही तो सही है ही, सभी बच्चे करते सब कुछ है, लेकिन छेड़ने की आदत जो है ना,
0: हाँ,
1: किसी के साथ भी मजाक कर लेना, किसी को
0: तंग
1: आते
0: कर
1: जाते
0: लेना।
1: तो तंग करना या मस्ती करना,
0: जी,
1: तो कहीं ना कहीं एक या दूसरे दिन में कोई
0: शिकायत आती
1: शिकायत माँ के पास आ जाती थी कि आज इसने ये क्या, और मेरा बचपन का नाम छोटू था।
0: अच्छा,
1: हाँ
0: क्योंकि आप छोटे थे इसलिए।
1: हाँ मेरे बड़े भाई साहब थे, मैं
0: जी
1: नंबर 2 था, तो
0: जी
1: पहले नाम ऐसे ही रखे जाते, घरेलू
0: बिल्कुल
1: नाम,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: बड़े भाई साहब श्याम और मेरा नाम छोटू,
0: जी,
1: खैर तो वो छोटू की शिकायत
0: रोज आ
1: जो
0: रही
1: है,
0: है।
1: मतलब हर दूसरे दिन या हर दिन जो है वो, आज इसने ये किया, आज इसने वो किया, ये सब चलता रहता था, तो वो माँ थी जो
0: प्रोटेक्शन,
1: संभालती थी, और कभी कभी वो पिता तक पहुंच जाती थी बात, और
0: हाँ।
1: पिताजी जिस ढंग से पेश आते थे वो, तो वो मैं भूल नहीं
0: उसका जिक्र ना ही करें तो
1: सकता। तो ये
0: अच्छा।
1: एक अच्छा बचपन बीता,
0: जी
1: और माँ ने जो है वो, क्योंकि पिताजी का यही था कि दिन में नौकरी करना, आना, फ्रेश होना, चाय पीना और कपड़े वपड़े बदल के सीधा रविंद्र मंच,
0: अरे
1: मतलब घर में
0: गजब।
1: वो पारिवारिक रिश्ते के पिता नहीं थे,
0: हाँ, वो अपनी दुनिया
1: वो
0: उनकी।
1: अपनी दुनिया थी उनके, बस आए सुबह ऑफिस चले गए, शाम को आए और फ्रेश हुए, चाय वाय पी और फिर सीधा रविंद्र मंच, फिर वहां से लौटे, खाना वाना खाए, सो गए, मतलब
0: हाँ,
1: बच्चों से भी उनका उस तरह संवाद नहीं होता था, तो वो माँ थी जिनसे मैंने कहा ना कि वो तो परिवार में पारिवारिक

0: माहौल का जो और पारिवारिक मजबूती जो है, खुलापन भी, छूट भी, वो सब माँ से मिली।
1: क्या बात है! और क्या आपकी रचनाओं में मां झलकती हैं?
0: उस तरह से तो डायरेक्ट तो नहीं, लेकिन कहीं कहीं जैसा बचपन हमने गुजरा, तो वो एक लोअर मिडिल क्लास का जो मिडिल क्लास मतलब सरकारी कर्मचारी जो है उनकी
1: बिल्कुल
0: कॉलोनी थी, तो हम उसी में, तो लेकिन बहुत खुशहाल। मतलब मैं अपने आप को अगर आप देखूं तो हो सकता है आर्थिक रूप से हम लोग बहुत लोअर मिडिल क्लास ही कहना चाहिए उस वक्त, लेकिन एक बहुत ही सांस्कृतिक रूप से समृद्ध खुशहाल परिवार थे, और मुझे अपने बचपन की बहुत अच्छी यादें हैं। मैं खुशहाल हूँ जी।
1: क्या बात है! इतनी सुंदर बातें हो रही हैं और इतनी जज्बाती बातें, तो मुझे लगता है कि यहाँ आशीर्वाद फिल्म का गाना सुनते हैं, एक था
0: हाँ,
1: बचपन,
0: एकता बचपन
1: क्योंकि
0: जरूर,
1: ये
0: जरूर,
1: जो
0: बिल्कुल
1: बचपन के
0: बिल्कुल
1: जो दिन है उनके
0: बिल्कुल
1: उनके
0: बिल्कुल
1: नाम ये गाना है।
0: बिल्कुल जी।

0: रोहन और रिया की लव स्टोरी का मैच था शुरू। दोनों ने खाया इटालियन क्विजीन। वेटर ने फेंका स्पिन, 4000 का आया बिल। रोहन का धड़का जोर से दिल, वो अपना वॉलेट गया था भूल। रिया ने किया डिजिटल पेमेंट, बन गई कूल। आप भी QR कोड स्कैन करके UPI से करो पेमेंट। डिजिटल पेमेंट से जीतो लाइफ का हर टूर्नामेंट।
1: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
2: हर लेन देन अब है आसान।
3: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RBI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
4: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RBI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
5: रचनाओं को सुधारे या जो आपको मार्गदर्शन दे वहाँ पर जयपुर में।
6: जी, जयपुर में जैसे मैंने कहा कि मैं गीत से शुरू हुआ था, तो मेरे दो बड़े लोग थे जो मेरे काव्य गुरु भी मैं जिन्हें मान सकता था और जो मुझे मार्गदर्शन भी देते थे, आशीर्वाद भी देते थे। एक थे तारा प्रकाश जोशी
5: जी
6: और एक हरिराम आचार्य। हरिराम आचार्य ने फिल्मों में भी लिखा
5: जी,
6: मेहंदी रंग लाई,
5: डांसिंग जी के साथ उनके गाने हैं बहुत सारी फिल्मों के।
6: और तारा प्रकाश जोशी जी IAS ऑफिसर थे।
5: अच्छा।
6: लेकिन गीत में उनका कोई जवाब नहीं था, मतलब इतने बड़े गीतकार थे वो राजस्थान के। मतलब एक पंक्ति यूनुस में बताऊंगा उनकी, मेरे गुरु तो एक तरह से, मेरा वेतन ऐसे रानी, मेरा वेतन ऐसे रानी जैसे गर्म तवे पर पानी।
5: ओ हो हो हो, क्या अद्भुत है। हा? क्या अद्भुत है,
6: जैसे गर्म तवे पर पानी,
5: क्या बात है।
6: ऐसी पंक्ति मतलब मैंने नहीं सुनी।
5: क्या बात है, क्या बात
6: नहीं सुनी। तो ऐसे लोग मेरे आदर्श थे, मेरे गुरु थे, जिनके साथ बैठता था।
5: गजब, ये जीवन में कभी भूलेगा नहीं, ये इतनी अद्भुत है।
6: मेरा वेतन ऐसे रानी जैसे गर्म तवे पर पानी,
5: तुरंत खत्म। वाह वाह।
6: तो और हरिराम आचार्य जी के तो
5: बिल्कुल मेरी भी मुलाकात रही होगी।
6: तो ये लोग थे जिनसे सीखा। लेकिन मेरे साथ अच्छी बात रही आप संस्कारों में, जिसने मुझे आगे थोड़ा गंभीर लेखन की तरफ रखा, सिर्फ मंची नहीं बनाया, वो ये कि मैं बाकी विधाएं भी पढ़ता था। मेरे निर्मल वर्मा, भीष्म साहनी, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, ये सब मतलब फिक्शन भी, उपन्यास भी, आलोचना भी, नवर सिंह जी भी, हिंदी में तो एमए किया था, तो हिंदी साहित्य से बराबर जुड़ाव। और फिर बचपन से ही वो हमारे कॉलोनी में, हमारा अखबार परिवार में सिर्फ अखबार था, मतलब किताबें विताबों को वो नहीं था उतना। तो एक कॉलोनी के आगे डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी हुआ करती थी, उसमें तो सारे अखबार आते थे, मतलब अखबार तो थे ही थे,
5: पत्रिकाएं
6: भी, दिनमान, साप्ताहिक हिंदुस्तान, कादम्बिनी, तो ये मैं इन सबको चार्ट जाया करता था वहां जाकर के, घंटों घंटों वहीं बैठता था। तो और बाकी लोग जो आके चले गए, और मैं अपने अभी इसको पढ़ रहा हूँ, फिर उसको पढ़ रहा हूँ, फिर उसको, मतलब तीन चार टेबल पे मैं, मेरे दो तीन घंटे निकल जाते थे
5: जी।
6: तो बचपन से वो पढ़ने का भी शौक था।

0: संगीत का भी शौक था, तो ये सब चीज़ें जो है संस्कार में, और फिर जैसे होता है कि ये तो मेरे आदर्श थे ही और बड़े थे। बाकी फिर उर्दू शायरी की तरफ यूँ हुआ कि गीत करते करते फिर हम उम्र लोगों के साथ उठना बैठना है ना, सुनना सुनाना, और फिर मुशायरे भी वहाँ हुआ करते थे जयपुर में, तो बड़े बड़े मुशायरों को सुनना, तो हम उम्र लोगों की टोली में यंग शायर भी थे जिनके साथ उठते बैठते थे। तो जब मुशायरे सुने और उसमें जो शेर का जो दो मिसरों में दो पंक्तियों में जो
1: सारी
0: वो
1: बात कह
0: था सारी
1: देना,
0: बात कह देने का जो जादू वो मुशायरों में देखा, तो फिर वो उस विधा ने मुझे आकर्षित किया, मैं उस तरफ झुका।

0: और उसमें जो शेर का जो दो मिसरों में, दो पंक्तियों में जो
1: सारी
0: वो
1: बात कह
0: था, सारी
1: देना।
0: बात कह देने का जो जादू वो मुशायरों में देखा, और तो फिर वो उस विधा ने मुझे आकर्षित किया, मैं उस तरफ झुका और फिर गजलें कहने लगा। अमरूर लोगों को हमारे जो साथ में थे, अरशद अब्दुल हबीब, इनाम शरर, मजा साहब, तो ये सब लोग सुनते थे, वो सराहते थे और कि ये अच्छा है, अच्छा है। और फिर मैंने बाकायदा गजल के लिए उर्दू स्क्रिप्ट सीखी, मौलवी साहब आते थे मुझे पढ़ाते थे, सिखाते थे, और फिर मैं बाकायदा गीत से गजल में शामिल हो गया। गजल को मैंने अपनाया और शायद फिर गजल ने मुझे भी अपना
1: क्या
0: लिया।
1: प्यारी बात है। तो शुरुआती गजलों में से कोई एक हमें सुनाइए।
0: मेरा सौभाग्य रहा यूनुस की ये जो गजल पंकज दास साहब ने गाई और पूरे दुनिया में पहुंची,
1: जो
0: और
1: आपकी
0: जिस, हाँ
1: पहचान के साथ चिपकी हुई
0: हाँ
1: है।
0: वही, वो
1: जी
0: जयपुर की गजल है,
1: वाह,
0: वो शुरुआत के दौर की,
1: कमाल,
0: हाँ,
1: ये
0: तो
1: मुझे
0: यही
1: नहीं
0: मेरा।
1: पता था।
0: और
1: ये मेरे लिए हैरत की बात है कि वो आपकी शुरुआती गजल है।
0: नहीं, यूनुस इसलिए आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए वो, कि गीत से मेरी यात्रा शुरू हो चुकी थी,
1: जी
0: गजल की विधा को मैंने,
1: आपने शिफ्ट किया है
0: हाँ,
1: सिर्फ।
0: गजल में शिफ्ट किया और उसको अपना लिया। मेरे मैंने कहा ना, हम उम्र लोगों के साथ उठते बैठते, सुनते सुनाते, उनसे आश्वस्ति मिली। और एक हमारे बुजुर्ग होते थे, कहना चाहिए टोंक में रहते थे वो, तो वो भी आया करते थे वो, और शाम को बैठे और एक दूसरे को सुनना सुनाना, तो उन्होंने जब ये पहली बार सुनी गजल, तो वो भी चौंक गए, मतलब, क्योंकि ये तो ट्रेडिशनल ढंग की गजल नहीं है,
1: बिल्कुल
0: है ना?
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल।
0: बोले, और यो जो जिसको कि गजल की जबान में या उर्दू में टेक्निकली रदीफ कहते हैं, है ना, जो गजल के पंक्ति के आखिर में आती है
1: जी
0: और वो रिपीट होती है हर शेर में, से डरता है। अब ये रदीफ जो है वो अनसुनी सी थी, मतलब,
1: और कभी इससे पहले मैंने सुना
0: हाँ,
1: नहीं है,
0: तो खुद
1: और
0: मैंने भी,
1: मुश्किल भी
0: हाँ
1: है,
0: हाँ
1: बहुत
0: हाँ
1: मुश्किल
0: हाँ
1: भी है इसको
0: मुश्किल भी है,
1: निभाना।
0: तो उसको निभा ले जाना, और उसको तो वो भी हैरान हुए कि ये यार तुम ये रदीफ ले आए और उसको तुमने शेर भी कह दिए और अच्छे शेर कह दिए सब कुछ है। और फिर वो शेर उसने तो मुझे मतलब सबसे ज्यादा प्यार दिया, पहचान दी, तो वो गजल मैं अगर कहें
1: जरूर सर, अरे स्वागत है,
0: तो
1: बिल्कुल
0: जो पंकज जी ने गाई उसकी धुन अलग है,
1: आपकी धुन
0: हाँ,
1: अलग है।
0: मैं जो मैं
1: जी
0: सुनाता हूँ और जिसने मुझे मुशायरों में पहचान दी, वो ये गजल।
1: स्वागत है।
0: यहाँ हर शख्स

0: दुनिया बड़ा होने से डरता है, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है। खिलौना है जो मिट्टी का फना। यूनुस, इसकी एक शेर और सुनाता हूँ।
1: जरूर सर,
0: ये
1: स्वागत
0: बच्चे वाला जो शेर है उससे सबसे ज्यादा प्यार मिला,
1: जी,
0: ये शेर भी उतना ही सच्चा है।
1: बिल्कुल
0: हम देखते हैं कि हर जिंदगी में हर इंसान की कभी न कभी वो पल आता है कि वो ऊपर वाले से पनाह मांगता है कि बहुत
1: बिल्कुल
0: बहुत हो गया, अब नहीं रहे,
1: जी
0: अब नहीं, बहुत हो
1: जी
0: गया, है
1: जी
0: ना, ये
1: जी
0: आता है। फिर
1: सबके
0: करते हैं
1: साथ, सबके साथ
0: अरबपति खरबपति भी खुदकुशी करते हैं, उनके पास क्या नहीं होता,
1: जी।
0: लेकिन वो जिंदगी ऐसे मोड़ पे ले आते हैं कि वो बस बहुत हो गया।
1: हाँ
0: लेकिन जब ऐसा पल आता है
1: तो आप कहते हैं अजब ये जिंदगी
0: ये, तो
1: की
0: फिर
1: काजी,
0: हमारे क्या रिएक्शन होते हैं।
1: वाह
0: और कोरोना में तो हमने देखा ही कि कैसे
1: जी
0: जान बचाते फिर रहते हम
1: बिल्कुल
0: लोग। तो ये शेर है जो सबका सच है,
1: वाह
0: अमीर हो गरीब सबका। यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है, अजब ये जिंदगी की कैद है, दुनिया का हर इंसान

0: इंसान रिहाई मांगता है और रिहा होने से डरता है, रिहाई मांगता है और रिहा होने से डरता है। खिलौना है जो मिट्टी का, फना होने से डरता
1: क्या बात है
0: है।
1: सर, हम
0: थैंक
1: बहुत खुश नसीब
0: यू।
1: हैं कि विविध भारती के स्टूडियो में आप
0: जी,
1: मौजूद हैं
0: मेरा
1: और
0: आप लोगों का
1: आपसे ये
0: प्रेम
1: सुन
0: है
1: रहे
0: और
1: हैं।
0: मेरी खुशनुमती। थैंक यू।
1: ये अद्भुत गजल है और हजारों बार तो हमने पंकज जी की आवाज में सुनी होगी, पर जब आपके साथ काम करते थे तब तो हिम्मत नहीं होती थी ये कहने की कि आपसे ये गजल सुननी है। आज ये मौका आया है, बहुत अच्छा लगा, ये बहुत ही अनमोल पल है। रेडियो की तरफ वापस लौटते हैं, और जलंधर में 1 साल बिताने के बाद आप कहाँ गए?
0: उसके बाद मैं अपने होम टाउन जयपुर,
1: जी जी
0: मेरे साथ ये भी रहा और अभी भी होता है ये, कि मैं शुरू से ही होम सिक रहा।
1: जी जी बिल्कुल।
0: मतलब जलंधर मुझे कोई कमी नहीं थी, बहुत अच्छा
1: हाँ,
0: शहर था, बहुत प्यारे लोग थे, अच्छा
1: अच्छा खान पान था।
0: खान पान था, अच्छा मौसम था,
1: जी
0: सब कुछ अच्छा था, बहुत
1: जी
0: अच्छा था,
1: जी जी
0: केंद्र भी बहुत अच्छा था, लोग भी अच्छे थे, मैं खुश था, सब भी था। लेकिन एक होम सिकनेस होती कि वो मुझे अपने शहर जाना है वापस, है
1: जी
0: ना। तो मतलब मैंने रिक्वेस्ट की और मैं वो सुन ली गई, मान ली गई, और मैं वापस अपने शहर में आ गया जयपुर।
1: वाह
0: तो मैं
1: वाह,
0: वहाँ फिर वापस शायद 5 साल जयपुर रहा
1: तो ये
0: उसके।
1: बहुत ही अनमोल पल रहे होंगे कि जिस स्टेशन में आप बतौर कैजुअल आया करते थे, युवाणी करते थे, वहां आपकी वापसी
0: बिल्कुल
1: होती
0: सही
1: है और
0: बात।
1: अब आप प्रोड्यूसर बनते हैं।
0: और ये भी कमाल थी कि जिस केंद्र में मैं कैजुअल के लिए ऑडिशन देने गया हूँ है ना,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: तो वहीं
1: बिल्कुल
0: मैं एक प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव तौर पर एंटर हो रहा हूँ
1: जी
0: और ज्वाइनिंग के लिए सब कुछ है।
1: जी
0: तो और क्या टीम थी वो वहाँ पे,
1: बिल्कुल
0: क्रीम, बड़े लोग, अच्छे लोग, तो उनके साथ मिलना जुलना हुआ और वो एक अलग अनुभव था। और वो जो जयपुर मेरा क्रिएटिव जैसा विविध भारती मेरा बाद में हुआ,
1: जी जी जी
0: और इसमें मैंने प्रोडक्शन कम किए लेकिन प्रोग्राम में उनकी परिकल्पना, उनको संवारना या उनको इम्प्लीमेंट करना, ये सब रहा। मेरा क्रिएटिव जो बेस्ट था
1: जी
0: वो जयपुर में था।
1: जी जी जी
0: नाटक लिखना, कंपोज करना,
1: बिल्कुल
0: प्रोड्यूस करना, इंटरव्यूज करना, वो सब जयपुर हुआ। मतलब वो मेरी जो पूरी जलंधर में मुझे आकाशवाणी की जानकारी सब हुई, सब कुछ हुआ। एक लिमिटेड काम था, हिंदी का कार्यक्रम अधिकारी था, हिंदी का लिमिटेड, उसमें सब कुछ था। जयपुर मेरे लिए पूरा खुला मंच था,
1: बिल्कुल। और फिर आप उस शहर में पले बड़े थे तो
0: पला
1: आप
0: बड़ा
1: सब
0: था।
1: जानते
0: और
1: थे
0: फिर
1: और
0: उसने मुझे, मैंने कहा ना कि मेरे क्रिएटिविटी के सारे पहलू उसमें खुले,
1: जी
0: मेरा लेखक भी खुला, मेरा संगीतकार भी खुला, मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव भी तो था ही था, सब कुछ। नाटक लिखे, निर्देशित किए, संगीतबद्ध किए, हाँ, म्यूजिकल शो पूरा उसमें हुआ। अभी तो नहीं हो रहा है, उस वक्त जयपुर में और जयपुर के पूरे आकाशवाणी के दौर था कि वो आमंत्रित श्रोताओं के सामने
1: कॉन्सर्ट्स
0: प्रोग्राम कर,
1: होते थे
0: कॉन्सर्ट होते थे,
1: जी।
0: तो उसके लिए भी मतलब तैयार करना, उसके लिए प्लेज लिखना, तैयार करना, गाने लिखना, ये सब जयपुर में हुआ।
1: वाह क्या बात है, तो उस दौर में कौन से नाटक आपने रेडियो के लिए बनाए, उनको कुछ याद कीजिए थोड़ा सा।
0: उसमें एक महत्वपूर्ण नाटक है, राजेंद्र यादव की कहानी थी टूटना,
1: जी जी
0: उसका मैंने रेडियो नाटक रूपांतर किया
1: वाह
0: और उसका प्ले किया और बहुत पसंद किया गया लोगों द्वारा। और ये तो हुआ टूटना, एक ज्ञान प्रकाश विवेक की कहानी थी अंधा सूरज,
1: क्या बात है,
0: उसका किया।
1: वाह,
0: और इसके अलावा गीत गोविंद,
1: अरे गजब।
0: ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात जो उपलब्धि थी, यूनुस, उसके आश्चर्य की बात ये थी कि गीत गोविंद का आपने ड्रामेटिक नाट्य रूपांतर किया। वो नाट्य रूपांतर तो हिंदी में हुआ, मतलब
1: बिल्कुल
0: उसका कैरेक्टर जो राधा कृष्ण सखी ये सब कुछ है, गीत गोविंद मूल रूप से संस्कृत में है,
1: बिल्कुल
0: जयदेव जी का।
1: जी।
0: हाँ, उसके जो गाने हैं, उसके जो गीत हैं, वो मूल संस्कृत में, और मूल संस्कृत में मैंने कंपोज किए, रिकॉर्ड किए, गाए लोगों ने
1: संस्कृत में,
0: संस्कृत में।
1: अरे
0: तो
1: बाप रे
0: गाने संस्कृत में हैं
1: जी,
0: और उनके इंटरप्रिटेशन करते हुए उनको एक तरह से समझाने के लिए मैंने कैरेक्टराइजेशन किया कि लोग, आम लोग समझ कि इस गाने का क्या मतलब है, इसमें क्या कहा गया है, इसमें कौन कैरेक्टर है, ये राधा का दुख है, ये कृष्ण की पुकार है
1: हाँ,
0: ये
1: तो बहुत
0: हम,
1: मुश्किल काम है।
0: बहुत मुश्किल। तो वो एक मेरे लिए वो मील का पत्थर जैसा हुआ और लोगों को भी हैरानी हुई कि लोगों ने उसका आनंद भी लिया और
1: जी
0: समझे भी, मतलब
1: वाह
0: गीत
1: वाह,
0: गोविंद को ओरिजिनल, क्योंकि मैं ये समझ रहा था कि उससे पहले गीत गोविंद रघु

0: पाणिग्रही रही उड़ीसा में,
1: जी जी
0: तो वो करते रहे और वो का बहुत मशहूर है, बहुत पॉपुलर है, सब कुछ है, लोग गायक के रूप में वो पॉपुलर है वो वहाँ पे। लेकिन मैंने उनका सुना है और वो तो कमाल है, मतलब वो भी। लेकिन मुझे ये लगा कि उनमें वो लोक तत्व ज्यादा है, मतलब कि बंगाल या उड़िया का, उनके कंपोजिशंस में भी, उनके गाने में भी। तो मैंने उसको बाकायदा एक, क्योंकि फिल्म का तो था ही था, तो सुगम संगीत के तौर पर मैंने उसको कंपोज किया और गाने वाले भी बहुत अच्छे थे, तो उस तरह से वो एक लोगों को लगे कि ये गाना है,
1: क्या बात है, ये तो बहुत मुश्किल है क्योंकि
0: तो वो गाने के
1: संस्कृत
0: तौर
1: से।
0: पर वो हुआ और लोगों ने सुना और पसंद किया।
1: वाह वाह वाह, तो ये पूरा
0: इसी
1: जयपुर
0: तरह
1: का
0: से
1: दौर था।
0: अभिज्ञान शाकुंतल
1: जी
0: कालिदास का, तो वो मैंने उसको रेडियो अडॉप्टेशन किया,
1: वाह,
0: उसको वो किया, तो ये दो बड़ी वो थे कहना चाहिए।
1: क्या शानदार बातें हैं, ये तो बहुत मुश्किल वाले काम आपने वहां किए। इसके अलावा वहां विकल्प भी चलता रहा आपका, नाट्य
0: हाँ,
1: समूह।
0: नहीं विकल्प, ये दौर मेरा पहला था, मतलब रेडियो आने से पहले का था।
1: हाँ
0: विकल्प अपने रंग से चलता रहा, वो बीच बीच हम लोग करते भी रहे, लेकिन वो सक्रियता नहीं रही।
1: जी, क्योंकि
0: हाँ
1: रेडियो में आप पूरी
0: हाँ
1: तरह से अपने
0: हाँ
1: आपने अपने आप को झोंक दिया
0: हाँ
1: था।
0: हाँ मतलब बीच बीच में हम करते रहे नाटक, लेकिन वो जो 10 साल लगातार जो किया वो रेडियो में आने से पहले किया
1: जी,
0: हमने।
1: और बाद में फिर आप पूरी तरह से रेडियो में व्यस्त हो गए।
0: हाँ, उसके बाद भी एक नाटक जो आला अफसर मुद्रा राक्षस का,
1: जी,
0: जो गोगोल का
1: इंस्पेक्टर
0: उन्होंने,
1: जनरल का।
0: हाँ वो नौटंकी शैली में उन्होंने किया, तो उसका भी मैंने कंपोजिशन भी किया,
1: वाह,
0: डायरेक्शन भी किया और वो भी
1: तो
0: किया।
1: संगीत जो है वो एक तो घर से मिला था, लेकिन ये एक लगातार चलता रहा कि कंपोजिशंस भी करनी है आपको लगातार,
0: हाँ, इसमें करनी वाला बात नहीं था, मतलब अंदर से
1: जरूरत।
0: होता था,
1: जी,
0: अंदर से होता था कि ये मैं करूं, मतलब मेरी कोई मजबूरी नहीं थी कि,
1: बिल्कुल,
0: हाँ कि कोई और भी कर सकता था, लेकिन अंदर से कहीं होता था कि
1: ये
0: ये
1: मैं
0: कि,
1: करता
0: हाँ
1: हूं।
0: इसको जैसे लिखने का जो है वो अंदर से ही होता है कि
1: बिल्कुल,
0: आप तो उसी तरह से वो, चाहे वो गीत गोविंद हो। जयपुर में उस वक्त 5 बड़े संगीतकार थे
1: जी
0: जो स्टाफ में थे, मतलब म्यूजिक डायरेक्टर, म्यूजिक कंपोजर भी एक पोस्ट होती
1: बिल्कुल
0: है
1: होती है।
0: ना,
1: जी
0: जानते हो। और विविध भारती में नहीं है वो, लेकिन मेन सेंटर्स पे बॉम्बे में हो या किसी भी सेंटर में कंपोजर की भी पोस्ट होती है,
1: जी
0: उस
1: जी
0: वक्त 4 मौजूद थे और वो 4 लोग भी परेशान होते थे कि हम हैं और ये आदमी कंपोज कर रहा है। तो उसमें मेरे उस वक्त स्टेशन डायरेक्टर थे गिरीश चतुर्वेदी,
1: जी,
0: तो उन्होंने मुझे छूट दी।
1: कि नहीं नहीं आप करो,
0: हाँ, मतलब वरना ये होता नहीं है ये,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: और
1: बिल्कुल,
0: 4 कंपोजर हैं स्टाफ में मौजूद हैं
1: तो आप
0: और
1: उनको।
0: उस वक्त आप अपना काम खुद कर रहे हैं,
1: जी,
0: तो उन्होंने छूट दी और उसकी वजह से वो एज ए कंपोजर भी रेडियो पर, मतलब फिर गाने भी हुए, सब कुछ हुआ।
1: हाँ
0: एक बार मैं बताऊं कि जब महादेव वर्मा का गीत
1: हाँ
0: मैं नीर भरी दुख की बदली
1: हाँ
0: और ये सब, मतलब ये सब हमने किए, मतलब जो एक वो जैसे यहाँ मंथन शुरू हुआ था ना,
1: जी
0: हमने 10 मिनट का प्रोग्राम होता था,
1: जी
0: एक अच्छा गीत या अच्छी कविता किसी के
1: हाँ
0: लेके उसको कोई पढ़ता था और गीत होता था कोई गाता था,
1: वाह
0: तो उस
1: वाह
0: तरह का एक
1: वाह,
0: प्रोग्राम तो वो मैं करता था, तो उसमें महादेव वर्मा का और भारती जी का, फिर बाद में गालिब की गजलें कंपोज की,
1: क्या बात है,
0: कबीर को कंपोज किया,
1: वाह
0: इनको
1: वाह,
0: स्टेज किया, स्टेज शो किया, तो ये सब मेरे संगीतकार के रूप में मेरे
1: ये
0: ये
1: चीजें
0: हुआ।
1: चलती रहीं लगातार, ये बहुत अद्भुत बात है। ये एक अलग पूरा एक पक्ष है, हमारे सुनने वालों को ये जानकर अच्छा लगेगा कि आप मंच पर तो गाते ही हैं, लेकिन आप अपने निजी जीवन में भी कुछ फिल्मी गीतों से आपका बड़ा लगाव है जो आप गुनगुनाते हैं, तो हमारे लिए कुछ गुनगुनाइए।
0: चलिए मैं गुनगुना देता हूं। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है,
1: वाह वाह,
0: कभी

0: ये था जाने माने शायर और विविध भारती के भूतपूर्व केंद्र निदेशक राजेश रेड्डी से यूनुस खान की बातचीत का पहला भाग। इस बातचीत का दूसरा भाग आपको सुनवाएंगे अगले हफ्ते आज ही के दिन। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंधल, संपादन सहयोग रीमा जोशी। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
1: आज के मेहमान।

जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिल

दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

0: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ, आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर।
1: वंदे मातरम सुजला।
0: हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव।
1: शस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम।
0: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम, एक जय घोष। वंदे मातरम, एक जय घोष। प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर, पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे। लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम, एक

आप सुन रहे थे विविध भारती की राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम 101.9 MHz पर, यह है FM रेडियो लेक्स सिटी। शाम के 5 बजने वाले हैं। युवा साथियों के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी, हमारे मीडियम वेव चैनल आकाशवाणी उदयपुर से।

0: कि रास्ते मुश्किल हो तो हिम्मत और बढ़ जाती है, सपनों की आग दिल में हो तो दुनिया झुक जाती है, जो गिर कर भी उठना जानते हैं हर बार, कि जो गिर कर भी उठना जानते हैं हर बार, वही लोग एक दिन इतिहास बना जाते हैं।
1: तो इसी के साथ स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त नेहल और मेरे साथ है
0: आर्यन।
1: स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार।

0: दोस्तों, शाम की ठंडी हवाओं में एक नई बात लाए हैं, सपनों को हकीकत बनाने का जज्बा साथ लाए हैं, मिट्टी की खुशबू से जुड़ा एक नया सफर सुनाएंगे, आज रेडियो पर स्टार्टअप की एक इंस्पायरिंग कहानी लाए हैं।
1: वाह, क्या बात है आर्यन। और इसी खूबसूरत शाम के साथ हम वेलकम करते हैं आप सभी दोस्तों का आपके फेवरेट युववाणी शो में, जहां बातें होती है इंस्पिरेशन की, इनोवेशन की और उन सपनों की जो दुनिया बदलने की ताकत रखते हैं।
0: तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है स्टार्टअप अर्थनवेयर। नाम सुनते ही सबसे पहले क्या याद आता है? मिट्टी की खुशबू, कुल्हड़ वाली चाय, मटके का ठंडा पानी और वो देसी टच जो दिल को सुकून दे देता है।
1: बिल्कुल, लेकिन आज का यूथ इस ट्रेडिशनल चीज को एक मॉडर्न बिजनेस आइडिया में कन्वर्ट कर रहा है। आज अर्थनवेयर सिर्फ मिट्टी के बर्तन नहीं रहे बल्कि एक सक्सेसफुली इको फ्रेंडली स्टार्टअप मॉडल बन चुके हैं।
0: और ऑनेस्टली नेहल, जब दुनिया प्लास्टिक पॉल्यूशन से परेशान है, तब मिट्टी से बने प्रोडक्ट्स एक सस्टेनेबल फ्यूचर की उम्मीद बनकर सामने आए हैं।
1: एग्जैक्टली, और इसी लिए आज हम बात करेंगे अर्थनवेयर स्टार्टअप्स आइडियाज़ की, जिसमें होगी बात बिजनेस मॉडल्स, यूथ अपॉर्चुनिटीज, इंडियन कल्चर कनेक्शन और कैसे ये स्टार्टअप इन्वायरमेंट भी सेव कर रहा है और एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट कर रहा है।
0: तो सबसे पहले सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि अर्थनवेयर होता क्या है।
1: अर्थनवेयर मतलब मिट्टी से बने प्रोडक्ट्स, जैसे कुल्हड़, मटका, क्ले कप्स, डेकोरेटिव आइटम्स, टेराकोटा पॉट्स, अर्थनवेयर कुकवेयर और अब तो कैफेज एंड रेस्टोरेंट्स भी क्ले कुकवेयर यूज करने लग गए हैं।
0: और दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग बात भी है कि रिसर्च के अकॉर्डिंग मिट्टी के बर्तन में खाना बनाना हेल्थ के लिए भी बेनिफिशियल माना जाता है, क्योंकि ये मेंटेन करता है नेचुरल मिनरल्स को।
1: बिल्कुल, और अब लोग हेल्थ कॉन्शियस और इको कॉन्शियस दोनों हो रहे हैं। इसी ट्रेंड को स्मार्ट एंटरप्रेन्योर्स ने स्टार्टअप अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर दिया है।
0: इमेजिन करो नेहल, एक छोटा सा गांव जहां एक फैमिली जनरेशन से मिट्टी के बर्तन बनाती आ रही है, लेकिन पहले उनका काम सिर्फ लोकल मार्केट तक ही लिमिटेड था।
1: और फिर एक दिन उनके बेटे ने सोचा, व्हाई नॉट सेल दिस प्रोडक्ट्स ऑनलाइन।
0: बस वहीं से सफर शुरू हुआ स्टार्टअप का। इंस्टाग्राम पेज बना, रील्स अपलोड हुई, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लिसनिंग हुई और धीरे धीरे ऑर्डर्स पूरे इंडिया से आने लगे।
1: यही तो पावर है स्टार्टअप्स की, ट्रेडिशनल आर्ट प्लस डिजिटल मार्केटिंग, यानी सक्सेसफुल बिजनेस।
0: और ऑनेस्टली, आज के यूथ के पास आइडियाज तो बहुत हैं, बस कॉन्फिडेंस और कंसिस्टेंसी चाहिए।
1: आर्यन, एक सीरियस पॉइंट भी है यहाँ। प्लास्टिक पॉल्यूशन दुनिया के लिए एक ह्यूज प्रॉब्लम बन चुका है।

0: एग्जैक्टली नेहल, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स यूज़ होने के बाद एनवायरनमेंट में हंड्रेड्स ऑफ ईयर तक रहते हैं, लेकिन मिट्टी के प्रोडक्ट्स बायोडिग्रेडेबल होते हैं।
1: मतलब नेचर फ्रेंडली भी और स्टाइलिश भी। आज कैफेज क्ले कप्स यूज़ कर रहे हैं बिकॉज कस्टमर्स को देसी एस्थेटिक बहुत पसंद आ रहा है।
0: और ऑनेस्टली कुल्लड़ वाली चाय का टेस्ट ही अलग होता है यार।
1: हाँ, बिल्कुल।
0: आज इंडिया स्टार्टअप रिनोवेशन के फेज में है और अर्थनवेयर जैसा स्टार्टअप रूरल यूथ के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन सकता है।
1: बिल्कुल, इसमें इन्वेस्टमेंट कंपैरेटिवली कम होता है और क्रिएटिविटी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है।
0: और सोशल मीडिया ने तो गेम ही चेंज कर दिया है, आज एक सिंपल रील भी बिजनेस को वायरल कर सकती है।
1: दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई यूनिक आइडिया है तो उसे इग्नोर मत करिए, कभी कभी छोटा आइडिया भी बड़ा ब्रांड बन जाता है।
0: चलो तो नेहल, एक फन क्वेश्चन पूछता हूँ तुमसे कि अगर तुम्हारा अर्थनवे स्टार्टअप होता तो उसका नाम क्या होता?
1: मिट्टी वाइब्स।
0: वाओ यार, स्टाइलिश नेम है यार। मेरा होता देसी क्ले स्टूडियो।
1: दोस्तों, आप भी सोचिए अगर आपका स्टार्टअप होता तो उसका नाम क्या होता।
0: तो दोस्तों, हर सक्सेसफुल स्टार्टअप एक स्मॉल आइडिया से ही स्टार्ट होता है,
1: और फेलियर से डर के सपने छोड़ देना वो सबसे बड़ी हार होती है।
0: और अगर आप पेशनेट हो, हार्ड वर्किंग हो और अपने आइडियाज़ पर बिलीव करते हो तो सक्सेस ज़रूर मिलेगी।
1: और याद रखिए, स्टार्टअप सिर्फ पैसे कमाने का सोर्स नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व करने का भी नाम है।
0: तो दोस्तों, आज हमने जाना कि कैसे एक सिंपल सी मिट्टी की दुनिया के लिए इनोवेशन और इंस्पिरेशन दोनों बन सकती हैं,
1: और कैसे अर्थनवेयर स्टार्टअप्स इंडियन कल्चर को मॉडर्न दुनिया से कनेक्ट कर रहे हैं।

0: शाम ढलती है तो कहानियाँ याद आती हैं, पुरानी इमारतें भी अपनी जुबान सुनाती हैं, पहाड़ों की वादियों से एक सुकून सा मिलता है, हिस्ट्री का हर पन्ना एक नया एहसास दिलाता है।
1: और अब हम लेकर आए हैं एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट जिसे देखकर सिर्फ आंखें नहीं दिल भी शांत हो जाता है, तवांग मॉनेस्ट्री।
0: दोस्तों, इंडिया सिर्फ फेस्टिवल और कल्चर्स का देश नहीं बल्कि हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स और स्पिरिचुअल प्लेसेस का भी खजाना है।
1: और उन्हीं खूबसूरत जगहों में से एक है तवांग मॉनेस्ट्री, जो अरुणाचल प्रदेश के तवांग डिस्ट्रिक्ट में स्थित है।
0: ये मॉनेस्ट्री सिर्फ इंडिया की ही नहीं बल्कि एशिया की सेकेंड लार्जेस्ट बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री मानी जाती है।
1: इमेजिन करिए दोस्तों, पहाड़ों के बीच बादलों के करीब एक ऐसी जगह जहां हर तरफ शांति ही शांति हो, बस वही है तवांग मॉनेस्ट्री।
0: नेहल, क्या आपको पता है कि तवांग मॉनेस्ट्री की फाउंडेशन 7th सेंचुरी में रखी गई थी?
1: यस, इस मॉनेस्ट्री को मेराक लामा लॉर्ड्रिक ग्यात्सो ने एस्टेब्लिश किया था अंडर द गाइडेंस ऑफ 5th दलाई लामा।
0: और यही बात इस जगह को और भी ज्यादा स्पेशल बनाती है कि यह मॉन्यूमेंट सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बल्कि बुद्धिस्ट कल्चर और स्पिरिचुअलिटी का सिंबल भी है।
1: बिल्कुल दोस्तों, तवांग मॉनेस्ट्री का ओरिजिनल नेम है गोल्डन नैमगे लहात्से, जिसका मतलब होता है सेलेशियल पैराडाइज इन अ क्लियर नाइट।
0: नेहल, जब नाम ही इतना सुकून देने वाला है तो जगह कितनी पीसफुल होगी।
1: आर्यन, ऑनेस्टली मुझे लगता है नेचर लवर्स के लिए तवांग हेवन से कम नहीं है।
0: एब्सोल्युटली, स्नो कवर्ड माउंटेन्स, कोल्ड ब्रीज, बुद्धिस्ट प्रेयर फ्लैग्स वे जो कि हवा में लहराते हैं, और मॉनेस्ट्री की गोल्डन रूफ्स सनलाइट में शाइन करती हुई, पूरा सिनेमेटिक वाइब देता है यार।
1: और सबसे ब्यूटीफुल चीज वहां की साइलेंस।
0: एग्जैक्टली, आज की फास्ट लाइफ में जहां हर जगह सिर्फ और सिर्फ आवाजें हैं, तवांग मॉनेस्ट्री एक ऐसी जगह है जहां इंसान खुद से कनेक्टेड कर पाता है।
1: दोस्तों, स्पिरिचुअलिटी का मतलब सिर्फ रिलीजन नहीं होता, कभी कभी एक जगह का एटमॉस्फेयर ही दिल को शांत कर देता है।
0: और तवांग मॉनेस्ट्री वही फील देती है। वहाँ मॉन्क्स मेडिटेशन कराते हैं, प्रेयर्स होती हैं और एक पॉजिटिव एनर्जी पूरे एनवायरनमेंट में महसूस होती है।
1: और दोस्तों, इमेजिन करिए सुबह का सीन, कोल्ड वेदर, हल्की सनलाइट और मॉनेस्ट्री में बजती प्रेयर बेल्स।
0: बस यही तो मोमेंट्स होते हैं लाइफ

0: पर याद रहते हैं।
1: और आज सिर्फ इंडिया से नहीं, फॉरेन टूरिस्ट से भी जगह को एक्सप्लोर करने आते हैं।
0: वहाँ के लोकल कल्चर भी बहुत यूनिक है। ट्रेडिशनल ड्रेसेस, फेस्टिवल, फूड्स और वार्म हॉस्पिटलिटी टूरिस्ट को इतना इंस्टेंट कनेक्ट कर देती है।
1: और ऑनेस्टली आर्यन, मुझे लगता है इंडिया की ब्यूटी इसी डाइवर्सिटी में है।
0: और बिल्कुल, हर स्टेट एक अलग कहानी सुनाता है।

है दिल से होता है शुरू, दिल से होता है शुरू पर कमबख्त सर पे चढ़ा है। कभी खुद से कभी खुदा से कभी जमाने से लड़ा है। इतना हुआ।

0: शाम की हल्की सी रोशनी सपनों का एक नया सफर लाई है। हर उस कलम को सलाम जिसने दुनिया को कहानियां सुनाई हैं। कभी हंसी, कभी आंसू, कभी जंग तो कभी प्यार लिखा। आज हम बात करेंगे उन हीरोज की जिन्होंने स्क्रीन पर पूरा संसार लिखा।
1: अब हमारा टॉपिक है यूथ एम्पावरमेंट थ्रू स्क्रीन राइटिंग। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन लोगों की जो कैमरा के पीछे रहकर पूरी दुनिया की इमोशंस कंट्रोल करते हैं, उन राइटर्स की जो सिर्फ डायलॉग नहीं बल्कि जनरेशन की थिंकिंग लिखते हैं।
0: दोस्तों, जब भी हम कोई मूवी देखते हैं, वेब सीरीज देखते हैं या कोई इमोशनल सीन देखकर रो देते हैं तो हम एक्टर्स की तारीफ करते हैं, लेकिन कभी सोचा है कि वो डायलॉग लिखा किसने, वो सीन इमेजिन किसने किया, वो कहानी बनाई किसने? इसका आंसर है एक स्क्रीन राइटर ने।
1: बिल्कुल आर्यन, स्क्रीन राइटर वही इंसान होता है जो एक ब्लैंक पेज को दुनिया का सबसे बड़ा इमोशन बना देता है। एक स्क्रीन राइटर सिर्फ स्टोरी नहीं लिखता, वो सोसाइटी का मिरर होता है। अगर आज हमारा यूथ मोटिवेशनल मूवीज देखकर इंस्पायर्ड हो रहा है और लोग डिप्रेशन से निकलकर लाइफ को नए तरीके से देख रहे हैं, तो उसके पीछे किसी राइटर की सोच होती है।
0: और सबसे खास बात कि आज के यूथ के लिए स्क्रीन राइटिंग एक पावरफुल करियर ऑप्शन बन चुका है। आज OTT प्लेटफॉर्म्स, YouTube, शॉर्ट फिल्म्स, रील्स, पॉडकास्ट, हर जगह कंटेंट की डिमांड है। अगर आपके पास आइडियाज़ हैं, इमोशंस हैं, ऑब्जर्वेशन है, तो आप भी एक सक्सेसफुल राइटर बन सकते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा, आज का यूथ सिर्फ नौकरी नहीं आइडेंटिटी चाहता है, और राइटिंग एक ऐसी फील्ड है जहां आप अपनी आवाज़ दुनिया तक पहुंचा सकते हो। आज एक सिंपल मोबाइल फ़ोन से भी कहानियां दुनिया तक जा रही है। किसी गांव का लड़का, किसी छोटे शहर की लड़की आज अपनी स्टोरीज नेटफ्लिक्स तक पहुंचा रहे हैं। यही तो है एम्पावरमेंट।
0: एग्जैक्टली, पहले अपॉर्चुनिटीज़ लिमिटेड थी, लेकिन अब डिजिटल दुनिया ने हर टैलेंटेड यूथ को एक प्लेटफॉर्म दिया है। आज अगर आप अच्छा लिखते हो तो आप इंस्टाग्राम पे मिनी स्टोरीज लिख सकते हो, यूट्यूब के लिए स्क्रिप्ट लिख सकते हो, शॉर्ट फिल्म्स क्रिएट कर सकते हो। और दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, स्क्रीन राइटिंग सिर्फ पैसा नहीं देता, रिस्पेक्ट भी देता है।
1: और एक राइटर की पावर का अंदाज़ा इस बात से लगाओ दोस्तों, एक डायलॉग पूरी जनरेशन की थिंकिंग चेंज कर देता है। जैसे पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, ऑल इज़ वेल, ये सिर्फ डायलॉग्स नहीं, इमोशंस हैं।

0: दोस्तों, शाम ढल रही है धीरे धीरे और हवाओं में एक सुकून सा है। कहानियों का एक सफ़र और संगीत का एक जुनून सा है। कुछ अल्फाज दिल को छू जाएंगे, कुछ सुर रूह में उतर जाएंगे। आज के इस महफिल में दो ऐसे सितारों की बात होगी जो दुनिया को इंस्पायर कर जाएंगे।
1: अब हम बात करने वाले हैं दो ऐसे लीजेंड्स की जिन्होंने अपनी कला से दुनिया को एक नई डायरेक्शन दी है। एक तरफ है कहानियों के जादूगर और दूसरी तरफ है म्यूजिक के मैजिशियन। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा स्पेशल टॉपिक आर के नारायण और स्टीव वंडर।
0: दोस्तों, अगर इंडियन इंग्लिश लिटरेचर की बात हो और आर के नारायण का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। उन्होंने सिंपल इंडियन लाइफ को इतनी खूबसूरती से लिखा कि पूरी दुनिया इंडिया को उनकी स्टोरीज के थ्रू समझने लगी। उनका जन्म 1906 में चेन्नई में हुआ था और उन्होंने एक फिक्शनल टाउन क्रिएट किया था जिसका नाम था मालगुड़ी।
1: बिल्कुल आर्यन, और मालगुड़ी सिर्फ एक जगह नहीं थी, वो इमोशंस का शहर था। वहाँ के कैरेक्टर्स, उनकी सिंप्लिसिटी, उनके स्ट्रगल्स, सब कुछ इतना रियल लगता था कि रीडर्स को अपनी ही लाइफ नज़र नहीं आती थी। और दोस्तों, उनकी फेमस बुक मालगुड़ी डेज आज भी लोग बड़े प्यार से पढ़ते हैं।
0: और एक इंटरेस्टिंग बात निहल कि आर के नारायण जी ने कभी लाउड स्टोरीज नहीं लिखी, ना बड़े एक्शंस, ना ओवर ड्रामा, बस सिंपल लाइफ की ब्यूटीफुल रियलिटीज। इसी वजह से उनकी राइटिंग टाइमलेस बन गई।
1: दोस्तों, आर के नारायण हमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन देते हैं, सिंप्लिसिटी इज़ पावरफुल। आज के यूथ को लगता है कि सक्सेसफुल होने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना ज़रूरी है, लेकिन नारायण जी ने ऑर्डिनरी लाइफ को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना दिया।
0: और राइटर्स के लिए तो एक इंस्पिरेशन है ही अपनी, लेकिन हर इंसान उनसे एक बात सीख जरूर सकता है कि अपनी रूट्स कभी मत भूलो। उन्होंने इंडियन कल्चर को दुनिया के सामने इतना प्राउडली प्रेजेंट किया कि दोस्तों, यही असली आर्ट होती है।

0: 10 लाख की लॉटरी
1: मुझे।
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान,
3: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: तो दोस्तों, कहानियों की दुनिया से अब चलते हैं म्यूजिक की दुनिया में और बात करते हैं एक ऐसे आर्टिस्ट की जिन्होंने दुनिया को सिखाया लिमिटेशन सिर्फ सोच में होती है।
6: जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं लेजेंडरी सिंगर स्टीव वंडर की। एक ऐसे आर्टिस्ट जो बचपन से विजुअली इम्पेयर्ड थे, लेकिन उनका टैलेंट दुनिया के लिए रोशनी बन गया।
5: बिल्कुल, स्टीव वंडर ने सिर्फ म्यूजिक नहीं बनाया, उन्होंने इमोशंस को सुर दिए। उन्होंने बहुत छोटी एज में म्यूजिक इंडस्ट्री में एंट्री की और फिर जैसे सॉन्ग्स दिए आज भी दुनिया सुनती है।
6: और उनकी लाइफ का सबसे इंस्पायरिंग पार्ट पता है क्या है? उन्होंने कभी अपनी डिसेबिलिटी को वीकनेस नहीं बनने दिया। वो कहते थे कि जस्ट बिकॉज अ मैन लैक द यूज ऑफ हिज आईज डजंट मीन ही लैक विजन। क्या बात है यार,
5: आज का यूथ छोटी छोटी फेलियर से टूट जाता है, लेकिन स्टीव वंडर की जर्नी हमें सिखाती है अगर पेशेंस स्ट्रांग हो तो दुनिया का कोई चैलेंज आपको रोक नहीं सकता।
6: और दोस्तों, म्यूजिक हो या राइटिंग, दोनों में एक चीज कॉमन सीखते हैं कि बिलीव इन योर टैलेंट। चाहे लोग सपोर्ट करें या ना करें, आपको खुद पर भरोसा होना ही चाहिए।
5: एक तरफ आर के नारायण जिन्होंने वर्ड से दुनिया जीती और दूसरी तरफ स्टीव वंडर जिन्होंने म्यूजिक से दिल जीता। दोनों अलग फील्ड्स में थे, लेकिन दोनों का मिशन सेम था, लोगों के इमोशंस को टच करना।
6: एग्जैक्टली, और इसीलिए आज भी ये दोनों लेजेंड्स अमर हैं। एक की कहानियां कभी पुरानी नहीं होती और एक के गाने कभी आउटडेटेड नहीं लगते। यही होती है दोस्तों असली लेगेसी।

0: होगी। कहानी डायलॉग्स का जुनून चलेगा और आज का शो दोस्तों टैलेंट और पैशन के नाम रहेगा।
1: और आज का इस खूबसूरत शाम में अब हम बात करने वाले हैं तीन ऐसे आर्टिस्ट की जिन्होंने अपने टैलेंट से दुनिया में अलग पहचान बनाई। एक एक्टर जिनकी पर्सनैलिटी दुनिया भर में फेमस है, एक सिंगर जिनकी आवाज़ हर मूड को एनर्जेटिक बना देती है, और एक एक्टर जिनकी रियलिस्टिक एक्टिंग दिल जीत लेती है। जी हाँ दोस्तों, आज का टॉपिक है रॉबर्ट पैटिनसन, बेनी दयाल, देबियेंदु शर्मा।
0: तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हॉलीवुड के चार्मिंग स्टार रॉबर्ट पैटिसन की। रॉबर्ट पैटिसन ने अपनी एक्टिंग और पर्सनैलिटी से मिलियंस ऑफ फैंस बनाए हैं। उन्हें दुनिया ने सबसे ज़्यादा पहचाना ट्विलाइट मूवीज़ की सीरीज से, और एडवर्ड क्यूलेन का कैरेक्टर आज भी फैंस के दिल में जिंदा है।
1: बिल्कुल आर्यन, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि रॉबर्ट सिर्फ रोमांटिक रोल्स तक लिमिटेड नहीं रहे, उन्होंने हर टाइप के चैलेंजिंग रोल्स किए। और फिर जब उन्होंने द बैटमैन में बैटमैन का रोल प्ले किया, तब लोगों को उनकी एक्टिंग का एक और पावरफुल साइड देखने को मिला।
0: और दोस्तों रॉबर्ट पैटिसन की जर्नी हमें एक इम्पॉर्टेंट लेसन भी देती है कि नेवर स्टे इन वन कंफर्ट जोन। उन्हें हर बार खुद को री इन्वेंट किया है। यही चीज़ यूथ को इंस्पायर भी करती है।
1: अब बात करते हैं म्यूजिक की दुनिया के एनर्जेटिक स्टार की, बेनी दयाल। दोस्तों, बेनी दयाल की आवाज़ में एक अलग ही फ्रेशनेस है। चाहे रोमांटिक सॉन्ग्स हो, पार्टी ट्रैक्स हो, या मोटिवेशनल वाइब्स, उनकी सिंगिंग इंस्टेंटली मूड चेंज कर देती है।
0: बिल्कुल निहल, और उनके कुछ सुपरहिट सॉन्ग तो आज भी हर प्लेलिस्ट का पार्ट है, जैसे कि बदतमीज दिल, लुट ले गया, उड़े दिल बेफिक्रे। और दोस्तों उनकी एनर्जी लाइव परफॉर्मेंस में नेक्स्ट लेवल होती है।
1: और एक बात जो बेनी दयाल को स्पेशल बनाती है, वो सिर्फ हिंदी नहीं बल्कि तमिल, तेलुगु, मलयालम और मल्टीपल लैंग्वेज में गाना गा चुके हैं। ये दिखाता है कि टैलेंट की कोई लैंग्वेज नहीं होती।
0: और अब बात करते हैं एक ऐसे एक्टर की जिनकी एक्टिंग बहुत ज़्यादा रियल और रॉ फील देती है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ देबियेंदु शर्मा की। उन्होंने अपनी पावरफुल एक्टिंग से OTT और बॉलीवुड दोनों में अलग पहचान बनाई है।
1: बिल्कुल, अगर दोस्तों आपने मिर्ज़ापुर देखी है तो उनकी एक्टिंग ज़रूर याद होगी। वो हर रोल को इतना नेचुरल बना देते हैं कि ऑडियंस कनेक्ट फील करती है।
0: और दोस्तों देबियेंदु शर्मा का स्ट्रगल भी बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है। उन्हें स्लोली इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई। कोई ओवरनाइट सक्सेस उन्हें नहीं मिली, बस हार्ड वर्क, पेशेंस और टैलेंट, यही रियल मोटिवेशन होती है।
1: अगर दोस्तों ध्यान से देखो तो इन तीनों आर्टिस्ट में से एक चीज़ कॉमन है, पेशेंस। रॉबर्ट पैटिनसन ने एक्टिंग को नए लेवल पर ले गया, बेनी दयाल ने म्यूजिक में पॉजिटिविटी भर दी, और डेबिन शर्मा ने रियलिस्टिक एक्टिंग का मैजिक दिखाया।
0: निहल, और एक इम्पॉर्टेंट बात भी है कि सक्सेस सिर्फ ग्लैमरस नहीं होती, उसके पीछे बहुत ज़्यादा हार्डवर्क भी होता है, फेलियर्स भी होते हैं, स्ट्रगल भी होता है, लेकिन जो अपने ड्रीम्स पर बिलीव करता है वही आगे बढ़ता है।

दोस्तों, शाम की महफिल सज चुकी है। हवाओं में हल्का सा नशा है, कुछ चेहरे एक्टिंग से चमके हैं तो कुछ आवाज़ों में अलग ही मज़ा है। कहानी सुरों की मिठास।

0: शाम की ठंडी हवाओं में एक पुरानी सी बात है, हर आवाज़ में छुपे एक खूबसूरत याद है। कभी गीतों ने दिल जीता तो कभी खबरों ने साथ निभाया। रेडियो सिर्फ एक मशीन नहीं, हर घर का जज्बात है।
1: और आज की इस सुहानी शाम में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी आवाज़ की जिसने जनरेशंस को जोड़ा है, एक ऐसा साथी जो कभी अकेला नहीं छोड़ता। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा स्पेशल टॉपिक है 90 ईयर्स ऑफ ऑल इंडिया रेडियो, यानी हम बात करेंगे रेडियो और सीनियर सिटीजन्स की।
0: दोस्तों, आज से लगभग 90 साल पहले इंडिया में एक आवाज़ गूंजी थी, एक ऐसी आवाज़ जिसने देश को एक साथ जोड़ा, और उस आवाज़ का नाम था ऑल इंडिया रेडियो, या फिर प्यार से कहे जाने वाला आकाशवाणी।
1: बिल्कुल आर्यन, आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं है, वो हर जगह की पहचान है। सुबह की भक्ति हो, शाम के गीत हो, खेती की जानकारी हो या देश की खबरें, हर चीज़ रेडियो से जुड़ी होती है।
0: और दोस्तों, उस टाइम ना स्मार्टफोन्स थे ना इंटरनेट था, लेकिन फिर भी पूरा देश कनेक्टेड रहता था, क्योंकि हर घर में एक रेडियो तो होता ही था और उसके आसपास पूरा परिवार बैठता था। और वो क्या खूबसूरत ज़माना था यार।
1: बिल्कुल सही कहा, आज हम स्पेशली बात कर रहे हैं सीनियर सिटीजन्स की, तो क्योंकि रेडियो और सीनियर सिटीजन्स का कनेक्शन बहुत इमोशनल है। आज भी बहुत से दादा दादी, नाना नानी सुबह उठकर रेडियो सुनते हैं। उनके लिए रेडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि एक दोस्त है।
0: बिल्कुल निहल, आज के डिजिटल एरा में लोग मोबाइल स्क्रॉलिंग में बिजी हो गए हैं, लेकिन रेडियो में एक अलग ही सुकून है। सीनियर सिटीजन्स के लिए रेडियो लोनलीनेस का काम करता है।

0: दोस्तों, हर दिन की तरह आज का दिन भी इतिहास के पन्नों में कई खास कहानियां समेटे हुए हैं। चलिए चलते हैं आज के दिन की इस दिलचस्प यात्रा पर और जानते हैं आज का इतिहास। ईयर 1846 में आज ही के दिन मैक्सिकन अमेरिकन वॉर की शुरुआत हुई थी। यह युद्ध अमेरिका और मैक्सिको के बीच हुआ था, जिसने बाद में कई नए क्षेत्रों की सीमाएं तय की।
1: और 1917 में आर लेडी ऑफ फातिमा की पहली घटना पुर्तगाल में हुई, जिसे आज भी दुनिया भर में धार्मिक आस्था से जोड़ा जाता है।
0: और 1964 में प्रसिद्ध बॉडी बिल्डर रोनी कर्लेमन का जन्म हुआ, जो 8 बार मिस्टर ओलंपिया रह चुके हैं।
1: और 2010 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF ने कुछ देशों पर निगरानी बढ़ाने का निर्णय लिया।
0: और 1962 में भारत के दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने पदभार संभाला।
1: और 1638 में दिल्ली में मुगल बादशाह शाहजहां ने लाल किले के निर्माण की शुरुआत की।
0: और 1952 में स्वतंत्र भारत की पहली संसद का सत्र शुरू हुआ, जिसमें लोकसभा व राज्यसभा का गठन हुआ।
1: तो दोस्तों, बात करते हैं स्पोर्ट्स अपडेट की। तो IPL 2026 आज का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच रायपुर में खेला जाएगा 7:30 PM से।
0: अब बात करें कल के IPL मैच की, तो ये गुजरात टाइटंस और सनराइज हैदराबाद के बीच अहमदाबाद में खेला गया, जिसमें गुजरात टाइटंस ने जीत की लय कायम रखते हुए सनराइज हैदराबाद के खिलाफ 82 रन से जीत दर्ज की और पॉइंट्स टेबल में टॉप पोजीशन हासिल कर ली।
1: दोस्तों, बातें तो आपसे हम बहुत सारी करना चाहते हैं अभी।

0: लेकिन जो वक्त की घड़ी है वो हमें ज़्यादा इजाज़त देती नहीं है। इसी के साथ आज का कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं। मैं था आपका रेडियो दोस्त आर्यन, और मेरे साथ थी
1: नेहल,
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।

अभी युवा श्रोताओं ने सुना अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी, प्रसारण आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से हो रहा था। हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर। शाम के 6 बजने वाले हैं, लिए चलते हैं आपको आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र, जहां से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सीजन 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 260,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। ग्रेड ए धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,461 रुपए प्रति क्विंटल, हाइब्रिड ज्वार के लिए 4,023 रुपए प्रति क्विंटल, बाजरा के लिए 2,900 रुपए प्रति क्विंटल और अरहर दाल के लिए 8,400 रुपए प्रति क्विंटल होगा। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
1: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नॉन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इससे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि योजना से केवल खनन से प्रतिवर्ष 6,300 करोड़ रुपए का राजस्व और 5,000 रोजगार सृजित होगा। ये आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पहल को भी सशक्त करेगी। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि ये नागपुर हवाई अड्डे के लिए एक क्षेत्रीय विमानन केंद्र बनने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव CV जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोफ ने आश्वासन दिया है कि बाहरी प्रतिस्पर्धा के बावजूद भारत के लिए ऊर्जा आपूर्ति संबंधी समझौतों का पालन किया जाएगा। श्री लावरोफ ने कहा कि रूस ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा कि अनुचित प्रतिस्पर्धा द्विपक्षीय समझौतों को नुकसान न पहुंचाए। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने वांछित नार्को आतंकवादी इकबाल सिंह उर्फ शेरा को गिरफ्तार कर लिया है। लंबे राजनयिक और कानूनी प्रयासों के बाद पुर्तगाल से उसके प्रत्यर्पण में

0: सफलता हासिल की गई है। 2020 से फरार इस आतंकवादी को पाकिस्तान समर्थित नार्को आतंकी मामले में गिरफ्तार किया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज, पशु उत्पादों और अन्य आवश्यक उत्पादों के अंतरराज्यीय आवागमन पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। ये प्रतिबंध पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार ने लगाए थे। इन प्रतिबंधों से आलू किसानों और अन्य संस्थाओं को भारी नुकसान हुआ था। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारत्तोलन प्रतियोगिता में ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलो भार वर्ग में रजत और कांस्य पदक जीता है। उधर थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु, मालविका बंसोड़, देविका सिहाग, लक्ष्य सेन और किदांबी श्रीकांत सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आईपीएल क्रिकेट में रायपुर में आज शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। अंक तालिका में 8वें स्थान पर मौजूद कोलकाता के लिए ये मुकाबला प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए महत्वपूर्ण है। वहीं बेंगलुरु जीत दर्ज कर शीर्ष पर आना चाहेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: बुधवार की शाम का समय होता है कार्यक्रम फिट उदयपुर का। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं डॉक्टर स्मिता बहेती। आपसे बातचीत कर रहे हैं गजेंद्र सिंह राठौड़। विषय है प्रेगनेंसी और उससे जुड़ी समस्याएं।
2: कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। यह है कार्यक्रम फिट उदयपुर और फिट उदयपुर में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर स्मिता बहेती। आप गायनेकोलॉजिस्ट हैं और इनसे हम कार्यक्रम में जानेंगे कि प्रेगनेंसी और उससे जुड़ी क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आज के समय में हमें दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले कार्यक्रम में आपका स्वागत, नमस्कार।
3: नमस्कार, सभी श्रोताओं का अभिनंदन।
2: कि जो हमारे कार्यक्रम का विषय है कि प्रेगनेंसी और उससे जुड़ी हुई समस्याएं, तो आमतौर पर अभी वर्तमान समय में महिलाओं को इन प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी से जुड़े हुए इश्यूज काफ़ी देखे जा रहे हैं, और इनके पीछे क्या वजह है, मुख्य कारण क्या है और किस तरह से इनसे बचा जा सकता है?
3: अगर हम प्रेगनेंसी कंसीव ना करना, इनफर्टिलिटी, इसके बारे में अगर हम बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट इशू जो आजकल है, एक स्ट्रेस, सेकेंड लेट मैरिजेस, मतलब अगर हमारी शादी लेट होती है या शादी होने के बाद भी हम प्लानिंग लेट करते हैं, लाइक 30-35 के बाद अगर हम बच्चा प्लान करने की कोशिश करते हैं तो थोड़े से हमारी बॉडी के रिजर्व्स कम हो जाते हैं। फिर भी अगर हम लेट कंसीव करते भी हैं तो बहुत सारे मेडिकल हेल्थ इश्यूज़ जैसे बीपी बढ़ना, डायबिटीज़ हो जाना, बच्चे की ग्रोथ रिटार्डेशन, सिजेरियन डिलीवरी के चांसेस, ये सब बढ़े हुए देखे गए हैं।
2: क्योंकि ये आपने जो कारण बताए हैं इनके पीछे की भी एक कोई पृष्ठभूमि या एक हिस्ट्री रही होती है, क्योंकि जो महिला जो शादी की एज में है या जो फैमिली प्लानिंग कर रही है उससे पहले वो अपने किशोरावस्था से गुजरी होगी, शादी से पहले का जो कॉलेज समय से लेके या यूं कहें शादी के बीच का जो दौर है, इसमें क्या क्या समस्याएं देखी गई है जो इसका कारण बनती है?
3: आजकल मोस्ट कॉमन जो एडोलेसेंट या किशोर अवस्था की प्रॉब्लम की आप बात कर रहे हैं, वो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम जो आजकल बच्चियाँ हमारे हिंदुस्तान में तो क्या वर्ल्ड वाइड जो फेस कर रही है, वो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज और सिंड्रोम इसकी है। ये बेसिकली एक हार्मोनल डिस्टरबेंस है जो लाइफस्टाइल डिसीज और कभी कभार कुछ जेनेटिक हेरिडिटरी पैटर्न भी इसमें देखा गया है। इसमें बेसिकली ओवरवेट और अंडरवेट दोनों में ही अगर हार्मोनल हमारी बॉडी के हार्मोन्स डिस्टर्ब्ड हैं तो इन बच्चियों को इरेगुलर मेंसेस होते हैं, इनका बॉडी वेट बहुत रैपिडली बढ़ने लगता है, एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ होती है, एंड लेटर इन लाइफ इन महिलाओं को कंसीव करने में प्रॉब्लम अराइज हो सकती है।
2: तो अगर ये एडोलसेंट गर्ल को अगर ये वाली प्रॉब्लम्स है और अगर ये आइडेंटिफाई हो जाती है या फिर सही समय पर गायनेकोलॉजिस्ट या फिर डॉक्टर की सलाह लेते हैं, तो इन सारे खतरों को कितने हद तक कम किया जा सकता है?
3: बहुत हद तक कम करा जा सकता है। जैसा कि मैंने आपको कहा, PCOD बेसिकली मॉडिफाइबल लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर मोस्ट कॉमन रीजन है उसका। अगर वो रेगुलर वर्कअप या व्यायाम करती है, खाने पीने का ध्यान रखती है, लाइक हाई कार्बोहाइड्रेट फूड्स, जंक फूड, फ्राइड फूड्स, रेडी टू ईट फूड, फास्ट फूड, इनको अवॉइड करते हैं, न्यूट्रिटिव फूड की तरफ जाती हैं जैसे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड हेल्दी इंडियन डाइट अगर लेते हैं, विच हैज़ अ

0: बैलेंस प्रोपोर्शन ऑफ प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट्स। तो वेट लॉस के साथ वेट लॉस होने से पीसीओडी काफ़ी हद तक ट्रीट हो जाता है और उसका रिकरेंस नहीं होता है अगर आप वही डिसिप्लिन आपके पूरे लाइफ में रेगुलर एक्सरसाइज एंड डाइट में रखते हैं, तो बहुत हद तक ट्रीटेबल है।
1: क्योंकि पीसीओडी और पीसीओएस को आपने ओबेसिटी के साथ रिलेट किया, लेकिन साथ साथ में आज के समय में कम उम्र में ही ब्लड प्रेशर या डायबिटीज होने की भी कंडीशंस देखी जा रही है, क्या ये भी एक प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस ला सकते हैं?
0: बिल्कुल, अगर डायबिटीज़ है, अगर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, तो बच्चे में जेनेटिक या कंजेनाइटल एबनॉर्मैलिटीज़ के चांसेस हाई हो जाते हैं, क्योंकि शुगर डिरेंजमेंट के कारण बहुत सारे कंजेनाइटल डिफेक्ट्स देखे गए हैं। सेकंड, हाइपरटेंशन अगर होता है, हाइपरटेंशन के कारण जो बच्चे को डेवलपमेंट के लिए जो ब्लड फ्लो है वो भी कॉम्प्रोमाइज़ होता है, जिसके कारण बच्चा आईयूजीआर या ग्रोथ रिटार्डेशन होने के चांसेस काफ़ी हाई होते हैं।
1: प्रेगनेंसी और इससे जुड़ी हुई कॉम्प्लिकेशंस पर और भी बातें जारी रहेगी, लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक।

0: श्रोताओं, यह है कार्यक्रम फिट उदयपुर, और फिट उदयपुर में आज हमारे साथ है डॉक्टर स्मिता बाहेती। और ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे प्रेगनेंसी और उससे जुड़ी हुई कॉम्प्लिकेशंस। मैम, जो हमने बात की लाइफस्टाइल को लेकर, या फिर कॉम जो भी लाइफस्टाइल डिजीज़ जो भी हैं उनको बात की, लेकिन साथ ही साथ एक चीज़ और देखी गई है कि किशोरियों में खून की कमी, एडल्ट्स एंड गर्ल में खून की एनीमिया जिसको कहते हैं, और कई बार ये भी देखा गया है कि जो एक लेडी है उसके अंदर जब भी हीमोग्लोबिन काउंट देखा जाता है वो एक बिलो लेवल पर ही आता है। तो सबसे पहले बताया कि ये हीमोग्लोबिन लेवल कितना रहना चाहिए, और अगर ये खून की कमी जैसी समस्या है तो ये प्रेगनेंसी के लिए कितना खतरनाक हो सकती है?
1: इंडियन डेटास के हिसाब से 10 से ऊपर ही हमारा हीमोग्लोबिन रहना चाहिए, बट मैं मानती हूँ 12 के करीबन हो तो वो बेटर होता है। इससे कम, अगर 5 ग्राम से कम है तो वो बहुत ही सिवियर एनेमिक है, वो तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कारण है। वैसे अगर किशोरियों में हम ब्लड लॉस या अनीमिया के बारे में बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट है ब्लड बनता किससे है, आयरन से। हमारी पुअर डाइट हैबिट की वजह से आजकल बच्चे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, आयरन रिच फ्रूट्स नहीं खाते हैं। दे आर मोर लाइक जंपिंग इन टू फास्ट फूड ईटिंग हैबिट्स, जिसके कारण ओवरऑल न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज की वजह से मोस्ट कॉमन अनीमिया का रीज़न न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी या आयरन डेफिशिएंसी।

0: जैसी अनीमिया है। सेकंड, अगर हम दूसरी बात करें तो बच्चों को यूजुअली इरेगुलर मेंसेस की प्रॉब्लम रहती है, हैवी मेंसेस की प्रॉब्लम होती है अगर ये अनअटेंडेंट रहती है। अगर हम बच्चों को ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं तो उससे उनका ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण भी वो अनीमिया डेवलप कर सकते हैं।
1: जब हम बात करते हैं कोई महिला अपने एजुकेशन लाइफ से आगे निकल कर जब वो अपने वर्किंग लाइफ में आ रही है या फिर रिप्रोडक्टिव एज में आ रही है, तब स्ट्रेस है या फिर काम का दबाव है या फिर काम के चलते लंबा टूर जॉब करना पड़ रहा है, इधर उधर आना जाना पड़ रहा है, तो उस समय अगर वो फैमिली प्लानिंग कर रही हैं तो उनको किन किन चीज़ों की ध्यान रखना होगा और किस तरह से इन प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है?
0: सबसे पहले तो जो भी महिलाएं अपनी फैमिली प्लानिंग करती है, तो मुझे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो उनको बताना है वो है कि सबसे पहले अपना बेसलाइन हार्मोन टेस्ट करवाना चाहिए कि कहीं हम किसी हार्मोन लाइक थायराइड या प्रोलैक्टिन एबनॉर्मेलिटी से तो नहीं गुजर रहे हैं। सेकेंड, हमें एक अपना बेसलाइन अल्ट्रासाउंड भी करवा लेना चाहिए। तो ये, और हस्बैंड का भी एक सीमन एनालिसिस बेसलाइन करवाना चाहिए। ये प्री रिक्विजिट है किसी भी कपल को कंसीव करने के लिए। सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी डाइट में, सप्लीमेंट्स में प्रीनेटल विटामिंस, जो फॉलिक एसिड और विटामिन B12 सप्लीमेंटेशन है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इनकी डेफिशिएंसीज वुमेंस में, इंडियन वुमेंस में देखी गई है, जो बहुत बार कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटीज़ को प्रोवोकेट करती हैं।
1: कई बार ये देखा गया है कि फैमिली प्लानिंग भी आपने करनी, लेकिन जब जो डिफरेंट ट्राइमेस्टर्स आपके प्रेगनेंसी के टाइम में होते हैं उस स्टेज पे जब हम आते हैं तब क्या क्या दिक्कतें हो सकती है और कौन कौन से टेस्ट और कौन कौन से डायग्नोसिस उन्हें टाइम टू टाइम करवाते रहना चाहिए ताकि किसी भी अनफॉर्चुनेट कंडीशन से बचा जा सके?
0: यूजुअली अगर हम प्रेगनेंसी को डिवाइड करें तो हम प्रेगनेंसी को मोटे तौर पे 3 ट्राइमेस्टर्स में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट ट्राइमेस्टर सबसे टास्किंग ट्राइमेस्टर इसलिए होता है क्योंकि इस समय बच्चा बन रहा होता है, तो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, वुमेंस के सडन बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिससे उनको नौशिया, वॉमिटिंग, अनईजीनेस, लॉस ऑफ वेट, ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर हम ये देखा जाए कि इस समय बिकॉज ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत बार एबॉर्शन की जो रिस्क होती है वो सबसे ज़्यादा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होती है। सेकेंड ट्राइमेस्टर जो हम 3 महीने से 7 महीने के बीच में नॉर्मली कंसिडर करते हैं, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो बच्चे का ग्रोथ होती है, एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें रूल आउट करानी होती है वो कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मेलिटी करानी होती है। तो 5th मंथ का जो एनोमली स्कैन होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, जो मुझे ऐसा लगता है महिलाओं को मिस नहीं करना चाहिए। 20-22 वीक्स के अंतर उसको करवा ही लेना चाहिए।
1: जिस प्रेगनेंसी को हम बात कर रहे हैं, और लेकिन इसमें एज का सबसे बड़ा फैक्टर है क्योंकि जो रिप्रोडक्टिव एज है जो आपने कार्यक्रम में जिक्र किया कि 20 से 35 साल के बीच में है, लेकिन आजकल के कामकाजी दौर में ये फैमिली प्लानिंग में कई देर हो जाती है, तो ये देरी होना कितना घातक हो सकता है और कितने कॉम्प्लिकेशंस बढ़ा सकता है?
0: देखो, इसको समझने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हमें समझना है कि महिलाओं की एग्स बनाने की कैपेसिटी बहुत ही लिमिटेड होती है। मतलब जब वो महिला माँ के पेट में होती है तब उसके जो एग्स बनते हैं वही लाइफ टाइम में वो रिलीज़ करती है। तो ऑन एन एवरेज एक वुमेन 300-500 एग्स रिलीज़ करने की ही कैपेसिटी रखती है। समय के साथ जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ये एग्स की क्वालिटी पुअर हो जाती है, इनका एट्रीशन हो जाता है और एक अच्छा ओव्यूलेशन या ओवम निकलना डिफ़िकल्ट होता है। तो इसीलिए नॉर्मली 35 ईयर्स के बाद हमारी जो एग रिलीज़ करने की कैपेसिटी होती है ओवरी की, वो बहुत डेट्योरेट होती है और इसके बाद कंसीव करना में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है।
1: प्रेगनेंसी से जुड़ी और भी बातें जारी रहेगी, लेकिन लेते हैं म्यूजिकल ब्रेक।

0: काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस की हमने बात की, लेकिन एक टर्म बार बार यूज़ होती है आज के समय में, हाई रिस्क प्रेगनेंसी। तो ये बताएं, हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या है और किस वजह से इसको इस जोन में रखा गया है?
1: हाई रिस्क प्रेगनेंसी, इसके बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं। इसमें यूजुअली वो सारी वुमेन्स आती हैं जिनको नॉर्मल वुमेन से बीपी बढ़ने की शिकायत, एज अगर उसका 35 ईयर्स है, डायबिटीज़ होने की शिकायत, हाइपोथायरॉयड, इनकी टेंडेंसी थोड़ी सी ज़्यादा है। इवन ट्विन प्रेगनेंसी को भी हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी कंसिडर करते हैं, क्योंकि इसमें हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा माँ और होने वाले बच्चे पे ध्यान देना पड़ता है। तो ये सारी हाई रिस्क प्रेगनेंसीज़ होती हैं, और इन हाई रिस्क प्रेगनेंसीज़ का इंसिडेंस जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उनके चांसेस थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं।
0: हाई रिस्क प्रेगनेंसी के साथ साथ एक सबसे बड़ा कॉमन इशू आज के समय ये है कि कई बार महिलाओं के, मुझसे भी सुना है कि जब फर्स्ट बेबी जब मेरा हुआ था तब इजीली मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, और जब हमने सेकंड का प्लान किया तब सेकंड इश्यूज में या तो मिसकैरेज की प्रॉब्लम हुई है कई लोगों को, या फिर उनमें काफ़ी ज़्यादा केयर करने की बात कही गई है। इसका क्या रीज़न है और इसका अभी के समय में, क्योंकि पहले टर्म नहीं हुआ करती थी, आजकल के समय में ये
1: सेकेंडरी,
0: ज़्यादा क्यों दिखाई दे रही है?
1: हाँ, इसको हम यूजुअली मेडिकल टर्म में सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कहते हैं, कि पहले तो बहुत आराम से कंसीव हो गया बट सेकेंड टाइम कंसीव करने में डिफ़िकल्टी आती है। अगर हम देखें समय के साथ, जैसे हमारी ओवेरियन एजिंग होती है, एग रिलीज करने की कैपेसिटी कम होती है, सेकेंड हार्मोनल डिस्टरबेंस बढ़ने जाते हैं, कुछ लोग ओबेसिटी की तरफ भी, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ओबेसिटी की तरफ जाते हैं, कभी कभार बहुत बार इन्फेक्शन्स होने के कारण ट्यूब्स ब्लॉक हो जाती हैं, उसके कारण भी सेकेंड टाइम कंसीव करने में दिक्कत होती है। रिपीटेड अनवांटेड पिल्स जो लेते हैं उनके कारण, इन्फेक्शन्स होने के कारण भी सेकेंड टाइम कंसीव करने में दिक्कत होती है। तो ये बहुत कॉमन रीजंस हैं सेकेंडरी इनफर्टिलिटी के फीमेल्स में, बट मेल्स में भी रीज़न है। मेल्स में जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, अगर हम एडिक्शन की तरफ जाते हैं, अल्कोहल, टोबैको, स्मोकिंग, इन सब से भी स्पर्म पैरामीटर्स डिरेंज होते हैं, जिसके कारण कंसीव करने में डिफ़िकल्टी आती है।
0: कई बार देखा गया कि महिलाओं को यूरिन इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, क्या यूरिन इन्फेक्शन अगर सीवियर हो जाता है तो क्या वो भी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करता है?
1: यस, अगर यूटीआई इन्फेक्शन ट्रीटेड नहीं है प्रेगनेंसी में, तो ये प्री टर्म लेबर और सिवियर पाइलोनेफ्राइटिस, मतलब जो इन्फेक्शन नीचे ब्लैडर की जगह किडनीज में भी इन्वॉल्व करता है, ये काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए। तो इसीलिए कभी भी प्रेग्नेंट वुमेन का यूरिनरी इन्फेक्शन, प्रेग्नेंट वुमेन को यूरिनरी इन्फेक्शन पे ध्यान देना चाहिए और पूरा ट्रीटमेंट लेना चाहिए।
0: अभी वर्तमान में ये भी देखा गया है कि एक समय था जब हम मेनोपॉज के केसेस को 50 की एज या 50 के बाद रिपोर्ट हुआ करते थे, लेकिन अभी आंकड़े ये कहते हैं कि कई जगह ये मेनोपॉज 35 की एज के आसपास भी दिखाई देने लग गए हैं, और 40 से पहले तो काफ़ी लोगों के ये दिक्कत हो रही। तो क्या ये जो आपने शुरुआत में कार्यक्रम बताया कि 20 से 35 साल के बीच में जो आपका एग जो होता है या ख़त्म होने लगते हैं, या यही मेनोपॉज के संकेत होते हैं?
1: यूजुअली अगर हम कहें तो यस, विद टाइम 35 के बाद नंबर ऑफ एग्स जो रिलीज होते हैं वो कम तो होने लगते हैं। उसका एक सिंपल पैरामीटर जो हम देखते हैं वो सीरम AMH, एंटीमुलेरियन हार्मोन लेवल्स देख के हमें पता लग सकता है कि इस महिला के ओवेरियन रिजर्व्स कैसे हैं। अगर ओवेरियन रिजर्व्स कम होने लगते हैं तो यस, ये महिलाएं थोड़ा सा पेरीमेनोपॉज और मेनोपॉज की तरफ जाने की इनकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। सेकंड, कुछ ब्लड टेस्ट हम करवाते हैं मेंसेस के बाद, FSH लेवल्स, इससे भी हम मेनोपॉज या प्री मैच्योर मेनोपॉज को पता लगा सकते हैं। यूजुअली प्री मैच्योर मेनोपॉज और मेनोपॉज के इंसिडेंस, यस, जैसे सारी डिसीजेस के इंसिडेंस बढ़ रहे हैं, इसमें भी वेरिएशंस हैं बहुत सारे। कभी कभार रेडियो एक्टिव मटीरियल, रेडियो एक्टिव या रेडिएशंस की वजह से, केमिकल्स की वजह से, मैलिग्नेंसीज में कीमोथेरेपीज़ की वजह से, प्री मेच्योर हिस्ट्रेक्टमीज़ और हिस्ट्रेक्टमीज़ के बाद ओवरीज निकालने की वजह से मेनोपॉज के इंसिडेंस थोड़े से बढ़ गए हैं।
0: प्रेगनेंसी से जुड़ी और भी बातें जारी रहेगी, लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक।

श्रोताओं, यह है कार्यक्रम फिट उदयपुर, और फिट उदयपुर में हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर स्मिता बाहेती। और ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि प्रेगनेंसी और उससे जुड़ी हुई कॉम्प्लिकेशंस को हम किस तरह से दूर कर सकते हैं। मैम, जो हमने बात की

0: श्रोताओं, यह कार्यक्रम फिट उदयपुर, और फिट उदयपुर में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर स्मिता बायती। ब्रेक में जाने से पहले प्रेगनेंसी और उससे जुड़ी विभिन्न कॉम्प्लिकेशंस पर हम बात कर रहे थे। तो मैम, सारी कॉम्प्लिकेशंस की हमने बात की, या किस किस स्टेज में क्या क्या चीज़ें हो सकती है, हमने उस पर बात की। लेकिन अगर जो भी श्रोता हमारे कार्यक्रम में सुन रहे हैं, या जो महिलाएँ जो हमारे खास तौर से ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, उन्हें आप क्या सलाह देंगे कि चाहे वो फैमिली प्लानिंग कर रही हैं, या फिर वो सेकंड बेबी प्लान कर रहे हैं, या फिर प्रेगनेंसी से जुड़ी और भी कोई कॉम्प्लिकेशंस अगर एग्जिस्ट कर रही है, तो किस तरह से उनको ट्रीट किया जा सकता है और किस तरह से अपनी रूटीन को सही करके एक हेल्दी लाइफ को आगे बढ़ाया जा सकता है?
1: सबसे इम्पॉर्टेंट महिलाओं के लिए प्लानिंग, बेहतर प्लानिंग करना मैं सबसे इम्पॉर्टेंट मानती हूँ कि हम प्लान करें प्रेगनेंसी को। प्लानिंग कैसे करनी है? बेसलाइन हमें ब्लड टेस्ट करवाने हैं, सोनोग्राफी करानी है, और उसके साथ प्रीनेटल सप्लीमेंट्स लेने हैं। प्लानिंग के बाद हमें सेकेंड इम्पॉर्टेंट फेज़ जो ये है कि प्रॉपर डेवलपमेंट हो।

0: बच्चे का। तो हमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये सोचना बंद कर देना चाहिए कि हमें दो के लिए खाना है। हमारी डाइट में प्रोटीन्स ज़्यादा होने चाहिए, ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए। एक्सेसिव वेट गेन इन द प्रेगनेंसी इज़ हजार्डियस। महिला को बहुत अधिक प्रेगनेंसी में वज़न नहीं बढ़ाना चाहिए। ऑन एन एवरेज 10 to 15 kg तो बढ़ेगा ही, बट ऐसा नहीं करना चाहिए कि बहुत ओवर ईटिंग करें। थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़, रेगुलर एक्सरसाइज इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि प्रेग्नेंट फीमेल्स को सिडेंट्री या लेटे ही रहना चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइज करने से आपके हॉर्मोन्स बैलेंस्ड होते हैं, आप डाइजेशन आपका इम्प्रूव होता है, बेबी की ग्रोथ, बेबी को ऑक्सीजन सप्लाई और ये सारी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट होता है। तो प्रेगनेंसी इज़ नॉट अ डिसीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नॉट कंसिडर प्रेगनेंसी एज अ डिसीज़। प्रेगनेंसी इज़ अ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। इसमें आप अपनी डे टू डे एक्टिविटी को कंटिन्यू कर सकते हैं, बस आपको थोड़ा सा स्लो डाउन करना होता है। स्लो डाउन मतलब आपकी वॉकिंग पेस, आपकी एग्जर्शनल, हमारी बॉडी हमें बताती है कि हमें किस लेवल पे रेस्ट करना चाहिए। हर प्रेग्नेंट फीमेल को दिन में 2 घंटे और रात में 8 घंटे एक एडिक्वेट स्लीप टाइम होना चाहिए, सो दैट द बॉडी बिकम्स स्ट्रेस्ड आउट नहीं होती हैं। थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वैक्सीनेशंस की, जो वैक्सीनेशन समय समय पे लेनी चाहिए। समय समय पे अल्ट्रासाउंड, स्पेशली द जो थर्ड मंथ का एंटी स्कैन होता है, फिफ्थ मंथ का एनोमली स्कैन होता है, लास्ट ट्राइमेस्टर में जो कलर डॉपलर होता है जिससे बच्चे की ग्रोथ और बच्चे की अंदर की सारी चीज़ें बहुत क्लियरली पता चलती हैं, वो करवाना चाहिए। द लास्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि जब हम डिसिप्लिन रखेंगे लाइफ में, खाने का, हमारे एंटीनेटल चेकअप्स का, हमारे रूटीन्स का, तो एक हेल्दी मदर और हेल्दी प्रेगनेंसी सभी को प्राप्त होगी।
1: तो आप थे डॉक्टर स्मिता बाहेती, और आज के कार्यक्रम में आपने प्रेगनेंसी और उससे जुड़ी कॉम्प्लिकेशन पर बात की और कार्यक्रम का हिस्सा बने, इसके लिए हृदय से आभार।
0: थैंक यू।
2: पेट उदयपुर कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे स्मिता बाहेती से गजेंद्र सिंह राठौड़ की बातचीत। विषय था प्रेगनेंसी और उससे जुड़ी समस्याएं।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
4: अपने से ऊपर का जो स्टूडेंट है, हमसे ज्यादा होशियार है, उसको कहो 5-10 मिनट मेरे साथ बैठो, मुझे बताओ मैं ये सोच रहा हूँ ठीक है क्या, तुम करेक्ट करो।
3: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
5: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में, अरे वाह।
6: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: एक सौ 1.9 हर्ट्ज पर आप हैं FM रेडियो लेक्सिटी के साथ। आइए सुने फिल्म संगीत। साल 1980 में आई थी फिल्म आप तो ऐसे न थे। इसमें कशिश पर गाना लिखा था निदा फासली ने, संगीत से सवारा था उषा खन्ना ने। इस गीत के 3 अलग अलग वर्जन है, रफी साहब, मनहर उदास और हेमलता की आवाजों में। आइए इन तीनों वर्जन को एक साथ सुना जाए।

0: 10 लाख की लॉटरी
1: मुझे।
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
3: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: मिस सीमा
6: जी,
5: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
6: क्यों, लेकिन मैं
5: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
6: डिजिटल अरेस्ट?
5: 1 लाख दो, बच जाओगे।
6: इतने पैसे?
5: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
6: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
7: हेलो मम्मा।
4: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: 1985 में रिलीज हुई रमेश सिप्पी की फिल्म सागर के गाने खूब लोकप्रिय हुए। इस फिल्म का गाना सागर किनारे दिल्ली पुकारे किशोरदा और लता जी की आवाजों में आपने खूब सुना होगा, पर इसका किशोरदा का गाया एक सोलो वर्जन भी था जो फिल्म में नहीं रखा गया और अनरिलीज रहा। आइए किशोरदा के गाए उस वर्जन को सुनते हैं। RD बर्मन का संगीत, जावेद अख्तर के बोल।

इसी गीत के मीटर को लेकर संगीतकार राम लक्ष्मण ने फिल्म प्यार का तराना में एक गाना बनाया था जिसे लता मंगेशकर ने गाया। गीत को लिखा था MG हशमत ने। लीजिए सुनिए।

जिस फिल्म इंडस्ट्री में हजारों की तादाद में फिल्में बनती हो और लाखों गाने बनते हो, वहां अगर 50 साल से भी ज्यादा किसी गाने की रिकॉल वैल्यू हो तो उन कलाकारों को सलाम। नीरज के बोल, एस डी बर्मन का संगीत, किशोर दा और लता जी की गायकी।

0: 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं एफएम रेडियो लेक्सिटी के साथ। अब विविध भारती की राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे।
1: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। फौजी साथियों के लिए कार्यक्रम जयमाला लेकर हाजिर होते हैं कुछ ही पलों में।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं देव दर्शन धूप अगरबत्ती, धूप स्टिक्स, कोन और हवन सामग्री।

0: सर्वोत्तम क्वालिटी देव दर्शन धूप अगरबत्ती कॉर्न व हवन सामग्री।
1: पापा लाइए 3,000।
2: क्यों भाई?
1: मेरी पॉकेट मनी।
2: अरे अभी तो सिर्फ 2,000 ही कैश है।
1: अरे पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ। है नहीं, हाँ सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
2: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1,000 ले जाओ,
1: अपना मोबाइल लाओ,
2: ले ले।
3: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
4: हर लेन देन अब है आसान।

फौजी साथियों, बहुत बहुत स्वागत आप सबका कार्यक्रम जयमाला में। मैं हूं अनुराधा, आपके आज के संगीत के सफर की साथी। लीजिए शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ।

फौजी साथियों, बहुत बहुत स्वागत आप सबका कार्यक्रम जयमाला में। मैं हूं अनुराधा, आपके आज के संगीत के सफर की साथी। लीजिए शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ।

0: वीर जारा फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर, उदित नारायण, गुरदास मान और साथियों की आवाजों में जावेद अख्तर ने इसे लिखा। और अब अगला गीत कैलाश खेर की आवाज में, भारतीय सेना गीत।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: लड़े भारतीय सेना।
1: कैलाश खेर और साथियों की आवाजों में भारतीय सेना गीत अभी आप सुन रहे थे। लीजिए जयमाला की अगली पेशकश।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे देव दर्शन धूप अगरबत्ती, धूप स्टिक्स, कोन और हवन सामग्री।
1: सुबह जलाओ शाम जलाओ
2: देव दर्शन धूप।
3: सर्वोत्तम क्वालिटी का स्वरूप देव दर्शन धूप।

पल पल दिल के पास तुम रहती हो। किशोर कुमार की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे, ब्लैकमेल फिल्म से। राजेंद्र कृष्ण ने इसे लिखा, कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी।

0: किशोर कुमार की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे। जावेद अख्तर ने इसे लिखा और आर डी बर्मन का संगीत। सागर फिल्म से ये गीत था।
1: जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जयमाला। जयमाला के शेष गीत कुछ ही पलों में।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: रोहन और रिया की लव स्टोरी का मैच था शुरू, दोनों ने खाया इटालियन क्विजीन, वेटर ने फेंका स्पिन, 4,000 का आया बिल, रोहन का धड़का जोर से दिल, वो अपना वॉलेट गया था भूल, रिया ने किया डिजिटल पेमेंट, बन गई कूल। आप भी QR कोड स्कैन करके UPI से करो पेमेंट, डिजिटल पेमेंट से जीतो लाइफ का हर टूर्नामेंट।
3: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
4: हर लेन देन अब है आसान।
5: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में, अरे वाह।
6: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

लता मंगेशकर की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे गोलमाल फिल्म से, गुलजार ने इसे लिखा और आरडी बर्मन का संगीत। और अब अगला गीत किशोर कुमार की आवाज में, प्रेम पुजारी फिल्म का नाम है।

राग भैरवी पर आधारित ये गीत था और इसे आप सुन रहे थे लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजों में। सरगम फिल्म से इसे लिया गया था। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं राग झिंझूटी पर आधारित।

जिद्दी फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में। हसरत जयपुरी ने इसे लिखा और एसडी बर्मन की तर्ज थी। इस गीत के साथ ही आज का राग अनुराग प्रोग्राम यहीं ख़त्म होता है। आपको बता दें कि ये गीत राग मिश्र पीलू पर आधारित था।

जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

0: आज सुनिए झलकी। ना बाबा ना। लेखक है संजय श्रीवास्तव, निर्देशक गोविंद पारीक।
1: कौन है? अरे कौन है भाई?
2: क्या है जी, कौन है? मुझे तो डर लग रहा है।
1: अरे बिल्ली होगी, सो जाओ।
2: नहीं जी, एक बार उठ के देख तो लो। तुम

0: डर तो नहीं रहे?
1: तुम भी क्या बात करती हो, मैं भी कहीं डरता हूं। देखता हूं। अरे
0: क्या हुआ?
1: अरे कुछ नहीं कुछ नहीं, मैं कह रहा था ना बिल्ली होगी, वही थी।
0: तो इसमें चीखने की कौन सी बात थी, डर गए क्या?
1: अरे नहीं, वो अचानक कूदी ना तो चीख निकल गई।
0: मैं तो कहती हूँ जी, मुझे तो बहुत डर लगता है।
1: तुम्हें डरने की क्या बात है, मैं तो हूँ ही।
0: वो बात नहीं, यूं भी दिन में तुम ऑफिस चले जाते हो, पीछे मैं अकेली रह जाती हूँ, शाम को भी कभी कभी देर से आते हो, ऐसे में मैं बिल्कुल अकेली पड़ जाती हूँ।
1: तो मैं क्या करूँ, काम तो करना ही पड़ेगा ना।
0: वो बात नहीं, मेरा कहने का मतलब ये था कि वो पड़ोस वाली मिसेस सिंह है ना, कितने चैन से रहती हैं, कहीं भी चली जाती हैं, चाहे घर पर कोई हो या ना हो।
1: वो कैसे?
0: उनके पति ने जब से अल्सेशन कुत्ता पाला है, तब से वो सारा घर उसी कुत्ते के भरोसे छोड़कर चली जाती हैं।
1: अच्छा, ये बात है।
0: हाँ, और वो कुत्ता भी बहुत खतरनाक है, किसी अजनबी आदमी को तो घर के पास फटकने तक नहीं देता।
1: तो फिर मैं क्या करूं, तुम्हारा मतलब क्या है?
0: सुनो जी, एक कुत्ता पाल लेते हैं, एक अच्छा सा ला दो ना, मुझे भी तुम्हारी कमी महसूस नहीं होगी।
1: अच्छा बाबा, ला दूंगा, लेकिन इस वक्त तो सो जाओ, रात बहुत बीत चुकी है।
0: नहीं, पहले वादा करो कि तुम एक कुत्ता ले आओगे। कितना अच्छा होगा जब मैं भी मिसेस सिंह की तरह कहीं भी आ जा सकूंगी, कुत्ता घर की रखवाली करेगा। बोलो, लाओगे ना?
1: हाँ हाँ ले आऊंगा, अब तो सो जाओ वरना मैं उठकर बाहर चला जाऊंगा।
0: ओके डार्लिंग, गुड नाइट। ओहो, मिसेस सिंह और मिसेस शर्मा, आइए आइए।
2: हेलो गीता, कैसी हो?
0: बिल्कुल ठीक, आइए आइए, अंदर आइए।
2: सुना है आपने बड़ी अच्छी नस्ल का कुत्ता पाला है,
3: इसीलिए हमने सोचा चलो देखकर आते हैं।
2: और फिर हमारा तो आना जाना लगा ही रहता है, पहचान जाएगा तो काटेगा भी नहीं।
3: हाय, मेरा तो बस 14 सुई से दिल घबराता है, बड़ा दर्द होता है।
2: अरे मिसेस शर्मा, अब जमाना कहाँ से कहाँ चला गया है, अब तो कुत्ते को पहले ही एंटी रैबिक सुई लगवा दो तो फिर कुछ भी असर नहीं होता।
3: अरे भाई, काटने के बाद भी 14 सुई का क्या भरोसा, जब बैक्टीरिया शरीर में प्रवेश कर जाते हैं फिर तो आदमी भौंक भौंक कर दम तोड़ता है, पानी देखते ही काटने को दौड़ता है और फिर हाइड्रोफोबिया।
0: अच्छा, कहाँ लगती है ये एंटी रैबिक सुई?
2: ये तो किसी भी पशु चिकित्सालय में लग सकती है,
3: इसीलिए मैं तो कुत्ता पालती ही नहीं, यूं भी जानवरों से मुझे बड़ी नफरत है। हमारे पति देवी बड़े बहादुर हैं, क्या मजाल कोई दरवाजे पर फटक जाए।
2: उनकी तो मुझे देखकर अच्छे अच्छों की घिघी बन जाती है।
3: हाँ, आपने सच्ची कहा है मिसेस सिंह, उन्होंने तो मुझे कह रखा है कि रात को अगर लगे कि कोई चोर आया है तो बस कह देना, पहलवान जी वो अपना डंडा कहाँ रखा है, और बस चोर डर कर अपने आप ही भाग जाएगा।
0: मिसेस सिंह, आपके कुत्ते का नाम क्या है?
2: भाई दीवे, मेरा कुत्ता नहीं कुतिया है, कुत्ते से ज्यादा तेज होती है, उसका नाम लूसी है।
0: कितना प्यारा नाम है।
2: जानती हो गीता, मेरी कुतिया पर रोजाना 200 रुपए खर्च होते हैं, सवेरा होने से लेकर रात सोने तक उसकी देखभाल होती ही रहती है, अच्छे साबुन से नहलाना, बाल संवारना, परफ्यूम लगाना, बिस्किट दूध वगैरह वगैरह।
3: हाय मिसेस सिंह, कितने खुशकिस्मत हैं आप, इतना प्यारा चौकीदार मिला है आपको।
2: और वफादार इतनी कि देखते ही तुम हिलाने लगती है।
3: मैंने तो जब भी अपने पति से कहा कि हमें भी ऐसा ही एक वफादार कुत्ता ला दो तो बस भड़क उठे, वैसे तो वो मेरा कहना बहुत मानते हैं।
2: अरे भाई गीता, तुम्हारा कुत्ता है कहाँ, हम तो उसे देखने आए हैं।
0: अभी बुलाती हूँ। प्रीतम,
3: अरे हमने कुत्ता बुलाने को कहा है।
0: ये मेरे कुत्ते का ही नाम है भाई, और कोई नाम लेने पर वो सुनता ही नहीं, प्रीतम कहते ही दौड़ कर आता है। प्रीतम आजा, आओ आओ आओ।
3: आय हाय, कितना प्यारा कुत्ता है, बरसा सफेद।
0: जानती हैं, अब की डॉग शो में इसी नस्ल का कुत्ता फर्स्ट आया है।
2: वाह, आओ आजा।

0: आजा, ऐसे नहीं।
1: प्रीतम आओ, आओ ना, आओ आओ।
0: अरे वाह, कितना समझदार है,
1: बहुत प्यारा कुत्ता है।
0: अरे वाह, ये तो मेरी गोद में बैठ गया।
1: आपके पास तो यूं बैठा है जैसे पहले की पहचान हो।
0: नहीं जी, जानवरों को प्यार से पुचकारो तो फिर वो दुम हिलाते ही रहते हैं।
1: आपको तो इस बात का बड़ा तजुर्बा है मिसेस सिंह।
0: अरे ये क्या, छी छी, इसने तो मेरी 1000 रुपए की साड़ी ही खराब कर दी।
1: बहुत ही बदबू है, बड़ा बेशर्म कुत्ता है। ये जानवर होते ही ऐसे हैं, जहाँ पाया वहीं गंदा कर दिया।
0: आज ही तो निकाली थी ये साड़ी, हाय अब मैं घर कैसे जाऊंगी।
2: ऐसा भी क्या है मिसेस सिंह, थोड़ा सा पानी से साफ कर लीजिए।
0: नहीं जी, पानी वानी क्या, अब तो घर जाकर ही साफ करूंगी। चलो भी मिसेस शर्मा।
3: ओफो, आज तो बहुत थक गया। सुनो, एक कप चाय तो पिला दो।
2: दूध नहीं है।
3: क्या कहा?
2: हाँ, अपना प्रीतम पी गया, उसके लिए भी तो चाहिए। और सुनो, तुम उसको अभी अस्पताल ले जाकर एंटी रेबिक सुई तो लगवा दो। जानते हो, किसी दिन उसका दांत भी लग गया तो आदमी भौंक भौंक कर मरेगा। और हाँ, एक अच्छा सा साबुन, कंघी, तौलिया, बिस्किट वगैरह डॉक्टर से पूछ कर ले आना। आते वक्त दूध भी ले आना, तभी चाय भी बनेगी।
3: गीता, इस वक्त मैं इतना थक गया हूँ कि अब मैं आराम करूंगा।
2: जाओ ना, सोचो किसी दिन उसका दांत हमें या तुम्हें लग गया तो। मिसेस सिंह कह रही थी, हाय भगवान ऐसा ना करे।
3: मैं अब कहीं नहीं जा सकता, इतनी सारी फरमाइशें, अपने लिए तो कुछ हो नहीं पाता, ऊपर से कुत्ते का खर्चा।
2: तुम नहीं जाओगे?
3: नहीं, बिल्कुल नहीं।
2: यही फर्क इंसान और जानवर में होता है। देखो, हमारी अभी कितने दिनों की पहचान है, फिर भी कितने प्यार से दुम हिला रहा है।
4: टेलीग्राम
3: आया।
0: किसका है जी?
3: तुम्हारे पिताजी आने वाले हैं।
2: हाय पापा, शादी के बाल पहली बार आ रहे हैं। ऐसा करो, दूध ले आओ ना, पापा को तो हर पल चाय चाहिए।
3: मैं तो नहीं जाऊंगा, सारा घर बदबू से भरा पड़ा है, हर जगह इस कुत्ते ने गंदगी कर रखी है।
2: वो तो क्या है जी, मैं सफाई वाली के भरोसे रह गई, वो आज आई ही नहीं। खैर, उसे मैं साफ कर दूंगी, तुम दूध ले आओ ना।
3: अच्छा बाबा, जा रहा हूँ। मरता क्या ना करता, इनको भी आज ही आना था। हे भगवान, ये कुत्ता यहाँ रहा तो मेरा तो कबाड़ा हो जाएगा।
2: हाय राम, बहुत थक गई, ये गंदगी साफ करते करते सिर चकरा गया। बदबू के कारण तो उल्टी सी लग रही है, अब तो कुछ करने को जी भी नहीं चाह रहा। लेकिन क्या करूं, पिताजी भी पहली बार आ रहे हैं।
3: हाँ। ये लो दूध, पहले मुझे चाय पिला दो।
2: अच्छा जी।
3: अरे ये कुत्ता,
0: अरे अरे देखो तो,
3: अरे हाँ।
0: कौन है, क्या हुआ?
3: ये कुत्ता तो सर दर्द बन गया,
4: दूर।
3: अब पता नहीं क्या हुआ, कौन है?
4: अरे भाई मैं हूँ, अरे छुड़ाओ तो इस कुत्ते से।
0: पिताजी, अजी जल्दी छुड़ाओ, वरना वरना काट खाएगा।
2: हाय राम, खून लगता है काट खाया। हाय अब क्या होगा, इसीलिए तो मैं कह रही थी कि तुरंत जाकर सुई लगवा दो। काट लिया ना। हाय पिताजी, मेरे पिताजी पहली बार तो बेचारे आए थे। हाँ जी, मिसेस सिंह कह रही थी कुत्ते का काटा आदमी भौंक भौंक कर। हाय पानी देखते ही, हाय मुझसे तो कहा भी नहीं जाता, ये कुत्ता नहीं मौत का पैगाम है।
4: बेटी ये क्या कह रही है तू?
3: ये कह रही है ससुर जी कि कुत्ते का काटा आदमी भौंक भौंक कर मरता है।
2: अब क्या होगा, अब तो आपको 14 सुई भी लगेगी। तुम डॉक्टर को बुलाओ जी।
4: डॉक्टर? लेकिन डॉक्टर क्या?
2: पिताजी, आपको कुत्ते ने जो काट लिया है, ये खून।
4: ओ, हो, हो, हो, अरे ये खून नहीं बेटी, ये तो दवा की शीशी थी जो फूट गई, कुत्ता मेरे ऊपर गिरा इसलिए फूट गई।

0: सारे कपड़े भी खराब कर दिए।
1: तो इसने आपको काटा नहीं?
0: नहीं बेटी, बिल्कुल नहीं।
1: सुनो जी, तुम इस कुत्ते को अभी हटा दो।
2: लेकिन तुम जो अकेली रहती हो उसका क्या होगा?
1: ना बाबा ना, मैं अकेली रह लूंगी, लेकिन ये सफाई, ये देखभाल मुझसे ना हो सकेगी। इसको अभी मेरी नजरों से दूर कर दो, दूर कर दो इसको।
3: अभी आपने झलकी सुनी ना बाबा ना। इसके लेखक थे संजय श्रीवास्तव, निर्देशक गोविंद पारीख, और ये झलकी आकाशवाणी जोधपुर की प्रस्तुति थी। हवा महल कार्यक्रम समाप्त हुआ।

जैसा कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
3: अपने से ऊपर का जो स्टूडेंट है हमसे ज्यादा होशियार है उसको कहो 5-10 मिनट मेरे साथ बैठो, मुझे बताओ मैं ये सोच रहा हूँ ठीक है क्या, तुम करेक्ट करो।
2: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
4: 10 लाख की लॉटरी मुझे, वाओ।
5: फर्जी ऑफर्स से सावधान,
6: RBI कहता है।
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: संगीतमय यात्रा, तेरे मेरे सपने अब पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ जाएं।
9: भीगी भीगी रातों में, मीठी मीठी बातों में,
8: याद रहे ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।

राघव चैतन्य की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे, एक विलन रिटर्न्स फिल्म से। कुणाल वर्मा ने इसे लिखा, कौशिक और गुड्डू का संगीत।

कार्यक्रम चित्रलोक में एक बार फिर से आपका स्वागत है। केके और शिल्पा राव की आवाजों में ये गीत बचना ए हसीनो फिल्म का नाम है।

मोहित चौहान की आवाज में ये गीत फिल्म ऊंचाई से। इरशाद कामिल ने इसे लिखा, अमित त्रिवेदी का संगीत।

0: स्थानों पर छापेमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले का आकार कम किया। भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी मितव्ययिता के उपाय शुरू किए। पश्चिम बंगाल सरकार का भर्ती घोटालों की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला। आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही पर सभी अंतर्राज्यीय प्रतिबंध हटाए। और गुजरात के गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारत्तोलन चैंपियनशिप में ज्ञानेश्वरी यादव ने 2 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 260,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
1: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इससे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि योजना से केवल खनन से प्रतिवर्ष 6,300 करोड़ रुपए का राजस्व और 50,000 रोजगार सृजित होगा। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने लगभग 20,667 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद सरखेज धोलेरा सेमी हाई स्पीड दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी दी है। रेलवे की ये पहली सेमी हाई स्पीड परियोजना होगी। इसे स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि ये नागपुर हवाई अड्डे के लिए क्षेत्रीय विमानन केंद्र बनने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को देश के करोड़ों किसानों को अपने उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि इस निर्णय से देश के किसानों के जीवन में समृद्धि आएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अहमदाबाद धोलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल संपर्क यात्रा में महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कोयला लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं की संवर्धन योजना से ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी, निवेश को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं के लिए रोजगार सृजित होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने 37,500 करोड़ रुपए की कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के संवर्धन को भी स्वीकृति दी। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। देश भर में कई

0: के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 व्यक्ति जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 व्यक्ति को नासिक से गिरफ्तार किया गया है। अन्य कई संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की जा रही है। सीबीआई ने आज इस सिलसिले में कई स्थानों पर छापे मारे और अनेक आपत्तिजनक सामग्री तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए। सीबीआई इस मामले में शुरुआती जाँच करने वाले राजस्थान के विशेष कार्यबल के भी समन्वय में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन की खपत कम करने की अपील का

0: बड़ा प्रभाव पड़ा है और पेट्रोल तथा डीजल का उपयोग कम हुआ है। प्रधानमंत्री ने अपने काफिले का आकार काफी कम करके एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह सहित भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी ऐसा ही कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने वाहनों के बेड़े में तत्काल कमी करने का निर्देश दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रियों की हवाई यात्राओं में 50% की कटौती का आदेश दिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंत्रियों विधायकों के सरकारी वाहनों की संख्या सीमित करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय मुद्दों, ऊर्जा सहयोग सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श होगा।
1: During the visit, यात्रा के दौरान दोनों नेता निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और आपसी जनसंपर्क समेत विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के उपायों पर चर्चा करेंगे।
2: People to people connect.
0: श्री जॉर्ज ने बताया कि 4 यूरोपीय देशों की यात्रा के दौरान श्री मोदी 3रे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे।
2: चार
1: यूरोपीय देशों की ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते को इसी वर्ष अंतिम रूप दिया गया है। इस दौरान 3रा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा। भारत इन देशों को मेक इन इंडिया अभियान के अहम साझेदार के रूप में देखता है। यात्रा का मुख्य उद्देश्य व्यापार और निवेश, हरित प्रौद्योगिकी, नवाचार, स्टार्टअप और आपसी जनसंपर्क को मजबूत करने का रहेगा।
2: पीपल टू पीपल कनेक्ट।
0: संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अमेरिका के स्मिथसोनियन राष्ट्रीय एशियाई कला संग्रहालय से 3 भारतीय प्राचीन वस्तुओं की वापसी का उद्देश्य भारत की चोरी हुई सांस्कृतिक विरासत को पुनः स्थापित और संरक्षित करना है। नई दिल्ली में श्री शेखावत ने कहा कि देश की विरासत जिसे अनैतिक तरीकों से देश से बाहर ले जाया गया था अब वापस लाई जा रही है।
3: ऐतिहासिक एंटीक्विटीज को जो भारत लाने का क्रम पिछले वर्षों से चल रहा है उस दिशा में हम आज ऑस्ट्रेलिया से 11 और अमेरिका से 3 और मूर्तियों को भारत में लाने में सफल हुए हैं। इसके अतिरिक्त भी 657 एंटीक्विटीज को आइडेंटिफाई करके हमने अमेरिका के साथ चर्चा की। यूएस एनफोर्समेंट एजेंसीज ने उनको भारत के दूतावास को अमेरिका में सुपुर्द कर दिया है। उनको लाने की प्रक्रिया भी प्रारंभ होगी। 657 एंटीक्विटीज उसके बाद में भारत आएंगे।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल होने वाले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों के शिखर सम्मेलन से पहले आज नई दिल्ली में रूस, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और मालदीव के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। डॉ. जयशंकर ने बताया कि सभी देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की गई और आपसी हित के बहुपक्षीय मुद्दों पर भी चर्चा हुई। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोफ ने आश्वासन दिया है कि बाहरी प्रतिस्पर्धा के बावजूद भारत के लिए ऊर्जा आपूर्ति संबंधी समझौतों का पालन किया जाएगा। श्री लावरोफ ने कहा कि रूस ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा कि अनुचित प्रतिस्पर्धा द्विपक्षीय समझौतों को नुकसान न पहुंचाए। एयर इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या में कमी लाने का फैसला किया है। इसके लिए विदेशी मार्गों पर कुछ सेवाएं अस्थायी रूप से रोक दी गई हैं। ये फैसला वायु क्षेत्र नियंत्रण और विमान ईंधन के ऊंचे मूल्य को देखते हुए किया गया है। ये कटौती इस वर्ष जून से अगस्त तक के लिए होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल में नवगठित सरकार ने शिक्षक भर्ती, नगर निगम भर्ती और सहकारी सेवा भर्ती घोटालों से संबंधित मामलों को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI को सौंपने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकार ने इन मामलों में भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया था। एक अन्य निर्णय में राज्य सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज, पशु उत्पादों और अन्य आवश्यक उत्पादों के अंतर्राज्यीय आवागमन पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। असम सरकार 26 मई को समान नागरिक संहिता विधेयक विधानसभा में पेश करेगी। मुख्यमंत्री हिमंता

0: तो शर्मा ने पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद ये घोषणा की। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि प्रस्तावित विधेयक विवाह की कानूनी उम्र, बहुविवाह, उत्तराधिकार और लिव इन संबंधों सहित कई मुद्दों पर है। उन्होंने स्पष्ट किया कि धार्मिक प्रचलन इस विधेयक के दायरे से बाहर रहेंगे।
1: इसे असम की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किया गया है। जनजातीय समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। साथ ही राज्य के लोगों द्वारा अपनाई जाने वाली सभी रस्मों, परंपराओं और रीति रिवाजों को भी इससे बाहर रखा गया है।
2: आउटसाइड द स्कोप ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड।
0: पुदुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी ने पांचवी बार पद ग्रहण करने के बाद स्वास्थ्य सेवा, रोजगार, शिक्षा, खेल और औद्योगिक विकास से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इसमें गरीबी रेखा से ऊपर के राशन कार्ड धारकों को 3 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करना, इंदिरा गांधी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय और मॉडल विद्यालय स्थापित करना शामिल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज लाडली बहना योजना की 36वीं किस्त नरसिंहपुर जिले के ग्राम मुंगवानी से जारी की। उन्होंने 1,25,00,000 से अधिक लाडली बहनों के बैंक खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा नगर निगम चुनावों में भाजपा की जीत पर लोगों का आभार व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा कि इस जीत ने फिर स्पष्ट कर दिया है कि जनता ने भाजपा एनडीए सरकार की विकास और सुशासन नीतियों पर अटूट विश्वास व्यक्त किया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
3: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 50 अंक बढ़कर 74,609 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 33 अंक की बढ़त के साथ 23,413 पर स्थिर हुआ। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले 7 पैसे कमजोर होकर अपने सबसे निचले स्तर यानी 95 रुपए और 70 पैसे पर बंद हुआ। वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार तैयार किए जाने तक ब्रेंट क्रूड $107.62 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था।
0: गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारत्तोलन प्रतियोगिता में ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलो भार वर्ग में रजत और कांस्य पदक जीता है। उन्होंने स्नैच में रजत पदक और कुल 194 किलो का वजन उठाकर कांस्य पदक जीता। उधर थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु, मालविका बंसोड़, देविका सिहाग, लक्ष्य सेन और किदाम्बी श्रीकांत सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आईपीएल क्रिकेट में रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक कोलकाता ने तीसरे ओवर में बिना किसी नुकसान के 23 रन बना लिए हैं। महाराष्ट्र में आज नाशिक त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभ मेले के लोगों का अनावरण किया गया। इसमें त्रिशूल दर्शाया गया है और गोदावरी नदी को शिवलिंग के रूप में चित्रित किया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये लोगो भारत की सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं और राष्ट्रीय एकता का सशक्त संदेश देता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने 37,500 करोड़ रुपए की कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के संवर्धन को भी स्वीकृति दी। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। देश भर में कई स्थानों पर छापेमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले का आकार कम किया। भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी मितव्ययिता के उपाय शुरू किए। पश्चिम बंगाल सरकार का भर्ती घोटालों की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला। आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही पर सभी अंतर्राज्यीय प्रतिबंध हटाए। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। लीजिए कार्यक्रम प्रस्तुत है आपके लिए।

एक दूजे के लिए, ये था फिल्म का नाम और आनंद बख्श के लिखे बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। फिल्म कभी कभी से ये गीत लता मंगेशकर, किशोर कुमार की आवाजों में, साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा, खयाम का संगीत। आपके लिए ये प्रोग्राम आप सुन रहे हैं विविध भारती से।

0: रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
1: क्यों, लेकिन मैं
0: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
1: डिजिटल अरेस्ट?
0: 1,00,000 दो, बन जाओगे।
1: इतने पैसे?
0: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
1: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: छाया गीत,
1: लग जागने।
0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
2: तेरे मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
2: भीगी भीगी रातों में, मीठी मीठी बातों में।
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।

विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आपके लिए। फिल्म चांदनी से ये गीत आनंद बख्शी के लिखे बोल शिव हरी का संगीत।

फिल्म चांदनी से आप ये गीत अभी सुन रहे थे। ये गीत सुनिए फिल्म सिलसिला से, लता मंगेशकर, किशोर कुमार और सखियों की आवाजें।

लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत अभी आप सुन रहे थे कोरा कागज़ से, कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी। और इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम आपके लिए यहीं समाप्त होता है।

0: किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
1: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
0: डायरेक्टर ने आओ देखा ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में, सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
1: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।

श्रोताओं नमस्कार, आज के फनकार कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज बात एक ऐसी आवाज की जो अंधेरे में एक रोशनी जगाती है, जो हमें सहलाती दुलारती ही नहीं बल्कि हमारे दिल की धड़कनें भी बढ़ाती है। वो आवाज जो हमें जोश भरती है, हमें थिरकने और झूमने पर मजबूर करती है। आज बात इस स्वैग से भरी आवाज के मालिक बेनी दयाल की।

0: आदत से मजबूर।
1: बेनी दयाल, जिनकी आवाज एक ओर सादगी से भरी महसूस होती है तो वहीं दूसरी ओर ऊर्जा का एक जखीरा खोलती है। उनके गीतों की फहरिस्त उनके हुनर का बखान तो करती है, लेकिन उनका हुनर इससे कहीं ज्यादा है। वैसे बात करें उनके शुरुआती दिनों की, तो अगर उन्होंने खुद के हुनर को न पहचाना होता तो शायद ये आवाज हम तक कभी ना पहुंच पाती। ये बात हम कह रहे हैं क्योंकि बेनी दयाल खुद को गायक मानते ही नहीं।

वैसे ये बात बेनी के लिए नहीं कही जा सकती, क्योंकि वो बचपन से ही कला से जुड़े रहे और उन्होंने तकरीबन 14 सालों तक भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और मोहिनी अट्टम जैसे नृत्य शैलियों की तालीम ली। हालांकि वो इसके साथ ही कर्नाटक संगीत भी सीख रहे थे, लेकिन उनके मन में कभी भी एक गायक बनने का विचार नहीं आया। वो अपने स्कूल के दिनों से ही अलग अलग डांस कॉम्पिटिशन में भाग लिया करते और जीतते। उनका ध्यान पूरी तरह से डांस की ओर ही था।

डांसर के रूप में पहचाने जाते रहे। लेकिन जब एक रोज किसी ने उन्हें गाते सुना तो उनकी तारीफ में कहा कि वो डांस से भी ज्यादा अच्छी तरह से गाते हैं। ये बात उन्हें पहले तो आश्चर्य लगी, लेकिन उन्होंने डांस के साथ साथ गानों के कार्यक्रमों में भी नाम देना शुरू किया और जीतने लगे। तब उन्हें लगा कि शायद वो एक गायक बनना चाहते हैं। पर इस शायद वाले विचार को पुख्ता जमीन मिली कुछ दिनों बाद, जब उन्होंने एक खास संगीत को सुना।

15 मई 1984 को आबू धाबी में जन्मे बेनी दयाल का बचपन और स्कूली शिक्षा आबू धाबी में ही हुई। जब वो हाई स्कूल में थे तो एक रोज स्कूल जाते समय बस में दिल से फिल्म का शीर्षक गीत चला और बेनी को ये संगीत अब तक सुने सारे संगीत से अलग लगा। स्कूल खत्म होने के बाद घर लौटते हुए बेनी ने बस ड्राइवर से फिर वही गाना चलाने के लिए कहा और उन्हें तब लगा कि संगीत इस तरह का ही होना चाहिए जिसे बार बार सुनकर भी और सुनने का मन करे। इस दिन ने उनका जीवन बदल दिया और बेनी ने तय किया कि वो अपने जीवन में संगीत के साथ ही रहना चाहते हैं।

पूरा होने के बाद जब बेनी को आगे की पढ़ाई के लिए पुणे के प्रसिद्ध इंस्टीट्यूट में भेजने की चर्चा चल रही थी, तब उन्होंने पिता के सामने साहस करके कह दिया कि वो पुणे नहीं चेन्नई जाना चाहते हैं और फिल्म इंडस्ट्री में बतौर गायक अपना नाम बनाना चाहते हैं। इस बात को लेकर 2 महीनों तक पिता पुत्र के बीच मौन पसरा रहा। आखिर बेनी की लगन देखकर ये तय हुआ कि बेनी अपनी पढ़ाई पहले पूरी करेंगे, उसके बाद ही फिल्मी दुनिया की ओर बढ़ेंगे। इस बात ने बेनी के मन को उदास तो कर दिया, लेकिन कॉलेज आते ही उनके लिए मानो नई राह खुल गई।

अबू धाबी से भारत आकर बिनी दयाल ने कॉलेज में अपना एक बैंड बना लिया। हर तरह के संगीत को अपनाने वाले बिनी दयाल ने धार्मिक, पॉप, फिल्मी, नए पुराने हर तरह के गीतों में अपना रंग भरा। आखिर वो दिन भी आया जब करियर में आगे बढ़ने की राह चुननी थी। बिनी ने संगीत का ही साथ चुना, लेकिन ये राह आसान नहीं थी। उन्हें संघर्षों के एक बुरे दौर से गुजरना पड़ा।

बेनी अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि जब उन्हें इस तरह से लगातार असफलता का सामना करना पड़ रहा था, ये वो समय था जब घर और बाहर कहीं भी कोई साथ नजर नहीं आता था, क्योंकि उनके पिता के खराब स्वास्थ्य के कारण परिवार भारत लौट आया था। उनके भाई भी अपने काम को लेकर उलझन में थे। बेनी अपना दुख किसी के साथ बांट नहीं सकते थे और दूसरी ओर उनकी आर्थिक स्थिति भी बिगड़ती जा रही थी। आखिर मन मार कर एक सीनियर की सलाह पर बेनी ने BPO में HR की नौकरी कर ली।

इधर बेनी नौकरी में पहुंचे और पीछे पीछे संगीत द्वार खटखटाता उन्हें वापस ले जाने पहुंच गया। जी हाँ, बिल्कुल किसी फिल्म की कहानी के रोमांचक मोड़ की तरह काम के पहले ही दिन बेनी को एक कॉल आया। वो कॉल उनकी जिंदगी बदलने का मादा रखता था। ये बात बेनी को अच्छी तरह से पता थी और हुआ भी यही। बेनी को आया था ये कॉल संगीतकार ए आर रहमान का।

दरअसल बेनी दयाल ने हर जगह कोशिश की थी, लेकिन एआर रहमान के पास नहीं गए थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो एआर रहमान के संगीत के लायक बन ही नहीं पाए हैं। रहमान ने बेनी का गाया धार्मिक गीत कहीं सुना था और उन्हें बेनी की आवाज बहुत पसंद आई। आखिर बेनी दयाल को उनका पहला गाना मिल ही गया, वो भी उस व्यक्ति के साथ जिनके संगीत के फैन बेनी बचपन से रहे हैं। 2008 में ये एक तमिल फिल्म थी सक्कर कट्टी और बेनी दयाल का गाया गीत था चिन्नम्मा चिलकम्मा का तमिल वर्जन। ए आर रहमान पहले से ही बेनी दयाल की आवाज के कायल थे और बेनी ने भी अपने काम से ये साबित किया कि उनका चुनाव गलत नहीं था।

रहमान के साथ से बेनी अपना सपना जीने लगे। जब भी किसी नए गाने की रिकॉर्डिंग होती, बेनी ऑफिस के बाद रिकॉर्डिंग के लिए आते। आखिर एक रोज उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और संगीत में ही रम गए। दक्षिण भारतीय फिल्मों में बेनी A.R. रहमान के लिए लगातार गा रहे थे। रहमान ने ही बेनी को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की ओर लाया और आया वो गीत जो सभी के मन में बस गया।

गजनी के इस गीत ने बेनी दयाल की आवाज के चाहने वालों में इजाफा किया। अब तक साउथ इंडस्ट्री में अपनी आवाज का जादू बिखेर रहे बेनी दयाल अब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक चहेती आवाज बनकर सामने आए। बेनी को काम मिलने लगे, यहाँ तक कि बेनी दयाल को उस म्यूजिक डायरेक्टर ने भी अपनी फिल्म में गाने के लिए बुलाया जिन्होंने ये भविष्यवाणी की थी कि बेनी कभी गायक नहीं बन सकते। वो तो अपनी बात भूल भी चुके थे और बेनी ऐसी बातें याद दिलाने में विश्वास नहीं रखते।

बेनी दयाल ने हिंदी के अलावा कई भाषाओं के गीतों को अपनी आवाज दी है। उन्हें तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, बांग्ला, गुजराती और मराठी भाषाओं के गीतों में सुना जा सकता है। इसके अलावा वो फ्रेंच और अरबी भाषा में भी गाना गा सकते हैं, क्योंकि स्कूल के समय से उन्हें इन दोनों भाषाओं का ज्ञान है। लेकिन सच कहा जाए तो बेनी दयाल सिर्फ एक ही भाषा में गीत गाते हैं और वो है दिल की भाषा। तभी तो उनकी आवाज़ सीधे दिलों को छूती है।

दीनदयाल एक अच्छे गायक और डांसर होने के साथ साथ एक एक्टर भी रह चुके हैं। उन्होंने साल 2005 में आई मलयालम फिल्म बाय द पीपल से ही अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की और इस फिल्म के सभी गाने उन्होंने गाए। हालांकि उन्हें प्रसिद्धि दिलाने वाले गीत दूसरे रहे, लेकिन ये फिल्म और उसके सभी गीत उनके दिल के करीब हैं।

दीनदयाल एक बेहतरीन आवाज के मालिक होने के बाद भी फिल्मों में लगातार गाते नजर नहीं आते। इसका कारण उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया और कहा था कि उन्हें ज्यादा काम करने से अच्छा लगता है बेहतर काम करना। वहीं वो ये भी कहते हैं कि उन्हें कभी भी ये लगा ही नहीं कि वो एक प्रसिद्ध गायक हैं, बल्कि आज भी जब वो कोई गाना रिकॉर्ड करते हैं तो यही सोचते हैं कि शायद उनकी आवाज अगर इस गाने के लिए ठीक न लगे तो उसे ना भी रखा जा सकता है या उन्हें इस गाने से हटाया भी जा सकता है, और वो इन सारी बातों को स्वीकारने के लिए तैयार दिखते हैं।

बेनीदयाल खुद को दुनियादारी से जरा दूर ही रखते हैं। उनका मानना है कि संगीत दिल से निकलता है, इसलिए खुद को बचा कर रखना आपके संगीत के लिए अच्छा है। वहीं बेनीदयाल ये भी मानते हैं कि अपने दिल में किसी भी तरह की बुरी भावना को घर न करने देना भी आपके संगीत को एक अलग ऊंचाई देता है, और इसके गवाह तो हम

भले ही फिल्मों में बेनी दयाल लगातार नहीं गाते, पर वो अक्सर अपने गाने खुद बनाते रहते हैं। इन्हें वो स्वैगानुसार नाम से लोगों के बीच लाते हैं। उन्हें संगीत का ज्ञान होने के कारण वो कई बार खुद संगीत भी देते हैं। संगीतकारों की बात करें तो A.R. रहमान के अलावा बेनी दयाल ने हिमेश रेशमिया, प्रीतम, सलीम सुलेमान, विशाल शेखर, अमित त्रिवेदी, शंकर एहसान लॉय, सचिन जिगर जैसे संगीतकारों के साथ कई हिट गाने दिए हैं।

बिनी दयाल की आवाज में एक ओर वेस्टर्न स्टाइल झलकता है तो दूसरी ओर वो अपनी भारतीय जड़ों से जुड़े महसूस होते हैं। जितनी दिलकश उनकी आवाज है उतने ही स्टाइलिश बिनी दयाल भी हैं। कपड़ों, चश्मों और टोपी का उनका अपना ही एक अलग स्टाइल है। वो स्टेज परफॉर्मेंस के दौरान इतने जोश में होते हैं कि दर्शक भी झूम उठते हैं। एक सिंगर और डांसर होने के कारण वो स्टेज परफॉर्मेंस को जीवंत बना देते हैं।

2016 में बेनी दयाल ने मॉडल कैथरीन थंगम से अपने परिवार के लोगों के बीच शादी कर ली। दोनों अपने जिंदगी के पल अपने फैंस के साथ सोशल मीडिया के जरिए बांटते भी नजर आते हैं। सरल और सुलझे हुए बेनी दयाल कुछ दिनों तक एक रियलिटी शो में जज के रूप में भी नजर आए। इसके अलावा वो अपने संगीत में ही डूबे रहते हैं, देश विदेश में लगातार स्टेज शोज करते हैं और अपने चाह

बेनी दयाल जब भी किसी गीत में सुनाई देते हैं तो लोग उनकी आवाज को सराहे बिना नहीं रह पाते। बावजूद इसके बेनी सादगी और विनम्रता से भरे हैं। उनके हल्के फुल्के मजाहिया वीडियोस देखकर आप भी ये अंदाजा लगा सकते हैं कि बेनी दयाल अपना जीवन बिल्कुल टेंशन फ्री जीने में विश्वास करते हैं और दिल से संगीत पेश करते हैं। यही बात उन्हें लोगों के दिल में उतारती है। अपनी आवाज से हम सभी के दिलों में बसने वाले बेनी दयाल आगे भी इसी तरह अपनी आवाज का जादू बिखेरते रहेंगे और हम उन्हें सुनकर बस यही कह

0: के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था स्वैग से भरी आवाज के मालिक बेनी दयाल पर। शोध, आलेख और स्वर नेहा शर्मा का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कामले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। छाया गीत कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं विक्को वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
2: विको टर्मरिक

कोई अपना बनकर ही सबसे बड़ा दर्द दे जाता है, एक ऐसा सन्नाटा छोड़ जाता है जो ताउम्र आपके साथ रहता है, भीतर और बाहर। सबसे बड़ी यातना वही है जब कोई तुम्हारा सब कुछ होकर भी तुम्हारा कुछ ना रह जाए। और ये पीड़ा हर रात, हर सुबह, हर पल, हर सन्नाटे में हमें भीतर ही भीतर तोड़ देती है, भीतर ही भीतर तोड़ देती है।

एक अजीब सा रिश्ता बन जाता है कभी कभी किसी से, न जीते बनता है न मरते बनता है, दिल टूट फूट जाता है, जिंदगी बेरंग सी नजर आने लगती है और जिंदगी का सफर टेढ़े मेढ़े उबड़ खाबड़ रास्तों से होकर सुनसान रास्तों की ओर चलता चला जाता है, चलता चला जाता है। बेहद त्रासद है इन दिनों बीमार लोगों में खोजना खुद को, पता नहीं कब छूकर जिसे जागेंगे एहसास, लंबी बेहोशी के बाद पता नहीं कब टूटेगा ये सन्नाटा, पता नहीं कब टूटेगा ये सन्नाटा।

इस अंतराल के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। कभी कभी कोई इंसान एक पल को सब कुछ लगने लगता है और फिर जैसे सब कुछ खत्म हो जाता है। वो बात जो शुरू होनी थी शुरू ही नहीं हो पाती, वो बात जो हम कहना चाहते थे कह ही नहीं पाते। आह, कैसा दर्द होता है ये। और हम तब चुपचाप भारी कदमों से लौट आते हैं फिर से उसी रंगहीन दुनिया में। दस्तक दी मैंने, खुला नहीं दरवाजा, खटखटाया बार बार, दीवार थी वहां, हाँ दरवाजे में।

एक सुकून भरे रिश्ते की तलाश सभी को होती है ना? आपको भी है ना? पर कहाँ मिलता है वो रिश्ता हर एक को? शब्द चाहिए थे मुझे, प्यार भरे शब्द। कहीं कहीं कुछ शब्द मिले भी, पर अफसोस उनमें अर्थ नहीं था, भाव नहीं था, एहसास भी नहीं था। अब ऐसे शब्दों का क्या करती मैं?

कभी कभी आपको रौंद कर भी गुजर जाते हैं कुछ लोग, और आप दबे कुचले से उस नुकीली चुभन को सहते चले जाते हैं, सहते चले जाते हैं। तब लगता है जैसे हर लम्हा ढल रही हूं मैं, रात बनकर उतर रही हूं मैं, जिंदगी जी रही हूं या जिंदगी को कुतर रही हूं मैं। हो सके तो मुझे इकट्ठा कर, हो सके तो मुझे इकट्ठा कर, लफ्ज बनकर पिघल रही हूं मैं, लफ्ज बनकर पिघल रही हूं मैं।

0: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
1: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इससे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को

0: इसमें गैसिफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि योजना से केवल खनन से प्रतिवर्ष 6,300 करोड़ रुपए का राजस्व और 50,000 रोजगार सृजित होगा। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने लगभग 20,667 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद सरखेज धौलेरा सेमी हाई स्पीड दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है। रेलवे की यह पहली सेमी हाई स्पीड परियोजना होगी। इसे स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को भी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से देश के करोड़ों किसानों को उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि अहमदाबाद धौलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल संपर्क यात्रा के लिए महत्वपूर्ण है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 व्यक्ति जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 व्यक्ति को नासिक से गिरफ्तार किया गया है। अन्य कई संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की जा रही है। सीबीआई ने आज इस सिलसिले में कई स्थानों पर छापे मारे और अनेक आपत्तिजनक सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किये। पश्चिम बंगाल में नवगठित सरकार ने शिक्षक भर्ती, नगर निगम भर्ती और सहकारी सेवा भर्ती घोटालों से संबंधित मामलों को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। एक अन्य निर्णय में राज्य सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज, पशु उत्पादों और अन्य आवश्यक उत्पादों के अंतर्राज्यीय आवागमन पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। केंद्र सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद को 1 वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने आज ये मंजूरी दी। प्रवीण सूद का वर्तमान कार्यकाल इस महीने की 24 तारीख को समाप्त हो रहा था। आईपीएल क्रिकेट में रायपुर में कोलकाता नाइट राइडर्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 193 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 6 ओवर में 1 विकेट पर 66 रन बना लिए हैं। कोलकाता की ओर से अंग कृष रघुवंशी ने 71 रनों की पारी खेली। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by R.S. Raghu. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, has approved increase in minimum support prices, MSP, for 14 Kharif crops for marketing season 2026-27. Addressing media after the Union Cabinet meeting in New Delhi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said, the government has increased the MSP of kharif crops to ensure remunerative prices to the growers for their produce. Mr. Vaishnaw said, the highest increase of 622 rupees per quintal in MSP has been recommended for sunflower seed, followed by 557 per quintal for cotton and 500 rupees per quintal for sesamum. He said, for grade A paddy, the MSP will be 2,461 rupees per quintal. For Jowar hybrid, it will be 4,023 rupees per quintal. For Bajra, the MSP will be 2,900 rupees. And for Tur, it will be 8,450 rupees per quintal. The Union Cabinet has also approved a scheme for promotion of surface coal and lignite gasification projects with a financial outlay of 37,500 crore rupees. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, has approved Ahmedabad Sarkhej Dholera Semi-High-Speed Double Line Project with a total cost of nearly 20,667 crore rupees. The Union Cabinet has also approved upgradation and modernization of Nagpur International Airport through long-term license involving private partner under public-private partnership. Prime Minister Narendra Modi has said that the Union Cabinet's decision of approving an increase in the minimum support price MSP for kharif crops for the marketing season 2026-27 will ensure that crores of